मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 42 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पूर्व दिशा से बिखरती स्वर्णिम किरणें, पंछियों की घुंघरुओं सी धुन, शीतल पवन के साथ सुबह की बेला प्रकृति के अद्भुत और शांत सौंदर्य में चार चांद लगा रही है और संदेश दे रही है कि नव जीवन नव ऊर्जा के लिए उठो, जागो और कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हमारे श्रोता अपनी दिनचर्या के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया की गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, प्रातः के 6 बजने वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो और सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया।

0: की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर सिया राम कन्नौजिया से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सुगंधित धान उत्पादन की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां सुगंधित धान उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
4: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि किसान भाई

0: परंपरागत तरीके से सामान्य धान की खेती करते हुए चले आ रहे हैं, उसमें समय पे मजदूरों की उपलब्धता ना होना और क्रांतिक निवेशों का अत्यधिक महंगा हो जाना और लाभकारी मूल्य ना मिल पाना, इससे जो सामान्य धान की खेती है वो आज किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान भाई सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उनको उससे अच्छा लाभ मिल सकता है।
1: तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब, जो चुन सकते हैं?
0: देखिए, किसान भाइयों को बताना है कि उन्नत प्रजातियों में सुगंधित धान की जो बासमती समूह की कुछ प्रजातियां हैं और कुछ प्रजातियां जो हमारे लोकल जो हमारे क्षेत्र विशेष की हैं, जिसमें काला नमक की हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का चयन करके वो अपने खेत में उसको लगा करके उससे अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिसमें बासमती ग्रुप में पूसा बासमती एक है, पूसा सुगंध एक, पूसा सुगंध दो, चार, पूसा सुगंध पाँच, इस तरह की कई ऐसी बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ काला नमक की नई प्रजाति जो अभी पिछले 2 सालों से वो रिलीज हो चुकी है और वो आई है, जिसे वो बौना काला नमक है, जिसमें पूसा नरेंद्र काला नमक एक और पूसा काला नमक CRD2, ये बौनी काला नमक है। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है और ये शॉर्ट स्टेचर होता है इसका, लंबी नहीं होती है और एक लॉजिंग भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है और लगभग 4 क्विंटल बीघे जो है इसका उत्पादन भी हो जाता है।
1: अगर एकड़ में बात करें तो?
0: एकड़ में बात करते हैं तो कम से कम जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज इसकी प्राप्त हो जाती है।
1: तो जो काला नमक और बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं सुगंधित धान की डॉक्टर साहब, उनकी खासियत क्या आप महसूस करते हैं जो नई प्रजातियां हैं?
0: देखिए, जो हमारी काला नमक की जो नई प्रजाति है उसमें खासियत एक चीज आई, जो पुरानी हमारी काला नमक हुआ करती थी वो एक तो लंबी होती थी और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती थी और आजकल उसमें एक समस्या आ रही है कि लास्ट में उसमें दाने भरने की समस्या हो रही, दाने नहीं भर पा रहे हैं उसमें और लॉजिंग की समस्या है,
1: यानी गिर जाती है
0: और ले दे करके उपज जो हमारी होती है वो बहुत ही कम होती है, 1-1.5 क्विंटल पर बीघे मान के चलिए, इससे ज्यादा उपज नहीं हो पाती है, इसलिए जो है ये थोड़ा अब लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसी का इम्प्रूवमेंट करके हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये दोनों प्रजातियों को निकाला है, ये सारी कमियां इसकी निकाल दी गई हैं, उपज भी अच्छी मिल रही है और अच्छी सुगंध भी मिल रही है इन दोनों प्रजातियों से।
1: डॉक्टर साहब, जो भी सुगंधित धान की उन्नत प्रजातियां हैं उनके नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है और कब तक नर्सरी पड़ सकती है अगर 1 एकड़ रोपाई के लिए करना है तो?
0: सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये मान लेना है कि जो सुगंधित धान की खेती अगर वो करने जा रहे हैं तो नर्सरी डालते समय उनको समय का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये सुगंधित धान हमारा है और इस सुगंधित धान की बालियां जब 20 अक्टूबर के बाद में निकलती हैं तब जा करके उसमें जो है अच्छी सुगंध मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में उनको जो नर्सरी डालना है वो 15 जून से 30 जून तक नर्सरी डालना है उसमें, और रोपाई जो हो वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होनी चाहिए, तब जा करके आगे चल करके उनको 20 अक्टूबर के बाद जब उसमें बालियां निकलेंगी तो अच्छी सुगंध उनको मिलेगी उसमें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सुगंधित धान के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: स्वागत रहेगा सभी किसान भाइयों का, यदि उनको कोई अपने मन में शंका रह गई हो सुगंधित धान के बारे में, जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9450-31-34-71, 9450-31-34-71, 9450-31-34-71। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे, जो किसान भाई ज़्यादा खेती करना चाहते हैं अपने धान की, ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास में है उसमें कम से कम सुगंधित धान की खेती 1 एकड़ तो अवश्य रखें।
1: डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ज्ञान के अनंत भंडार और हमारी संस्कृति का मूल आधार हैं वेद। वेदों का वैभव केवल प्राचीन इतिहास नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा, सदाचार और शाश्वत शांति प्रदान करने वाला दिव्य प्रकाश है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है वेदों में नारी का वैभव। वाचन स्वर डॉक्टर शिबा।

0: राकेश का।
1: वैदिक काल देवी उपासना से भरा पूरा है। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से ये काल स्त्री आदर का है। यो देवी शक्तियां स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होती, लेकिन समाज अपने श्रद्धा भाव के चलते देवों को भी माया पिता कहता है। ऋग्वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त पर दृष्टा ऋषियों के नाम लिखे जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्वेद में 25 ऋषिकाओं के नाम हैं। वे 422 मंत्रों की दृष्टा हैं। वागंभृणी, घोषा, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, शची, रोमशा, श्रद्धा, कामायनी, वैवस्वती आदि प्रख्यात ऋषिकाएं हैं। ऋग्वेद में लोपमुद्रा का कथन सारगर्भित है। सत्य की साधना करने वाले देवतुल्य ऋषियों ने भी संतति प्रवाह चलाया है। वे भी जीवन के अंत तक ब्रह्मचारी ही नहीं रहे, बल्कि उनकी भी पत्नियां थीं। यहाँ गृहस्थ आश्रम की महत्ता है, संतति प्रवाह न रोकने की स्थापना है। एक मंत्र अगस्त्य का है कि हमने जीवन के तप साधनाओं पर विजय पाई है, हम दंपत्ति अब संतति प्रवाह में लगेंगे। यहाँ लोप मुद्रा ऋषिका है और वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। प्रत्यक्ष रूप में ये वार्ता व्यक्तिगत दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी स्थापनाएं दिशा बोधक हैं। लोप मुद्रा का जोर गृहस्थ आश्रम की दृढ़ता पर है, अगस्त्य का जोर तप साधना पर, लेकिन लोप मुद्रा और अगस्त्य का समन्वय प्रीतिकर है। वैदिक स्त्री कमजोर एवं शोषक नहीं, वो खुलकर बात करती है। लोप मुद्रा अपने ऋषि पति से भी संवाद करते समय खुलकर बोलती हैं। ऐसी ही एक ऋषिका है इंद्राणी। इंद्राणी का कथन है कि मैं मूर्धन्य और उग्र वक्ता हूँ। इंद्राणी अथर्ववेद की भी मंत्र दृष्टा ऋषिका है। यहाँ उनकी उद्घोषणा वैदिक काल से भी पहले के नारी सम्मान का यथार्थ दर्शन कराती है। वो कहती हैं, प्राचीन काल से ही नारी यज्ञों और महोत्सवों में भाग लेती रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी सभा एवं समितियां हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। सभा और समिति जैसी आदर्श संस्थाएं पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं। इसी से जान सकते हैं कि स्त्रियां गुणों की खान हैं। ऋग्वेद में ऋषिका रोमशा कहती हैं, जिस प्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों से भरपूर हूँ। ऋग्वेद में महिलाएं केवल ऋषिकाएं ही नहीं, यहाँ अनेक वीर महिलाओं के वर्णन भी हैं। विश्पला का पैर युद्ध में टूटा, अश्विनी देवी ने उसके कृत्रिम पैर लगाया। ऐसी ही एक योद्धा है मुद्गलानी। वह रथारूढ़ होकर युद्ध जीती, उस समय उनके वस्त्रों को वायुदेव ने संभाला। ग्रंथों और उपनिषद साहित्य में स्त्री विद्वानों के अनंत प्रसंग हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्री का सारगर्भित वाद विवाद सभी को पता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर पठनीय है। गार्गी सभा नेत्री है, वैदिक स्त्री स्वाधीन है, वे पुरुष के सामने स्वाभिमानी है, वो मंत्र दृष्टा ऋषिका है, वो युद्ध में वीरवती है और यज्ञकार में बराबर की भागीदार है, वो देवोपासक है, बावजूद इसके वो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती। ऋग्वैदिक काल की स्त्री की स्थिति सम्मानजनक है और वे आदरणीय है। वैदिक काल की यही परंपरा पौराणिक काल तक अविच्छिन्न है। शिव पार्वती में पार्वती समतुल्य रूप में आदरणीय हैं, सीताराम में सीता माता हैं और श्रीराम कौशल्या, सुमित्रा के साथ कैकेयी को भी आदरणीय मानते हैं। पुराण काल की दुर्गा सप्तशती की समूची कथा ही देवी की पराक्रम गाथा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान की उक्त उद्घोषणा विश्व समुदाय को भारतीय संस्कृति की ही देन है। भारतीय वांग्मय में हजारों नारी पात्र हैं जो उल्लेखनीय और पठनीय हैं। भारत मातृ शक्ति आराधक राष्ट्र है। यहाँ गंगा माता है, गाय माता है, सिंधु माता है, वाड़ी माता है, नदियां माता है और वृक्ष भी माता ही है। सृष्टि का कड़कड़ यहाँ मातृ स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। भारत शब्द पुरुषवाचक है, लेकिन भारतीय अनुभूति में भारत भी माता है, पृथ्वी भी माता है, समस्त विद्याएं माता हैं और समूची स्त्री सृष्टि माता ही है। वैदिक काल की इस वैभवशाली परंपरा के प्रादुर्भाव की आज आवश्यकता है। आज नारी को भोग्या मान लिया गया है और कई बार उसका शोषण किया जाता है। जब तक हम इस मानसिकता को दूर नहीं करेंगे, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं संभव है। आने वाला समय संवेदना के विस्तार का है, जिसे केवल नारी में विद्यमान संवेदना से ही साकार किया जा सकेगा।
0: वेदों में नारी का वैभव, ये विषय था आज के सुविचार का। वाचन स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

दीप जले तो भक्ति जागे और सुर गूंजे तो मन भागे। प्रभु के भजनों की महिमा भक्तों के लिए विशेष है। प्रभु की शक्ति संगीत के हर धुन में, प्रभु का ही नाम है। हर सांस की लय में प्रभु का ही धाम है।

प्रभु राम की कथा इतिहास नहीं जीवन की दिशा है। प्रभु के कदम हमें याद दिलाते हैं कि व्यवहार में प्रेम, वचन में दृढ़ता और कर्म में शुचिता ही हम मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रभु राम नाम का स्मरण करें जो हर पीड़ा का समाधान है।

जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का संदेश देता है और तीसरा नेत्र सत्य का प्रकाश। भगवान शिव जो शांत भी हैं और शक्ति भी, हर संकट में आश्रय भी हैं और हर समाधान का आरंभ भी शिव।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 219 में चित्रकूट की सभा में भरत का प्रभु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति प्रकट करने का प्रसंग।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे चतुरसेन और राजेंद्र काचरू। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इति तस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली

0: नगरे अष्टचत्वारिंशदधिकैकशत एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य सप्तदशांशोत्तर सप्तदशाधिकैकशत किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य पञ्चविंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35,100+ संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति है, और अच्छी सेहत किसी जादू से नहीं मिलती है। अच्छी सेहत मिलती है अगर आप हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनते हैं। इस कार्यक्रम में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आती हैं नई जानकारियों का खजाना, जो आपकी सेहत को बनाए रखता है दुरुस्त। आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे गूलर, एक अनदेखा फल जिसमें है अनगिनत औषधीय गुण। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, हमारा आज का विषय थोड़ा सा अनोखा है, थोड़ा सा भुलाया हुआ लेकिन बेहद जरूरी और प्रभावशाली है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो ना तो रोज की थाली में दिखता है, ना ही बाजार में हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन जब बात आयुर्वेद की हो, पारंपरिक ज्ञान की हो या देसी इलाज की, तो इसका नाम आदर से लिया जाता है। ये फल है गूलर, जिसे संस्कृत में उदम्बर भी कहा जाता है। गूलर एक ऐसा पेड़ है जो अक्सर गांवों में खेतों के किनारे या मंदिरों के पास पाया जाता है। ये बड़े पत्तों वाला घना और छायादार वृक्ष होता है।

0: इसके फल देखने में कुछ कुछ अंजीर की तरह लगते हैं, लेकिन आकार में थोड़े बड़े होते हैं। हरे रंग के ये फल जब पकते हैं तो लाल या जामुनी हो जाते हैं और इनके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं। पर इसकी असली खासियत सिर्फ इसके फल में ही नहीं बल्कि इसके पेड़ के हर हिस्से यानी कि पत्ते, छाल, दूध और जड़ इसमें छिपी है। आयुर्वेद में गुलर को एक संपूर्ण औषधि के रूप में देखा गया है। ये फल पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला, रक्तस्राव रोकने वाला और कई प्रकार के त्वचा रोगों में लाभदायक माना गया है। जिन लोगों को बार बार दस्त या आंतों की सूजन की शिकायत रहती है उनके लिए गुलर के फल या इसके चूर्ण का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। ये आंतों की झिल्ली को शांत करता है और पाचन क्रिया को संतुलित करता है। खासकर गर्मियों में जब पेट की बीमारियां बढ़ जाती है तब ये फल शीतलता भी देता है और शरीर को पोषण भी। श्रोताओं, इसके अलावा गुलर के फल का सेवन रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को फोड़े फुंसी, मुहासे या त्वचा पर बार बार जलन की शिकायत होती है उनके लिए गुलर औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी छाल और दूध का उपयोग पुराने घाव भरने, मस्से सुखाने और मुंह के छालों में भी किया जाता है। कई बार पुराने वैद्य गुलर के दूध को घाव पर लगाकर उसे जल्दी भरने का उपाय बताते हैं और ये अनुभवजन्य उपचार कई लोगों पर कारगर भी साबित हुआ है। गुलर का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये महिलाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में इसे स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए गुणकारी माना गया है। गर्भाशय की कमजोरी, अत्यधिक रक्तस्राव या मासिक धर्म की अनियमितता जैसी स्थितियों में इसकी छाल और फल से बनी औषधियाँ फायदेमंद मानी जाती हैं। हालांकि इसका सेवन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए, लेकिन श्रोताओं ये स्पष्ट है कि ये पेड़ केवल जंगल की शोभा नहीं बल्कि सेहत की छाया भी है। गुलर के पेड़ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। कई मंदिरों के प्रांगण में ये पेड़ विशेष रूप से उगाया जाता है क्योंकि इसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ये वृक्ष देवताओं का वास है। इसकी छाया में बैठना मानसिक शांति और ध्यान को प्रेरित करता है। शायद यही वजह है कि गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि गुलर का पेड़ जहां होता है वहां जीवन बना रहता है। अब हम बात करें इसकी उपलब्धता की तो गुलर आज के शहरी जीवन में कहीं गुमसा हो गया है। ना तो फल की दुकान पर मिलता है, ना ही बाजार में इसकी कहीं चर्चा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी उपयोगिता कम हो गई है। गांवों में, खेतों में, पुराने बागों में आज भी ये पेड़ खड़ा है। बस जरूरत है कि हम इसे फिर से पहचाने और इसका सही तरीके से उपयोग करें। गुलर का फल स्वाद में कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ तिक्त होता है। पकने के बाद इसका सेवन सीधा किया जा सकता है या सुखाकर इसका चूर्ण भी तैयार किया जा सकता है। कई बार लोग इसे सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं जिसमें ये पाचन को बेहतर करने के साथ साथ भूख भी बढ़ाता है। शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में भी इसका असर देखा गया है। इसलिए ये फल न सिर्फ रोगों के लिए बल्कि सामान्य सेहत बनाए रखने में भी उपयोगी है। श्रोताओं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम अक्सर नए नए सप्लीमेंट्स, महंगी दवाओं और विदेशी फलों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी धरती, हमारे गांव, हमारे जंगल, इन सब ने हमें ऐसे रत्न दिए हैं जिनमें केवल पोषण ही नहीं बल्कि जीवन की संपूर्णता समाई हुई है। गुलर भी ऐसा ही एक रत्न है जिसकी छाया भी लाभकारी है, फल भी पोषक हैं और अनुभव भी समृद्ध हैं। तो आइए इस स्वास्थ्य चर्चा के माध्यम से हम ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास के पेड़ों को, औषधीय फलों को फिर से पहचानेंगे। गुलर जैसा साधारण दिखने वाला पेड़ असाधारण गुणों का भंडार है और शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को फिर से अपनाएं और अपनी सेहत की उस जड़ तक लौटें जहां से जीवन शुरू होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए देसी तत्व के साथ जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हो और हमारी सेहत को सच्चा पोषण दे। तब तक स्वस्थ रहिए और प्रकृति की इस देन गुलर को जानिए, अपनाइए और सराहिए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। गुलर एक अनदेखा फल जिसमें है अनगिनत औषधीय गुण, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप

सुनेंगे आज रात 10:30 से मैच की समाप्ति तक। मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा। आज के जिले होंगे रायबरेली और जालौन। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत समात फरमाइएगा सेहतनामा। इस कार्यक्रम में शरीके गुफ्तगु होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर आपसे बातचीत करेंगे। शमसुल आरफीन पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में सुना ना भूलें डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता। खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7:31। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में ख्याल गायन। सुबह 9:50 पर लोकरंग कार्यक्रम में जयशंकर त्रिवेदी व साथी का आल्हा गायन सुनिएगा। प्रसंग होगा पथरीगढ़ की लड़ाई। और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर जयशंकर त्रिवेदी व साथी के गाये आल्हा गायन का प्रसंग होगा लाखन का ब्याहा। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नवीन जायसवाल से की गई भेंट वार्ता का विषय होगा मसूड़ों की बीमारी, कारण लक्षण एवं बचाव। भेंट करता होंगी ज्योति चंद्रा। फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती, ये विषय है डॉक्टर संजीव कुमार से की गई भेंट वार्ता का विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नव दृष्टि क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा एआई की हरित पाठशाला, खेतों में भविष्य की फसल। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में परवेज अहमद सिद्दीकी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और ग्रामीण भारत। खेती किसानी कार्यक्रम में आज शाम 6:50 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर दुष्यंत मिश्र से की गई भेंट वार्ता, फलदार पौधों की उन्नत बागवानी। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आपकी पसंद के फिल्मी नकमे आप सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर और पूर्वाह्न 11:00 से सुनिएगा कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। सुबह 8:45 पर आपके मेल आपके गीत फोन इन का ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। सुबह 8:45 पर सुनिएगा आपके मेल आपके गीत जो कार्यक्रम आधारित होता है आपके ईमेल पर। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलोहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। वैशाली के साथ हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार। आज की विविधा में मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की विविधा में बात उन लोगों की जो मैदान में खिलाड़ी नहीं होते, लेकिन खेल की धड़कन को दुनिया तक पहुँचाते हैं, जो बल्ले की आवाज, गेंद की रफ्तार, हर खेल को खिलाड़ी के पसीने, जीत की खुशी और हार के दर्द को शब्दों में बयां कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं खेलों के खबरी यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसकी नजर लक्ष्य पर होती है, लेकिन उसी मैदान में किसी कोने में एक और खिलाड़ी बैठा होता है, हाथ में माइक, कैमरा, नोटबुक या लैपटॉप लिए। वो खिलाड़ी मैदान में दौड़ता नहीं, लेकिन उसकी खबर पूरी दुनिया में दौड़ जाती है, जो बताता है कि किसने इतिहास रचा, किसने रिकॉर्ड तोड़ा, किसने चोट लगने के बावजूद भी खेल खेला और किसने हार कर भी दिल जीत लिया। इसी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी को सम्मान देने के लिए हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के काम को सम्मानित करने, उनके योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है।

इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। AIPS की स्थापना 2 जुलाई 1924 को पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान की गई थी। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और दर्शकों को खेलों से जोड़ने में पत्रकारों की भूमिका को सराहने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, एथलीटों की कहानियों को सामने लाने और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का जश्न मनाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। देखें तो दोस्तों, खेल पत्रकार का काम सिर्फ स्कोर बताना नहीं होता। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच है तो स्कोर तो मोबाइल पर भी दिख जाएगा, लेकिन मैदान का माहौल कैसा था, खिलाड़ी पर दबाव कितना था, दर्शकों की सांसें कहां अटक रही थी, कप्तान के चेहरे पर विश्वास या चिंता, ये सब बताने का काम करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। एक अच्छा खेल पत्रकार खबर लिखने के साथ साथ खेल की आत्मा को पकड़ता है। जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो पत्रकार सिर्फ ये नहीं बताते कि भाला कितने मीटर गया, वो बताते हैं कि उस एक थ्रो के पीछे कितने सालों की मेहनत थी। जब कोई धावक सेकंड के 100वें हिस्से से जीतता है तो पत्रकार बताते हैं कि वो जीत सिर्फ पैरों की नहीं, हिम्मत की भी थी। जब कोई टीम हारती है तो पत्रकार ये भी समझाते हैं कि हार में गलती कहां हुई और सीख क्या मिली। और दोस्तों, जानते हैं खेल पत्रकारिता की दुनिया ना बहुत ही रंगीन है, लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी तेज धूप में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कभी बारिश में मैदान पर खड़े रहना पड़ता है, कभी मैच आधी रात तक चलता है और सुबह अखबार में खबर भी चाहिए, कभी लाइव रिपोर्टिंग में एक सेकंड की गलती पूरी खबर का मतलब बदल सकती है। और आज के दौर में तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत बदल चुका है। पहले अखबार और रेडियो मुख्य माध्यम थे, फिर टीवी आया, अब मोबाइल, सोशल मीडिया, लाइव ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है। पहले दर्शक अगले दिन अखबार में पढ़ते थे कि मैच में क्या हुआ, आज हर गेंद, हर गोल, हर पॉइंट और हर रिकॉर्ड तुरंत दुनिया के सामने आ जाता है। खेल पत्रकार मैदान और दर्शकों के बीच सेतु की तरह होता है। कई बार खेल पत्रकार ही ऐसे खिलाड़ियों की कहानी सामने लाते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। कोई छोटे गांव से निकला खिलाड़ी, कोई सीमित साधनों में अभ्यास करने वाली बेटी, कोई कोच जो सालों से बच्चों को तैयार कर रहा है, ऐसे चेहरों को पहचान दिलाने का काम खेल पत्रकार करते हैं। कह सकते हैं कि खिलाड़ी मैदान में इतिहास बनाते हैं और खेल पत्रकार उस इतिहास को हम आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मैच देखें, कोई स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ें या किसी खिलाड़ी की प्रेरणादायक कहानी सुने, तो याद रखिएगा कि उस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे भी किसी की मेहनत है। कोई सुबह से मैदान में खड़ा था, कोई देर रात तक रिपोर्ट लिख रहा था, कोई खिलाड़ी के एक जवाब में पूरी कहानी खोज रहा था। यही है हमारे खेलों के खबरी, जो तालियों की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। वे मेडल नहीं जीतते, लेकिन मेडल जीतने वालों की चमक को शब्दों में अमर कर देते हैं।

सभी खेलों के खबरियों को सलाम, क्योंकि खेल मैदान में खेला जाता है दोस्तों, लेकिन उसकी कहानी पत्रकारों के शब्दों से इतिहास बनती है। आज की विविधा में बस इतना ही, दीजिए अनुमति हमें, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7145

0: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
1: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घटकर के आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
4: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक

0: व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी लखनऊ से। और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में ख्याल गायन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए इजाजत हमें, आप सभी को नमस्कार। श्रोताओं बने रहिए मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ये आकाशवाणी लखनऊ है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की

0: तीन दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

0: समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा।

0: वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाया तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: .4 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय है आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

नमस्ते बरेली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। सुबह के 8:15 और 38 सेकंड हो चुके हैं और आज की सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत करती है आपके अपनी दोस्त नीतू। और साथ ही आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लाए हैं, इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि बरेली की बड़ी उपलब्धियां, विकास की खबरें और बरेली में जिस तरह मानसून की एंट्री हुई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और हाँ, साथ ही आपको बता दें कि आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर हमने आपसे पूछा है कि बरेली की बारिश का असली मजाक इस चीज के बिना अधूरा है। दो ऑप्शन भी दिए हैं, पहला है कि कुतुब खाने के गर्मा गर्म चाय पकौड़े या फिर रेडियो पर आकाशवाणी के पुराने गाने। इसके लिए आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने इसी प्रोग्राम यानी नमस्ते बरेली में। तो इसके लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली ताकि हम आपके कमेंट्स आप तक पहुंचा सके। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। और अब बात करेंगे बरेली के विकास की। तो बरेली के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि बरेली कैंट ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। और साथ ही ये सामने आया है कि बरेली कैंट अब कार्बन नेगेटिव बन गया है। इसका मतलब है कि हमारे कैंट एरिया की हरियाली और पेड़ पौधे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, प्रदूषण उससे बहुत कम उत्सर्जित होता है। साथ ही 2030 के लक्ष्य को बरेली ने 4 साल पहले ही हासिल कर लिया, तो है ना, हम सभी के लिए काफी गर्व की बात। और इससे बेहतरीन ग्रीन मॉडल के लिए पूरे छावनी बोर्ड और हमारे बरेली वासियों को आकाशवाणी परिवार की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।

और बात कर रहे हैं शहर की बड़ी खबरों की, तो चलिए आपको बता दें कि बरेली को उड़ानों का एक बड़ा तोहफा मिला है। बरेली एयरपोर्ट से नवी मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट का संचालन पहले ही हो रहा है और अब नोएडा और दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने से चार शहरों का हवाई सफर हो सकेगा। पर्यटन के अधिकारी पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को देखते हुए देश के अन्य प्रमुख शहरों की फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में भी जुट गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरपोर्ट से नोएडा का सफर करने वाले यात्रियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। बरेली एयरपोर्ट से चार शहरों की उड़ान को इसी के साथ जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। और बरेली में जिस तरह मॉनसून की शुरुआत हुई है, उसके बाद होगी सावन की शुरुआत। तो शिव भक्ति का माह सावन करीब आ चुका है और सप्तनाथ मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए विकसित किए जा रहे नाथ कॉरिडोर में 6 मंदिरों में पर्यटन विकास कार्य हैं, वो भी काफी तेजी से हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलकनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो नाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत पर्यटन विकास के कार्यों में भी इसमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। पशुपतिनाथ मंदिर में अब तक 2.62 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। मुख्य द्वार के अलावा फाउंटेन पार्क, नंदी स्थल, क्लॉक रूम का काम जो है वो भी अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। और अब अगर हम बात करें तो ट्रेनों की, तो लखनऊ, गोंडा, ललितपुर स्टेशन पर ब्लॉक के बाद अब बिहार के समस्तीपुर में भी मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इसकी वजह से बरेली से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग और नियंत्रित कर चलाई जाएंगी। ब्लॉक की वजह से जंक्शन पर कई ट्रेनें कई घंटों की देरी से पहुंची, ऐसे में जो पैसेंजर्स थे उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा।

धरती को बंजर बना रही प्लास्टिक की रोकथाम को नगर निगम ने हटाने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली और इसका शुभारंभ निगम ने ना करेंगे प्लास्टिक का उपयोग, स्वच्छ होगा बरेली का हर कोना।

ये संकल्प भी सभी को दिलाया गया। तो ऐसे में हम सभी को भी अपना सहयोग करना चाहिए और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हम अपने घरों से ही कर सकते हैं और जब भी हम बाहर निकले सामान खरीदने के लिए हम अपने साथ एक बैग जरूर लेकर निकले। साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत शुरू हो चुकी है की जा चुकी है और 11 जुलाई से घर घर दस्तक दी जाएगी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की जो शुरुआत हुई वो बुधवार से हुई। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में अलग अलग विभागों की टीमें हिस्सा लेंगी। 11 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू होगा और इसके तहत 3155 आशा वर्कर्स 2287 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाएंगे। और अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और ICDS विभाग की जो टीमें हैं घर घर लोगों के जाएंगी और लोगों को संचारी रोगों से कैसे बचाव करना है, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के विषय में भी बताएंगी।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। और साथ ही हमने आपसे पूछा है कि बरेली में जिस तरीके से बारिश का जो मजा है वो अलग होता है, कुतुब खाने के गर्मा गर्म पकौड़े आपको पसंद है या फिर रेडियो पर आकाशवाणी के पुराने गाने सुनना पसंद है। और इसमें हमने आपसे कमेंट्स मांगी, आपकी राय मांगी कि आपका कौन सा पसंदीदा जो काम है वो करना पसंद है। तो आप सभी ने हमें बताया है। अगर बात करें बीएल धाकड़ की, तो लिखते हैं कि बारिश का मौसम हो, रेडियो पर पुराने फिल्मी गीत सुनने को मिल जाए तो इसका अनुभव गर्मा गर्म चाय और पकौड़े से कम नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेडियो पर जो पुराने और सदाबहार गाने हैं वो सुने तो चाय और पकौड़े का जो ना भी रहे तो भी बात बन जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने जो अनुभव है उसे शेयर किया। वही सुल्तान रजा जो कि लिखते हुए हैं कि खाने के समोसे के बिना, यानी इनको समोसे को ज्यादा पसंद है, तो चलिए सुबह का जो मौसम है उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं समोसों का, लेकिन एकदम सुबह भी मत खाइएगा, थोड़ा शाम को भी खा सकते हैं दोस्तों के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ, तो जो बारिश का जो मजा है ना वो दोगुना हो जाएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है अली अहमद पत्रकार जिन्होंने भी हमें नमस्कार किया है। और साथ ही ये है तिलक राज अरोड़ा और ये कहते हैं कि आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम उन्हें काफी अच्छे लगते हैं, वो सुनना उन्हें ज्यादा पसंद है, बरसात का जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तिलक राज अरोड़ा जो कि आप खुर्जा से हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी ओर वेद प्रकाश मिड्ढा लिखते हैं कि बारिश का मौसम और रेडियो पर पुरानी फिल्मी गाने

और पकौड़ों के साथ सच में एक अलग ही मजा है। जी ये तो आपने बिल्कुल सही की, जैसे ही बारिश होता है तो उस समय हमें किचन की याद आती है और पकौड़ों की याद तो आने स्वाभाविक ही है। और साथ ही आपने जिस तरीके से लिखा है पुराने गाने और जो दोनों कॉम्बिनेशन है चाय और पकौड़े का, वो काफी अलग है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी ओर उमेश कुमार गौड़ जो कि शुभ प्रभात वंदन करते हैं बुलंदशहर से, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए जो आपने कमेंट्स हम तक पहुंचाए हैं। तो बरेली की बारिश का असली मजा इन दोनों के बिना अधूरा है। इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है कि गर्मा गर्म चाय पकौड़े हो या फिर आकाशवाणी के पुराने गाने, इन दोनों का एक साथ होना काफी जरूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्यारे प्यारे जो अनुभव है हम तक आप ने पहुंचाए।

अब इजाजत नहीं दे रहा है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, लेकिन थोड़ा टाइम है, आपसे बात किया जा सकता है। तो जिस तरीके से बरेली में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, देश के अलग अलग राज्यों में भी मॉनसून आ चुका है। आपके अपने शहर का क्या हाल है आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें हमारे श्रोताओं के शहर का हाल भी तो पता चल सके। फिलहाल आप बने रहिए आकाशवाणी बरेली के साथ, क्योंकि बरेली में ये है कि उमस का मौसम रह सकता है और बारिश भी कहा जा रहा है कि आज हो सकती है। तो फिलहाल उम्मीद है कि बारिश हो और जो मौसम अभी सुहाना बना है आगे भी बना रहे। फिलहाल प्रोग्राम में चलते चलते एंजॉय करिए ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली, ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आप सुनिए लोकगीत, सबसे पहले सारिका श्रीवास्तव की आवाज में ये लोकगीत।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने इसे लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि इस समय में मुझे सोना है, और रोजाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत जरूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। कोई बहुत जरूरी काम हो, बहुत जरूरी मेल भेजना हो, बहुत जरूरी संदेश भेजना हो, तो जरूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीजें वगैरह देखने के लिए ना करें फोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोजाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज्यादा खुश रहता है या बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर और रोजाना, और ये जिद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी जिद है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जिद जरूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और इसीलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है, जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं। और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इनस्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू इनस्विंगर डालता है? ग्रिप छुपा।

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: लखन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: दोस्तों लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने

0: उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए। बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

0: भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सचेता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

104 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और ये हमारे श्रोता मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई से लॉर्ड, जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश रजत और बेबी गरिमा, साथ ही श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, ये हैं हमारे श्रोता कल्याणपुर से, और अक्षय कॉलोनी गोंदो रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी उद्यन और अर्पिता, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित, देविका, गजेंद्र कुमार चंदन और हियांश कुमार चंदन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया, पद्मा टॉकेज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। साधुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसराम सोलंकी, श्यामलाल घनश्याम, बाबू गौरी और हसन सिक्का, साथ ही दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत और सादिया, गांव फारा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धनवीर कश्यप, पूषा ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंशु, करिश्मा मुस्कान, और ये हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, गांव गड़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सिराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया मोहम्मद इलियासी और मुशाहिद हुसैन, अक्सा आयशा, उमर अंसारी और समीरा अंसारी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, गांव शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज अमन, सोनी अंकिता, विनीता अनीता, सुनीता और सुरश्री यादव, ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकले जिला बरेली से शारुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम डीजे प्रधान। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता, जयेश गांधी और के की आवाज में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और आप अब सुनेंगे ये गाना, फिल्म का नाम है विजयपथ और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी। धमधा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल, शकुनारुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई और राजू। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और मोहम्मद यासीन अंसारी। जिला मुरादाबाद महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी।

वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान, करुला मुरादाबाद से अयूब खान और शुएब खान है। साथ ही सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबिता, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम दिवांगन और कृष्णा दिवांगन। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदानी और हिना कौसर। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से हैं। साथ ही ये हैं हमारे श्रोता ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से ही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरान और नरगिस खातून। नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाने, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वाने। बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी और मुस्कान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव दांतले, दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति। कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव, ओमपुरी और कल्लू मिस्त्री। ये है ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी और फारूक अंसारी। हिंगड़ी आलूर जिला रतलाम एमपी से जगदीश ठाकर, रंजू भाई युवराज और शिवांगी। नारायण भाऊ खट से ललिता, आशारानी, संजना परी, गणेश, लड्डू चौधरी, देविका, स्वाति, प्रज्ञा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं। अम्बा चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव टोरेवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनका पूरा परिवार इस गाने को सुनना चाहते हैं। नामा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी। और अब सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम विजयपथ, आवाज अलका याग्निक, कुमार शानू की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। स्टूडियो की घड़ी में 10:19:34 हुए हैं और अब आप सभी की पसंद का अगला गाना। लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम और आप सभी के शहर, जो आप कहां से हमें अपने कमेंट भेजते हैं गाने की फरमाइश के लिए, ये है ग्राम आनंदपुर दुनका मीरगंज बरेली से जितेंद्र राजपूत, प्रभा राजपूत, ग्राम धुर्रा बारा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देवकुमार साहू, नवीन और युवराज साहू, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार और इनका पूरा परिवार, चौरादा बार नवापारा अभ्यारण जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू और ज्योति, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान और पूजा परिहार, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी, ग्राम लसूडिया तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन, बरेली से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी प्रशांत, ज्ञानेन्द्र इला देवी, वर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अश्विनी, विनोद दीक्षित, राज महावीर, कश्यप राठौर, रमेश चंद्र सैनी और गौतम राम, चमनपुरा उदयपुर से हैं नजीम खान, साहिबा खानम, जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, अशरफ खान, रईसा बानो और मंजू निम्मी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा सरफराज, गुलफराज बेबी मुस्कान, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत, ये है कुश्ता बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े और प्रियाली पार्थ और इनका पूरा परिवार, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजपेय, राधिका, अनिष्का और तन्मय, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू जो कि हैं बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रुतेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक, मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से मोहम्मद हसन अंसारी, भाई अजरुद्दीन, नाजिज अंसारी, तबस्सुम अमीत अब्बू, तरुणुम अंसारी, तराना रिदा अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जयसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से ही हैं, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली युवान और आर के राजा, चकपांच एमडी पत्रौड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी अंकुर और डॉक्टर सुनील, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगु भाविक सिक्का, और सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है गदर 2। और इस गाने में आवाज है विशाल मिश्रा, नीति मोहन, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मित्र।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब बारी है अगले गाने की, जो कि है फिल्म बरेली की बर्फी से।
1: आया क्या?
2: आएगा।
0: और इस गाने में आवाज है आर्को की, लेकिन ये गाना हम आपको सुनाएंगे, सबसे पहले आपके नाम भी तो जरूरी है। तो चलिए जानते हैं हमारे तमाम श्रोता शहर के कौन कौन से शहरों से हमें गाने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आकाशवाणी बरेली के फेसबुक पेज पर। तो आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गाना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने गाने की जो फरमाइश है, जो पसंद है, वो भेज सकते हैं, साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। और ये गाने सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा और अनुज, अर्चना, आयुषी, रमेश चंद्र, श्वेत मुसा, भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, रामचंद्र गुप्ता, सोहबा गुप्ता और धनबाद झारखंड से ये गाना सुनना चाहते हैं शनि बाजार कस्बा उगहती उत्तर प्रदेश से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, परियाल गुप्ता, कारव गुप्ता और इनका पूरा परिवार, गांव नंगलखेड़ा पंजाब फगवाड़ा से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल, कस्बा उगहती से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय, साथ ही नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया, सप्त रंग श्रोता परिवार जो कि है कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा इस गाने को सुनना चाहते हैं। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, शमा, हिना, राजिया सुल्ताना अंसारी और इनका पूरा परिवार, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी, सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से, शिवाजी नगर से वडाली देशमुख, राजेश खोबरखेड़े, इंदिरा ताई, शिवसागर खोबरखेड़े, चकुली ताई और स्वराज, दीपाली, तलुट, सुनैना भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांधी नगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परिवार, परमार, हर्ष और दीपल, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल, अविराज और गुरनूर सिंह के अलावा शुभदीप सिंह, मौलागढ़ नई बस्ती भोजपुरा जिला बरेली से तरुण अंसारी, तराना, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके पूरा परिवार, साथी ये हैं ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम और ज्योति, गनगोला दातागंज से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शहबाज, सैफ, ईशान, आजम, अरहान। और अब आपको सुनाते हैं फिल्म बरेली की बर्फी से ये गाना जिसमें आवाज है आर्को की।

बरेली की बर्फी से ये आपने गाना सुना और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद और आपको सुनाते हैं अगला गाना, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे श्रोता कहां कहां से लगातार कमेंट कर रहे हैं गाने की फरमाइश के लिए। तो ये है अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से चंद्रेश गौहर, वंदना, मयंक, तन्वी और जयपाल यादव, राजनांद गांव छत्तीसगढ़, माँ बलमेश्वरी धाम सांकरा सोमानी जिला से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू प्रणय, रुद्रांश प्रताप, नेहा देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या, जितेंद्र किशन, सुनीता और नीलकंठ चंद्रहास, हिरेंद्र संजीवन साहू, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं, मामूल वाडी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पीएस नवानकर और ये है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकांक्षा शर्मा, वैदही और हंसिका के अलावा अंकिता जोशी, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली यूपी से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश कुमार उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या रचना, ओमवती भारती, खनक, शकुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह, गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन और सावन कुमार के अलावा सचिन और शक्ति, ग्राम दिगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता, श्रेया और बंटी, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानिक मानिकपुरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्लीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक और ये है रावर करनाल से विनोद लखनपाल, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा और माहे, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा, हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवारकर, निर्मला नवारकर और विशाल नहावारकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहरकर, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कांचोट लदावली से, ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील, शिवम, अभिमीत, भगवान दे, स्वाति, तान्या गौतम और उनका पूरा परिवार और ग्राम पंचायत बाकरगंज से ही हैं मास्टर अख्तर अली, शाहरुख अली, साहिबा मोबीन और आसिफ, कस्बा गुन्नैर यूपी से फारूक अली, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा और साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता, सत्यम, सुंदरम, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम, रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन

रिंकी और प्रिया सिंह, राही मासूम, संगीता, गरीब भाई, श्री रामोतार सराफ और साथी, इनके पूरा परिवार इस गाने को भी सुनना चाहते हैं। बोजीपुरा बरेली ग्राम मजवा गंगापुर से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया, शानूर, फलक नूर, ताज और मोहम्मद अबानूर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक, गोविंद चौक, टोनी, लव दीवान, राधे ढिंगरा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। हिंदराज रेडियो ऑडियंस एसोसिएशन तालुका खुपतिस महाराष्ट्र से हैं। बंधु लोहार, लव, शिवांश, चंद्रलेखा, देवीदास और हरिबाऊ बिडवाड़े भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, जो कि है दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

और अब ये गाना सुनेंगे आप अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है टू स्टेट्स और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता गांव खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हैं। बेड़ी नाना जी, लामसी मीना, तेजस, जय, हर्षिता और इनके परिवार के सदस्य, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता, साथी मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक और आर्यन कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री अंजलि, बाबा साहेब रामनिवास, धनंजय, पीबी कुलते, बीड शहर महाराष्ट्र से हैं और राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, सुशांत और चुलबुल रानी, साथी शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला, विशाल चेतन मनवर, रोशनी और प्रियांशी, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, बंटी और बबली वर्मा, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से खंडवा एमपी ग्राम जसवाड़ी से हैं, तेज प्रताप पाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शर्मा, शिवी मधुबाला प्रजापति, चिट्टा मंदिर रोड यमुना नगर से हैं। ये हमारे श्रोता दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुवीर, काजल, लखवीर, रानो, कृष्णा, चंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशांत, अनमोल, चटकू और मटकू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गाट के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और जयपाल यादव, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू, शाहजी नगर देल्लूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, सरोज, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, शिवा शिवानी, पवन गौड़, योगेंद्र नायक और साथी बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता, सुमित, वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज, पीहू और दिया चौरसिया, उल्हासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन, ये हैं। बुल्ढाना महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन, संजय, योगेश्वर, ग्राम उमरा अटाली खामगांव से गजानन सालुकर, सुरेश भिसे पाटिल, शेगांव से संतोष काले, अभयखेड़ा वाशिम से हीरामढ़ खिराडे, मानेवाडा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, साथी ये हैं दयानंद भवानीपेट सोलापुर से विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आरव चंद्रकला, काशीनाथ गणेश, संगीता आरोही और प्रियांशी। सुनते हैं ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में जो कि है फिल्म टू स्टेट से।

आपकी पसंद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। और जो अगला गाना है वो आप सभी सुनना चाहते हैं, उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खुरवाल, बोधराज, कमला रानी और भानु प्रकाश, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश तंगई, महेश प्रग्रेश, प्रतेश और इनका पूरा परिवार, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, ये है मछली गोदाम क्यादी मुड़ा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल अनम, यशफ रसीब, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, और ये है गांधी मार्ग मोती नगर नई दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट से हमारे सभी श्रोता मानसी, गौरव और इन अरोड़ा फैमिली, इनका पूरा परिवार, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अमंतिका, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए,

ये हमारे श्रोता संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव और ज्योति और ओजस्वी यादव, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, रजमान खान, आरिस खान, फैजा, नायजा और नाजिया के अलावा ये हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद विलेज बेचना से जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं, नई बस्ती गंज टुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और कलीम अंसारी, शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख तेलंगाना निजामाबाद से, छोटी

या करजत मुंबई से हैं, भाई अहमद बगावत, सदफ आरजू, जोही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले और वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसर, भावेश और सनी। गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, गांव जेद फरीदपुर से सोहेब साहिल भाई और इनके तमाम परिवार के सभी सदस्य भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता मलयान सरधना, मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जिव्यम और इनके परिवार के सदस्य, सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खरावन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम और अदीब भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित बेबी वानिका, गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से मदरसा गेट, भावपुर मुड़ियाऊ जैनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनी जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीफ अंसारी और आफिया परवीन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से राजेश कुमार, बिट्टू अर्चना, कल्पना, मुन्नी चांदनी और नंदिनी, राजकोट से जैमिन कुमार, भावसार, हेतल जैन, कृष्णा और राकेश, चोखड़ा धाम कॉलोनी सनावत खनगौन, एमपी से कृष्णपाल, तारा देवी, नव उदित सिंह और वैभव पाल सिंह, सिहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात, अदीप और कादिर, गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन लाल, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, गौरव, पुष्पाज और चंद्र प्रकाश, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, दबीरुल बेगम, शबनम, नाजमा, सरिता गौतम। ये है कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी इद्रीस, नूरी, मीना इरफान और कासिफ, सागर लखा दौन एमपी से लाडली जी चौबे, रिमझिम सक्षम और इनके पूरा परिवार भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्टो और रोजी पल डिकिस्टो। अब सुनते हैं विकी डोनर फिल्म से ये गाना जिसमें आवाज है आयुष्मान खुराना की।

और साथ ही आप सभी श्रोता भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशव रधान और तुलसी मस्कीन, और ये है सफीदो सिटी, हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली, रजत, लव और कुश खुराना के अलावा इनका पूरा परिवार, मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा, ये है प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाने, ज्योति नरवाने, आकांक्षा और आदर्श कुमार, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शेदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना आशीष च्यातन और मेघा मस्कीन।

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद आकाशवाणी बरेली से, और इस समय समय हो चुका है आपके अपने कार्यक्रम सब रंग का। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन। इसमें आवाज है सोनू निगम और धारिणी ठक्कर की।

अभी आप सुन रहे थे सब रंग, ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर और समय है आपके अपने कार्यक्रम झुमका गिरा रे का। तो चलिए सुनते हैं झुमका गिरा रे। बादल हैं काले और हमारे बरेली वाले सबसे निराले। नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त नीतू। आकाशवाणी बरेली 100.4 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम का नाम झुमका गिरा रे। भाई, जिसका हमें हफ्तों से इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। तपती गर्मी को टाटा बाय बाय कहकर हमारी झुमका सिटी में मानसून ने धमाकेदार एंट्री मार दी है। जी हाँ, बरेली में मानसून शुरू हो चुका है। चारों तरफ ठंडी हवाएं हैं, रिमझिम फुहारे हैं और ऐसा लगता है कि हमारा बरेली पूरे जोश के साथ इस पहली मानसून बारिश का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आज आपके पसंदीदा शो झुमका गिरा रे में हम बंद कमरे से बाहर निकलकर सीधे बरेली की सड़कों पर आ गए हैं और साथ ही हमने ये भी जाना है कि इस पहली मानसूनी बारिश में जनता का क्या मूड है। लेकिन मानसून की शुरुआत का असली मजा तो गानों के बिना अधूरा है। तो चलिए आज के सुहाने और भीगे सफर की शुरुआत करते हैं इस मानसून के नगमे के साथ। तो आनंद लीजिए।

0: झुमका।
1: तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। क्या बात है, इस गाने को सुनकर तो रोम रोम भी गया। वैसे जब मॉनसून की शुरुआत की खुशी में छाता संभाली और ऑटो का जो पर्दा है सभी हटा देते हैं ताकि बारिश का मजा भी ले सके। वैसे कुतुब खाने और कोहड़ा पीर के दुकानों पर चाय की चुस्कियाँ सभी लोग लेते हुए नजर आ ही जाते हैं। मानसून की पहली बारिश में उनका मिजाज भी बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि बरेली के जनता का क्या है मूड। तो आकाशवाणी बरेली पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम झुमका गिरारे। बरेली के लोगों का मूड मानसून में क्या है, चलिए जानते हैं। जी आपका नाम?
2: तारिक मैडम।
1: जी तारिक जी, आप यहाँ पर चाय की दुकान पर हैं दोस्तों के साथ, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, जब भी मानसून आता है बारिश में चाय पीना दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है।
1: जी खाली चाय पीने के लिए?
2: चाय के साथ पकौड़ा हो जाए तो और मजा आता है।
1: जी चाय पकौड़े साथ आपके और दोस्त हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं। जी आपका नाम?
3: जी आफ्ताब।
1: जी आफ्ताब जी, आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं, तो मॉनसून के सीज़न में आपका जो मूड है वो काफ़ी चेंज होता रहता होगा।
3: जी जी,
1: क्या
3: जी,
1: करना
3: जी
1: पसंद करते हैं
3: मानसून के टाइम में? तो दोस्तों के साथ में चाय पीना, और दोस्तों के साथ में अगर ज़्यादा हैवी रेन होती है तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते
1: हैं। घर में बैठना पसंद नहीं है?
3: नहीं नहीं नहीं, घर में
1: बाहर निकल,
3: बाहर
1: लॉन्ग ड्राइव पे बरेली के आसपास?
3: बरेली के नहीं, हिल स्टेशन नहीं, बरेली के आसपास में ही बस होते हैं। हिल स्टेशन पे तो मानसून में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है।
1: जी और घर पे रहें तो फिर क्या करना पसंद करते हैं?
3: घर पे भी चाय और पकौड़ा के साथ
1: आराम करना।
3: आराम करना।
1: जी शुक्रिया।

0: मेरा नाम रुद्र
1: जी। रुद्र, वाह, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। और आप इस सीजन में कैसा महसूस करते हैं, जब जब भी बारिश होती है क्या मन करता है आपको?
0: बारिश में तो दोस्तों यारों के साथ बाइक पे, स्कूटी पे, यू नो, घूमने का, थोड़ा चाय पीने का, घूमने का।

0: अच्छा लगता है ना बारिश से, अच्छा सीजन मेरे लिए तो और कोई नहीं।
1: आपका फेवरेट सीजन है?
0: मेरा फेवरेट सीजन है बारिश
1: जी। तो दोस्तों के साथ चिल आउट करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं रोड पे ऐसे ही, और भीगना भी पसंद है या फिर आपको लगता है कि कीचड़ है?
0: बहुत भीगना पसंद है, प्यार का मौसम है एकदम।
1: जी बिल्कुल, काफी रोमांटिक मौसम भी हो जाता है और ऊपर से अपने दोस्त अच्छे हो तो
0: दोस्त अच्छे हो, और हम लोग का तो मतलब पूरा ग्रुप ही ऐसा है कि मतलब बारिश के बिना सब कुछ अधूरा है। जैसी बारिश होती है हम लोग अपनी अपनी स्कूटी पे, यू नो, बाइक पे, कार में ऐसे निकल जाते हैं मस्ती मारने के लिए, गेड़ी मारने के लिए।
1: और अगर घर की बात करें तो घर में रहना पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वही पकौड़े उकौड़े, पकौड़े मम्मी बनाती नहीं है, हम बाहर ही निकल के यू नो थोड़ा घूमना पीना, हाँ खाना,
1: बाहर के पकौड़े और चाय।
0: हाँ बाहर की चाय, कैफे की, और बरेली में तो चाय फेमस ही है, आप कहीं भी पीजिए, यूनिवर्सिटी के बाहर ले लीजिए।

0: बरेली में तो चाय फेमस ही है, आप कहीं भी पीजिए, यूनिवर्सिटी के बाहर ले लीजिए, आप नंदा के पास ले लीजिए, चौकी चौराहे पे ले लीजिए, अमर उजाला के सामने ले लीजिए, बरेली में तो चाय की कमी ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया आपका।

0: मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है, चलिए जानते हैं कि लोग इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं। जी आपका नाम?
1: राधा।
0: राधा जी
1: किस तरीके से एंजॉय करती हैं?
2: हाँ, मुझे बारिश में दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, बाहर जाना
1: जी।
2: हाँ,
1: घर में नहीं बैठना पसंद है?
2: जी घर में नहीं, घर में तो बोरिंग होते हैं।
3: स्पाइसी
2: फूड फास्ट फूड।
1: तो आप दोनों दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं?
2: हाँ, हमेशा
1: जी,
2: जहाँ भी जाना होता हम दोनों साथ ही जाते हैं दोस्त
1: जी। अभी आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कैसा लग रहा है?
2: यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है,
1: कैंट एरिया में तो अच्छा।
2: जी जी कैंट एरिया में अच्छा लगता है
1: जी। शुक्रिया।
0: तो दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम झुमका घरारे। सावन का महीना आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन मॉनसून ने तो एंट्री दे दी ही है और युवाओं का जोश भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं और इस सुंदर मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। तो लोगों से भी हमने तमाम तरह की राय को जाना कि किस तरीके से वो मौसम का आनंद उठा रहे हैं। कुछ ने कहा कि वो सेल्फी लेने के लिए बाहर आते हैं और बारिश में धुला हुआ झुमका, जो झुमका तिराहे पर है, वो भी उनके इंस्टाग्राम रील पर एकदम वायरल हो जाती है। तो आपने सुना कि नई पीढ़ी का मानसून स्वागत करने का एकदम तरीका डिजिटल हो चला है। वैसे इस बरसते मौसम को देखकर हमारी डायरी से एक शेर तो ज़रूरी सामने आ जाता है कि मौसम है सुहाना और बरस रही हैं बूंदें, ऐसे में क्यों ना रेडियो पर यादों की खिड़की को ढूंढे। तो चलिए सुनते हैं इसी बात पर ये गाना।

तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, झुमका गिरा रे के मॉनसून स्पेशल सफर में बस इतना ही। मॉनसून सीजन तो शुरू हो चुका है, इसलिए मौसम का मजा लीजिए, सुरक्षित रहिए, गाड़ी जरा धीरे चलाइए, और हाँ, घर से निकलते समय छाता साथ रखना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे आपके इसी प्रोग्राम झुमका गिरा रे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरा रे, ये आकाशवाणी बरेली है, और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी लखनऊ से FM रेनबो।

0: बहुत ही खूबसूरत ईमेल्स आ के इंतज़ार कर रही हैं कि इन्हें पढ़ा जाएगा। उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, बबीता जी हैं, आइए उनसे पहले बात करते हैं। हेलो हेलो
1: इंस्पेक्टर राखी मैम,
0: जी, बबीता
1: हेलो।
0: जी, थैंक यू। आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपको सुन के तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है वैसे तो।
0: थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लिसनर्स की वजह से जो है रेडियो की पॉपुलैरिटी जो है वो है ना?
1: नहीं मैम वो तो है, बट ये तो ठीक है, बट जो पॉपुलैरिटी है ना वो हमारे आरजे की वजह से है।
0: बिल्कुल
1: इतना
0: बिल्कुल,
1: अच्छा
0: इसमें भी कोई
1: प्रोग्राम
0: डाउट नहीं है
1: करते हैं, इतनी
0: जी।
1: बेहतरीन वॉइस
0: देखिए,
1: है,
0: आरजेज
1: इतना
0: का तो
1: बढ़िया।
0: बबीता जी, देखिए हम लोग की आवाज आप तक पहुंचती है इसलिए आप आरजेज को जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्टाफ वर्क कर रहा होता है, वो सामने कभी नहीं, मतलब उनकी आवाजें आप तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन पूरी प्रोडक्शन टीम होती है, तो पूरी बहुत बहुत सारे लोगों का योगदान होता है जब एक कार्यक्रम
1: मैम
0: जो है वो श्रोताओं तक पहुंचता है ना? आप
1: जी
0: क्या
1: मैम
0: करती हैं
1: बिल्कुल।
0: बबीता?
1: मैं फिलहाल अभी घर ही पे रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। फिलहाल अभी मैं 2 साल से घर ही पे हूँ,
0: अच्छा
1: मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैम मैं घर का काम वगैरह करती हूँ
0: अच्छा
1: अभी होता
0: और
1: है।
0: आज
1: हाँ
0: क्या संदेश देना चाहेंगे आप रेडियो के माध्यम से?
1: मैम, मैम मैं पहले एड्रेस ले लूँ अगर इजाजत हो तो।
0: जी जी बताइए।
1: मैम मैं बेली कला पोस्ट अठवारा गुसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से बात कर रही हूँ। मैम मेरा संदेश ये जी
0: जी बबीता।
1: मैम मेरा संदेश ये रहेगा मैम, जैसे कि विकास सर, TSI विकास सर बताते रहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बस मैम बहुत लोगों को देखती हूँ रास्ते में, जब क्रॉसिंग बंद होती है या फिर कहीं पुलिस चेकिंग लगी होती है वो तभी हेलमेट लगाते हैं, अदरवाइज वो हेलमेट ना अपने हाथ में रख के चलाते हैं, बाइक बाइक हो या स्कूटी हो, क्योंकि वो
0: हाँ,
1: ऐसा
0: उसको
1: ना
0: वो
1: करें,
0: ब्रेसलेट
1: क्योंकि
0: की तरह पहन
1: मैम
0: लेते हैं। हाँ
1: जी, तो मैम वो ऐसा ना करें, क्योंकि जो हमारी सेफ्टी है, जो रूल रेगुलेशन है वो हमारे हित के लिए ही बनाए गए हैं। तो
0: वेरी ट्रू।
1: मैम, और मैम जो मैं अभी जा रही थी, एक हफ्ता हुआ है मैम, हमारे चौराहे पे चेकिंग लगी थी। मैम मेरा ये है कि मैं 10-12 साल से स्कूटी चला रही हूँ, लेकिन मैं कभी बिना हेलमेट की गाड़ी ही नहीं
0: बहुत
1: ड्राइव
0: सुंदर
1: करती हूँ,
0: बात है बबीता जी, और अक्सर
1: और
0: देखने
1: मैम
0: में
1: मैं
0: आता है ना,
1: देख रही
0: लोगों को यही चिंता होती है कि मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। भाई जब सर
1: हाँ
0: रहेगा
1: जी
0: तो हेयर
1: मैम
0: स्टाइल तो बना ही लोगे।
1: जी
0: हम
1: जी
0: लोगों का
1: तो
0: ये
1: मैम
0: कहना होता
1: ये
0: है।
1: बताइए मैम, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हेयर स्टाइल का क्या ही
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: बिल्कुल, सुरक्षा भाई सबसे पहले है, और क्योंकि वही है ना कि जैसे हमने बताया कि रेडियो में पूरा जैसे आकाशवाणी परिवार इन्वॉल्व होता है तब एक प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचता है, इसी तरह जो परिवार घर में बैठा है वो भी तो इंतजार कर रहा होता है ना, आपके साथ कितने लोग
1: जी
0: जुड़े
1: बिल्कुल
0: होते हैं,
1: मैम,
0: सब इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया बबीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है बहुत जल्द फिर से बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर
1: जी मैम
0: कॉलिंग।
1: मैम मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई, मैं बहुत खुश हुआ, ये दिन और
0: थैंक
1: तारीख मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगी। मैम
0: यू।
1: मैं एक लाइन बोल दूँ बस,
0: जी बोलिए बोलिए।
1: सभी लिसनर, सभी लोग मेरी प्यारी राखी मैम को सुनते रहे 100.7 FM रेनबो, बोले तो धड़कन लखनऊ
0: लखनऊ
1: की।
0: की,
1: थैंक यू।
0: थैंक यू बबीता। और ये थी प्यारी सी बबीता जी, और बहुत अच्छा संदेश भी दिया इन्होंने, और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट भी करके गई हैं। जावेद अख्तर जी की ईमेल आई हुई है, और ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग राखी मैम, संदेश आपके गीत हमारे में स्वागत करते हैं। इस बदलते हुए मौसम में अपना और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर बच्चे बारिश और धूप में खेलते हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी बन जाती है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने मेल किया है। शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन का भी इन्होंने नाम लिखकर ईमेल में भेजा है। बिल्कुल सही बात है, ये जब बारिश हो जाती है ना, जब हल्की गर्मी में बारिश हो जाती है तो बैक्टीरियाज और वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, तो इसलिए ज़रूर अच्छा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, और किसी भी तरह की सर्दी गर्मी के एक्सपोजर से अपने आप को बचा के रखिए। गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आया है। हेलो गुड मॉर्निंग राखी मैम, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, मेरा संदेश यही है कि जो लड़कियां शादी के बाद अपना अपने मायके में रहती हैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि अपनी ससुराल में रहना सीखें। मैंने देखा है कुछ लड़कियां क्या क्या करती हैं, जैसे है उनके हस्बैंड कहीं बाहर कमाने जाते हैं, जैसे ही उनके हस्बैंड कहीं बाहर कमाने जाते हैं लड़कियां उसी दिन अपने मायके में चली आती हैं। तो प्लीज ऐसा ना किया करें, अपने ससुराल वालों के साथ रहना भी बहुत जरूरी है। और जब ससुराल वालों को आप ससुराल को अपना

परिवार मानेंगी तभी भाई आपके आपको भी वो परिवार का हिस्सा मानेंगे। अगर आप इस तरह पति के जाते ही ससुराल से एग्जिट ले लेंगी तो फिर जाहिर है कि वक्त लगता है रिश्ते प्रगाढ़ बनाने में। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है गुलफ्शा। राखी सुल्तान रजा लिख रहे हैं, राखी मैम 11 बजे मैंने मेल किया था, अभी तक शामिल तो हुआ नहीं है, कुछ मेल छोड़ दिए क्या? रुके मैं जरा पीछे जाकर के चेक करती हूँ कि कुछ मेल छूट गए हैं क्या। जी, सुल्तान रजा जी ये आ गया आपका मेल 11 बजे वाला। काफी फूल वूल भेजे हैं आपने, और मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कितनी सुंदर बात लिखी है आपने सुल्तान रजा जी, बरेली से लिखते हैं, और आपने बहुत प्यारी बात लिखी है। और आपने जो ये बात कही है कि इतनी लंबी छुट्टी ना लिया करें, तो इसका ध्यान दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि इतनी लंबी छुट्टी ना हो। सिद्धार्थ गोंदाने जी ने कई नाम लिखकर भेजे हैं, लेकिन ये फरमाइशी गानों का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आपकी मेल तो शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम पढ़ दिया। फिर झग्गर राम साहू की तरफ से मेल आया है, नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, अध्यक्ष आराध्या साहू, आपने भी फरमाइश लिखकर भेजी है, और ये फरमाइशी गानों का कार्यक्रम नहीं है। तो बाकी आपकी जो ईमेल्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक गाने का वक्त हो गया है। एक अच्छा सा गाना आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे। फिलहाल आपने अगर अभी आज ही सुनना शुरू किया है, जो कि थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, लेकिन फिर भी, तो हम आपको बता दें कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो है fmakashwanilakhnow@gmail.com, और हमारे दो टेलीफोन नंबर्स जिन पर आप हमसे बात कर सकते हैं वो हैं 0522-223-8852 और 0522-298-2377, यानी 0522-2238-852, 0522-2982-377। और ये गाना सुनिए, कितना प्यारा गाना है।

0: सादगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।

0: 11:43 मिनट हो गए हैं और आइए कुछ ईमेल से शुरुआत करते हैं। हर बार हम फोन से शुरुआत कर रहे थे, इस बार ईमेल से शुरुआत करते हैं। तो भाई रामराज जी लिख रहे हैं, श्री गणेशाय नमः। संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, रामचरण, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, सबसे पहले हमारी तरफ आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के विनम्र धन्यवाद। हमारा संदेश है, सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करें, गरीब लोगों की जिंदगी सभी के सहारे है। धन्यवाद रामराज जी, आपने बातें तो बहुत अच्छी लिखी हैं और ये जो बात आपने लिखी ना कि सबकी सब एक दूसरे का सहारा बने, तो सहारे की जगह अगर एक दूसरे के सहयोगी बने तो और भी अच्छा लगेगा ना, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं फील होगा, है ना। फोन लाइन पर देखते हैं कौन है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: हेलो नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं?
0: ओहो शिवम जी, बड़ा स्टाइल है आपका तो। क्या करते हैं आप?
1: जी जी, हम प्लांट है, किराने की दुकान चला रहे हैं।
0: किराने की दुकान भी चलाते हैं, अच्छा। तो अगर आप जैसे आप देख नहीं सकते हैं तो आप किराने की दुकान पे बैठते हैं, तो अगर मान ली तो आपका सहयोग कोई ना कोई करता है या आप अकेले मैनेज कर लेते हैं सब कुछ?
1: जी, हमारे साधन रखते हैं कहीं कहीं सहयोगी के।
0: हाँ हाँ,
1: और वैसे भी थोड़ा बहुत पैसों की पहचान हम कर लेते हैं।
0: अच्छा जी, तो संदेश क्या देना चाहेंगे आज आप शिवम?
1: आज दीदी जी संदेश देना चाहेंगे, एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाए जी, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। और
0: जी
1: पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करें ताकि पशुओं को भी सुरक्षित रहने दें।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत दोनों ही बातें बहुत अच्छी की हैं और दोनों ही बातें ऐसी हैं जो प्रकृति से हमें

0: जोड़ के रखती हैं, है ना। तो ये है कि भाई अगर आप प्रकृति से जुड़कर रहना चाहते हैं तो आपको वृक्ष भी लगाने, पौधे लगाने चाहिए और वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जो हमारे कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए कुछ दाना पानी का जुगाड़ का इंतजाम करके रखें हमेशा। हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रही हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम असलाम, नाम बता
1: जिला
0: दें अपना
1: सीतापुर,
0: मोहतरमा।
1: सीतापुर पटना मस्जिद के पास है शमा परवीन।
0: ओहो शमा परवीन। मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, ऐसा लगता है कि दो खूबसूरत महिलाओं से बात हो रही है, एक शमा एक परवीन।
1: जी, मेरा पूरा नाम है शमा
0: शमा
1: परवीन।
0: परवीन बहुत प्यारा नाम है। शमा, क्या कहना चाहेंगे आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं
1: और
0: को, क्या
1: बताइए
0: संदेश
1: मैम, आप
0: देंगे?
1: कैसी हैं?
0: हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। अब अपनी तारीफ करेंगे ज्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा
1: आप ये बताइए,
0: ना।
1: लखनऊ का मौसम कैसा है? लखनऊ में बारिश
0: लखनऊ
1: हो
0: में
1: रही
0: सुबह
1: है।
0: देखिए, जब मैं आई हूँ 8 बजे, मतलब 7 बजे पहुंची थी 8 बजे के कार्यक्रम के लिए, उस वक्त तो बहुत अच्छी
1: जी,
0: बारिश हो रही थी, तो कुछ
1: बारिश
0: इलाकों
1: हो
0: में
1: रही है,
0: बारिश नहीं भी
1: बारिश
0: हुई।
1: हो रही है मैम। बहुत अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है मैम। आइए, आपको गरम गरम चाय पिलाएंगे, चाय की चुस्कियों के साथ गरम गरम पकौड़े खिलाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने, ये जो सुंदर सा निमंत्रण है इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, कभी मिलेंगे आपसे जरूर शमा।
1: क्योंकि चाय और पकौड़े का हम भी मजा ले रहे हैं और बरसात का भी मजा ले रहे हैं,
0: बहुत
1: इसलिए
0: अच्छी
1: आपको
0: बात
1: बुला
0: है।
1: रहे
0: नहीं,
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप खूब एंजॉय कीजिए।
1: मैम, आप
0: और
1: नहीं आती हैं, हम आपका इंतजार करते हैं, क्योंकि पहली बार लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, है ना, लास्ट टाइम तक मैम,
0: जी,
1: क्योंकि हमारे
0: आपकी आवाज
1: बात
0: थोड़ी।
1: हुई थी, बीच में हुई तो बात, लेकिन पहली बार हमारा FM रैनबो पे फोन लगा था और आपसे बात हुई थी,
0: हाँ
1: और
0: हाँ मुझे
1: आपको हम
0: याद
1: कभी
0: है।
1: भूल नहीं पाएंगे। इतनी
0: जी
1: प्यार से बात आप लोग करती हैं मैम,
0: जी
1: ऐसा लगता है हमारी और आपकी बचपन की दोस्ती है।
0: हाँ, वो तो है ही ना, क्योंकि रेडियो तो आपको याद से थोड़ी सुन रही
1: जी
0: होंगी।
1: हाँ, वो तो
0: हाँ
1: बात सही, आज से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन 1 साल होने वाला है
0: जी
1: तब से सुन रहे हैं, और पर बात करके तो ऐसा लगता है कि हमारी और सभी RJ की इतनी अच्छी दोस्ती बचपन की दोस्ती है। इतनी प्यार से
0: तो
1: आप लोग बात करती
0: जी
1: हैं।
0: जी आप हैं भी बहुत प्यारी, और अभी कोई अगर संदेश देना चाहती हैं आप हमारे लिसनर्स को तो वो भी आप बताएं कि क्या संदेश देना चाहती हैं।
1: संदेश हम ये देना चाहते हैं, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, बारिश में ज्यादा नहाए ना, वरना जुकाम भी हो सकता है और सर दर्द बुखार भी हो सकता है, तबीयत खराब हो जाएगी। नहाए पर उतना ना नहाए जितनी तबीयत खराब हो जाए,
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल सही
1: बारिश
0: कहा
1: का
0: आपने,
1: पानी बहुत नुकसान करता
0: नुकसान
1: है।
0: करता है जी। और
1: जी
0: बहुत
1: मैम,
0: बहुत शुक्रिया शमा परवीन कॉल करने के लिए,
1: मैम
0: बहुत।
1: हम अपने थोड़ा कुछ दोस्तों के नाम ले लें।
0: जल्दी से लीजिए।
1: गुलाब साप्पी, साहबा अंसारी, शाजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, RJ पूनम और मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद भाई।
0: ठीक है, तो सब लोग को बुला, अब निमंत्रण चला गया है, ये जितने
1: जी
0: लोग सुन रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: हम सबको बुला
0: जिनका
1: रहे हैं,
0: जिनका
1: सबको
0: इन्होंने
1: बुला रहे
0: नाम
1: हैं।
0: लिया है, ये सब पहुंच जाएं, वहां चाय पकौड़े का इंतजाम है।
1: ओके okay.
0: ठीक है, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं प्रोग्राम, और आपका ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ईमेल दूसरी बार खुल जाती है। महेंद्र देपन जी का आया है मैसेज, रूण जिला नागौर राजस्थान से हैं ये, और सबसे पहले नमस्कार करते हैं, और एक बहुत अच्छा सा इन्होंने कार्ड बनाकर भेजा है। RJ राखी मैम एवं श्रोता मित्रों को, बारिश का मौसम आया है, रफ्तार पर जरा काबू पाओ, और एक मोटरसाइकिल बनी है बहुत स्टाइलिश सी, सड़कें हैं गीले मेरे भाई, बाइक हमेशा धीरे चलाओ, अचानक ब्रेक से गाड़ी फिसलती है, सुरक्षित सफर का फर्ज निभाओ। बहुत सुंदर बात आपने कही, और विशेष यादें प्यारे भाई बहन सुल्तान रजा भाई, बाबू भाई अंसारी जी, रोशनी रावत दीदी और बबीता राव दीदी के लिए इन्होंने भेजा है, बहुत सुंदर सा कार्ड बना के, और बहुत सुंदर सा संदेश है कि जब बारिश हो रही हो तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि नेचर के आगे देखिए किसी की नहीं चलती, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है। वारिस अली खान जी लिख रहे हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे दोस्त राखी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम अर्ज है। हमारे देश में राजनीति का ज्ञान देने वाले 5 विश्वविद्यालय हैं, पान की दुकान जहाँ बाल कटवाते हैं वो दुकान, और जो देखिए कुछ चीज़ें आपने ऐसी लिख दी हैं जो हम पढ़ नहीं सकते हैं ना, ट्रेन का जनरल डिब्बा लिखा है इन्होंने, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो आप किसी के साथ भले ही ना चले लेकिन उसको उसके साथ चाल ना चलें, ये बात आपने बहुत सुंदर लिखी है। और जहाँ भी लोग एकत्रित होते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, कहीं पार्क में आप घूमने जाएंगे तो देखेंगे

कुछ लोग चेयर्स पे बैठ जाते हैं आराम से, या मुंडेर कोई बनी हो उस पे बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पर पूरा देश की राजनीति की चर्चा होती है और ये सब बताया जाता है कि देश में क्या क्या खराब हो रहा है, क्या क्या सुधार किस प्रकार से लाया जा सकता है। सेम होता है आप ट्रेन में जैसा कि उन्होंने बताया, तो ये चीज़ें तो एक अच्छी फलती फूलती सोसाइटी का बहुत अच्छा सुंदर चरित्र है। एम के राज लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं, नमस्कार आरजे जी, मैं मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। मजदूर की आवाज़ बनकर हर दिल में धड़कते हो तुम, आपकी आवाज़ से सुबह खिल जाती है वो भंवरा हो तुम। कार्यक्रम संदेश हमारे गीत आपके के माध्यम से विनती है, हर हफ्ते हर दिन श्रोताओं को उपयोगी जानकारी दी जाए, जैसे ट्रैफिक अपडेट तो आपको मिलती है, मौसम विज्ञान वैज्ञानिक दानिश जी भी आपको मौसम का हाल बताते हैं। तो ये तो विनती आप किससे कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाई, लेकिन श्रोताओं को उपयोगी जानकारी लगातार एफएम रेनबो के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती है, और साथ ही साथ होता है आपका एंटरटेनमेंट, जैसे कि अब ये जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं ये खास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए 100.7 एफएम रेनबो पर।

0: है कि किसी के काम को किसी की कॉपी ना करें, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा होना चाहिए। मैं रेडियो दोस्त के नाम शामिल कर लीजिए, महेंद्र दीपन, कुलदीप गुप्ता, फैज़ गौश, मोहम्मद अंसारी। वैसे देखा जाए तो शिल्पी जी आ गई हैं और हमें लुक्स दे रही हैं ये कि इनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। शत्रुपा लेके आई हो?
1: जी, शत्रुपा लेकर आए।
0: तो इतनी सुंदर क्यों दिख रही हो?
1: अब आप जब आती हैं
0: हाँ,
1: तो जो दूसरा होता
0: कंपटीशन
1: है वो
0: कर रही हो?
1: आपको आपको देख के उसकी खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती
0: कंपटीशन कर रही हो? 11:56 हो गए, तो शिल्पी को हम
1: है।
0: अब हैंड ओवर करते हैं स्टूडियो। और आपने जितने मेल्स भेजे, जितने फोन कॉल्स किए, सबके लिए शुक्रिया। अपनी सखी राखी को फिलहाल संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, फिर होगी जल्द मुलाकात। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि यही है धड़कन लखनऊ की। और एक बहुत ही सुंदर से प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़ के जाते हैं।

देखते ही देखते 11:55 हो गए हैं और बस एक कॉल लेने की कोशिश करते हैं कि शायद बात हो जाए, लेकिन ये ईमेल जो है इसको पढ़ लेते हैं पहले। नमस्ते राखी मैम, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, आज संदेश ये

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाया ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। ये सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करेगा। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है।

आज सुबह प्रधानमंत्री तोकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का औपचारिक रूप से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जनपद से ऑनलाइन सम्मिलित हुए। वीबीजी रामजी गारंटी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारिश्रमिक की संशोधित दरें भी अधिसूचित की हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 दिन की यह वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। अमरोहा में जून माह में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 11,405 चालान किए गए और 55 वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
5: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
6: शत्रुपा से माँ जी।
7: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
6: शत्रुपा से।
8: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
6: शत्रुपा से।
9: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
10: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
11: हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मौसम ने करवट ली है। ये जो हल्की हल्की बारिश हुई ना, इससे कहते हैं जो मौसम होता है उसका मूड पर बहुत असर होता है। एंड आई होप कि आप सबका मूड खूब अच्छा होगा। एंड अच्छे मौसम, अच्छे बारिश की हम उम्मीद कर रहे हैं कि खूब बारिश हो, खूब मजे हों, और साथ ही अपना आपको खास ध्यान रखना, ये भी आप जानते हैं। और आज का दिन आप जानते हैं क्यों खास होता है, क्योंकि भाई आज हम इंटीरियर की बात करते हैं, घर को सजाने की बात करते हैं। और घर सजा हुआ सुंदर किसे नहीं लगता, सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। शिल्पी आ चुकी है आज आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर, और आज हम खास बातें करेंगे। खास बातें इसलिए क्योंकि मैंने बारिश की बात की, और बारिश इंटरकनेक्ट होती है पेड़ पौधों से, यानी कि बारिश में जब पेड़ों पर पानी की फुहारें पड़ती हैं तो वो और खिलखिलाते और खुश होते नजर आते, जैसे लगता है उन्हें इसकी कब से जरूरत थी। और हम भी इन खिलखिलाते हंसते हुए चेहरों को देखकर, यानी पौधों को देखकर, अपने को बहुत तरोताजा फील करते हैं। वेल, तरोताजा तो हम तब भी फील करते हैं जब हम खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय करते हैं, और वो आप एंजॉय करते हैं 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। तो सुनते रहिए आज का शत्रुपा मेरे साथ।

0: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: वेल, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और जो नहीं जानते उन्हें मैंने बता दिया। अब हम सब ये जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं, यानी जो ट्रीज हैं, वो हमारे लाइफ का बेस हैं, यानी जिंदगी का आधार हैं ये पेड़ पौधे, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में। तो क्यों ना हम अपने घर को इनसे सजाएं। वेल, जब भी हम जाते हैं पेड़ पौधे लेने के लिए तो मन करता हर पौधा खरीद लो, लेकिन जब पौधों से घर की सजावट की बात हो तो शुरुआत आपको छोटे स्तर से करनी चाहिए। कुछ आसानी से उगने वाले पौधे खरीदिए जिनकी बहुत ज़्यादा देखभाल अभी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। तो कुछ ऐसे पौधे करिए जिन्हें कम खरीद करके और कम देखभाल करके आप अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं। तो वो कौन से पौधे हैं जिन्हें आप खरीदिए और अपने घर को एक डिफरेंट लुक दीजिए, ये सब आज हम जानेंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। साथ ही आप भी हमें बताइए कि आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए किस तरह के पौधों का यूज़ करती हैं, किस तरह आपने अपने घरों को पेड़ पौधों से सजाया है, ये आप हमें बताइए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सुबह का समय होता है और हमें आसपास ग्रीनरी दिखे तो मन बिल्कुल ग्लैड हो जाता है, मन खुश हो जाता है, मन करता है बस इन्हीं के पास बैठे। कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि ये हमसे बातें कर रहे हैं। हम बैठते हैं और हल्की सी हवा चलती, जब ये झूमते हैं, पत्तियां हिलती हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ये हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी लाइफ होती है, इनमें भी शायद फीलिंग्स होती हैं। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो यूं ही रहेगा जारी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए। एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, दिल और धड़कन का रिश्ता हो जाता है जब आप पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। वेल, अगर हम डिफरेंट लुक चाहते हैं, यानी घर में सजावट का डिफरेंट लुक चाहते हैं, तो अलग अलग तरह के गमलों में ढेर सारे छोटे छोटे पौधे आप लगा लीजिए। रंग और बनावट में जितनी वेराइटी होगी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए पत्तीदार और बेलदार पौधे, फूल और घरेलू पौधे और कैक्टस जैसे पौधे लगाइए। पौधों को भी घर में सजावट की तरह आपको यूज़ करना, यानी डेकोरेटिव आइटम्स की तरह ही इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ये घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और आपका घर कह उठता है वाह क्या बात है।

दोस्तों, आप से अगर कोई कहे कि बाथरूम में आप कुछ पौधों को लगाइए तो आपको लगेगा ये कैसे भाई। तो हम आपको बताते हैं कि बाथरूम में भी आप पौधे लगा सकते हैं, और उन पौधों को लगाइए जिन्हें अधिक नमी पसंद होती है, जैसे कि फर्न है, ऑर्किड है और पीस लिली है। इन जैसे पौधों को शावर से मिलने वाली जो नमी है उसमें ये खूब पनपते हैं। यही नहीं, आप अपनी डेस्कटॉप या फिर बुक शेल्फ या आपकी डाइनिंग टेबल, इन सब पर एयर प्लांट्स ज़रूर आजमाइए। इन्हें हफ्ते में एक बार वाटर स्प्रे करना पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: नब्बे वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
5: विश्वास और संस्कृति की अनमोल धरोहर
4: आकाशवाणी।
6: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
7: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित की हार्दिक बधाई।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: वैसे दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम क्षेत्र पर शिल्पी के साथ। 12:31 हो गए हैं। आज 2 जुलाई है और कल 3 जुलाई है। अब आप सोच रहे हैं भाई इसमें क्या खास बात है। बात खास इसलिए है कि कल 3 जुलाई को हम मनाएंगे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो भाई हम सब जानते हैं कि कागज या कपड़े का बैग ज्यादा सही रहता है बनिस्बत इस पे कि आप हर जगह पॉलीथीन का बैग ले जाएं। यानी पॉलीथीन का जितना कम से कम आप यूज कीजिए वो बेटर रहेगा, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी, हमारे लिए भी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मिलती हैं पॉली बैग्स में और हम उनको यूज करके फिर फेंक देते हैं, जिससे कि वो रीयूज नहीं हो पाती हैं और ऐसी चीजें रिसाइकिल भी नहीं होती हैं। तो क्यों ना इन चीजों का अगर कुछ बेहतर इस्तेमाल हो जाए तो कितना अच्छा हो। यानी घर की सजावट में इन फिजूल पड़ी चीजों से, जिनका जो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी नहीं अच्छी, अगर कुछ बढ़िया से यूज हो जाए तो कितना बेहतर रहेगा। तो कुछ टिप्स अगर हमको मिल जाए तो क्या खूब। और इसी बात को जारी रखने के लिए, यानी भाई किस तरह आप अपने वेस्ट आइटम्स को बहुत अच्छा यूज करके घर को सजा सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीप्ति साहू। तो दीप्ति से हम जानेंगे कुछ टिप्स। दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम शत्रुपा में।
3: थैंक यू शिल्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें एफएम रेनबो में आमंत्रित करने के लिए।
2: जी दीप्ति, ये बताइए। जी जी बताइए।
3: अभी जैसा कि हमने सुना, आपने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल हम सब्जियां लाने, फल लाने, सब चीजों में करते ही हैं।
2: जी।
3: जरूरत होती है हम लोगों को लाने के लिए, लेकिन जब हम उन्हें अपने घर लाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी इतनी सी बढ़ जाती है कि हम उनका मतलब सही इस्तेमाल कर सकें।
2: बिल्कुल।
3: तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि पॉलिथीन को हम इकट्ठा करें। कलरफुल पॉलिथीन आपके पास अगर इकट्ठा हो जाती है
2: जी,
3: तो आप उनको साफ कर लें। पहली बार तो जो भी इसमें गंदगी लगी है आप उसको साफ कर लें, साफ करके सुखा लें उन्हें।
2: जी जी।
3: और उन पॉलिथीन को इकट्ठा करके आप चौकोर कट कर लें। आप एक मार्क बना लीजिए 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, जितना बड़ा आप चाहते हैं। एक्चुअली हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप उन पॉलिथीन का इस्तेमाल फ्लावर बनाने में कैसे कर सकते हैं।
2: फ्लावर बनाने में, यानी उन जो पॉलिथीन आप लाते हैं डिफरेंट कलर्स की, उनको आप बहुत सुंदर फ्लावर्स उससे बना सकती हैं।
3: बिल्कुल बना सकती हैं आप, बस थोड़ी सी मेहनत है, इवन थोड़ी सी भी नहीं, बहुत थोड़ी सी मेहनत है। आप उन वही सुखा लीजिए, उन्हें साफ कर लीजिए और उन्हें आप स्क्वायर में कट कर लीजिए। फिर 5-6 स्क्वायर्स को लेकर के आप उनको बीच से एक छोटे से धागे से बांध दीजिए।
2: जी
3: ठीक है। और बांधने के बाद देखिए कि सारी जो पत्तियां हैं आपकी वो बनने लगेंगी।
2: जी।
3: अभी क्या करेंगे आप उन पत्तियों को एक पेन से या पेंसिल से लेकर के उन सारी पत्तियों को धीरे धीरे से प्रेशर करके आप जब उठाएंगे ना तो देखते ना ये फूल होता है हमारा,
2: जी, जी,
3: सारी पत्तियां खुली होती है तो वो पूरी पत्तियां वैसे ही खिल जाएंगी और आपका एक कलरफुल फ्लावर तैयार हो जाएगा।
2: जी।
3: तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बहुत खूबसूरत आपने तरीका बताया कि किस तरह ये जो पॉलीथीन होती है डिफरेंट कलर्स की, इनको आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। दीप्ति, आपने अक्सर देखा होगा कि घर पर पानी की बॉटल्स या तरह तरह की बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की, उन्हें हम यूज करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि बाहर कचरा तो बढ़ता ही है साथ ही हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी कितनी हानिकारक है आप जानती हैं। तो आप बताइए कि उन बॉटल्स का क्या बढ़िया यूज हो सकता है।
3: ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि बॉटल्स का आप इतना सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों का सीजन है, आप कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, बाहर पानी पीते हैं, ठंडा पानी चाहिए होता है, तो इस तरह आपके पास बहुत सारी बॉटल कलेक्ट हो जाती है। तो आपके अगर पास छोटी बॉटल है तो आप उसको आसानी से वॉश करके उसका जो रैपर होता है कट कर लीजिए और उस पर आप एक्रेलिक कलर, फैब्रिक कलर से मनचाही डिजाइन बनाइए। हम तो बच्चों को अक्सर कहते हैं कि आप अपने जो लाफिंग इमोजीज होती है कितनी क्या क्यूट होती है, प्यारी सी होती है, आप उसको बनाइए बढ़िया से और उसके अंदर आप पानी फिल कर दीजिए और जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो पानी में ग्रोथ कट करती है, आराम से उसकी ग्रोथ होती है, तो आप उसको लगाइए उसके अंदर और आपका एक छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है।
2: जी हाँ। और इसे हम कहीं टांग भी सकते हैं क्यों दीप्ति, ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं टांग दे, जैसे 2 बॉटल्स एक तरह की हमने इसको
3: बिल्कुल उसमें अपने आते हैं कि आप 2 होल्स कर लीजिए अपनी बॉटल में
2: जी
3: इक्वल साइज पे और उनको एक किसी डोरी से या सूत की जूट की डोरी आती है आप उससे बांध दीजिए और कहीं पर भी हैंग कर लीजिए, कितना प्यारा मतलब बहुत अच्छा लगता है।
2: जी बिल्कुल, मैं तो सुन के बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। और अब ये मैं जानना चाहती हूँ दीप्ति आपसे कि अगर ये जो पेन होते हैं बच्चे बहुत सारे यूज करते हैं, थ्रो करते हैं और घर पे पेनों का अंबार लग जाता है, पेंसिल्स भी कभी कभी छोटी छोटी पड़ी रहती हैं, उनको भी हम यूज नहीं कर पाते।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया।

0: बताते हैं कि क्या करें इन सब चीजों का, क्योंकि उनको फेंकते भी नहीं बनता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि हमें बिल्कुल, तो इनका क्या यूज किया जा सकता है थोड़ा सा दीप्ति ये बताइए।
1: देखिए, ऐसे में आप क्या कीजिए, जो आपके पास बॉटल्स हैं, है
0: जी
1: ना, बॉटल्स का क्या करिए कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कट कर दीजिए, जो
0: जी
1: थोड़ा सा स्लोप होता है ना, उतना हिस्सा आप कट कर दीजिए।
0: जी
1: उसके बाद आपके पास जो अखबार आता है ना, अखबार को ले लीजिए कुछ स्क्वायर्स में, उनको
0: जी
1: आप रोल करिए, रोल करके उस जो कट आपने किया है बॉटल का, उसके ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाइए अप्लाई
0: जी
1: करके, जो आपने रोल करके बनाई है अखबार की चीजें, वो उनपे आप लाइन से स्टिक कर दीजिए बारी बारी।
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: वो सूख जाए तो उस पर आप मनचाहा कलर कर लीजिए, जो भी आप कलर चाहती हैं आप, अगर
0: जी
1: आप चाहती हैं कि ग्लिटर्स लगा दें, या आपके पास पुराने बटन पड़े होते हैं
0: हाँ
1: आप उन
0: हाँ हाँ हाँ
1: बटन्स को
0: बहुत
1: लगा
0: सारे बहुत
1: दीजिए,
0: सारे।
1: बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप उनको लगा दीजिए, या फिर कभी कोई भी डेकोरेटिव सामान होता है एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास रखा होता है,
0: जी
1: आप उनको लगा दीजिए। ग्लिटर शीट्स होती हैं उनके फ्लावर बना लीजिए, उनको फिर स्टिक कर दीजिए, वो एक आपका एक कटलरी सेट, एक पेन स्टैंड ऐसा बन जाता है। आप जो भी आपके एक्स्ट्रा पेन होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, आप उसमें उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं,
0: जी
1: इधर
0: जी
1: उधर रखने से अच्छा है कि आप उनमें रख लीजिए, तो आपका एक बॉटल से पेन स्टैंड अच्छा सा बन सकता है। फ्लावर वाज बना सकती हैं आप, है ना, एक
0: जी
1: पिगी बैंक बना सकती हैं उस
0: अरे
1: बॉटल
0: वाह।
1: से, बहुत होता है। पिगी बैंक क्या है कि बच्चे अपना आराम से जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं उसमें इकट्ठा करें, और उसके लिए कुछ खास नहीं करना है, आप मम्मी या पापा की हेल्प लीजिए, आप बच्चों से हम नहीं कहेंगे कि आप खुद से करिए, बॉटल लीजिए, उसमें इतना बड़ा कट बनाइए कि उसमें आप अपना कॉइन या आपका जो नोट है आप उसमें रख सकें
0: जी
1: आसानी
0: जी
1: से,
0: जी
1: और उस बॉटल को बढ़िया से कलर भी कर लीजिए, आपका पिगी बैंक तैयार हो जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे आपने हमें टिप्स बताए दीप्ति, कि किस तरह हम इन वेस्ट चीजों को यूज कर सकते हैं, यानी रीयूज कर सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और आज आपको बता दूं कि शत्रुपा में हम इंटीरियर की बात करें, यानी घर को हम कैसे सजा सकते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बेकार पड़ी चीजों को ही कुछ ऐसा यूज किया जाए कि जिससे कि वो खूबसूरत भी लगे और हमारा एटमोस्फियर को भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच दीप्ति, आपने हमसे बात करी और इतनी अच्छी सारी टिप्स हमसे शेयर करी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, थैंक
0: तो भाई ये तो थी दीप्ति, जिन्होंने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करे, एंड आई होप आपको भी ये टिप्स यूजफुल लगे होंगे और आप भी इन टिप्स को जरूर अप्लाई करेंगे। वैसे आप क्रिएटिव बहुत हैं, इनमें आप अपनी क्रिएटिविटी मिक्स कर सकते हैं और अपने घर को और खूबसूरती से सजा सकते हैं, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम बिना गानों के नहीं सजा लगता है ना। तो भाई एक बढ़िया सा गाना आपके लिए, सुनते रहिए प्रोग्राम शत्रुपा 107 FM रेनबो पर आज शिल्पी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: यू आर लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
5: अभी 12:45 हो गए, तेजी से बढ़ता समय कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन हाँ जो समय हमारे पास है उसमें हम कुछ यूजफुल बातें करते हैं तो वो उस समय की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और हमारे टाइम का बेस्ट यूटिलाइज होता है। वेल दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से आप ये जो प्लास्टिक्स हैं इनको बेस्ट यूज कर सकते हैं सजावट में घर के, या फिर अगर आपकी कुछ और क्रिएटिविटी तो आप बताइए, आप हमें बताइए कि आप किस तरह से इन बेस्ट जो बेकार की चीजें घर में पड़े रहते हैं उनका बेस्ट यूज करते हैं। आप हमें कहाँ बताएंगे, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमें बताइए कि किस तरह आप अपने घर को डेकोरेट करने में इन चीजों का यूज करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी भी हम शेयर करना चाहेंगे तमाम लिसनर्स के साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ। तो बस यूं ही सुनते रहिए इस खूबसूरत से म्यूजिकल सफर को आज शिल्पी के साथ। Yes.

बहुत खूबसूरत सा साफ सुथरा माहौल हम सबको अच्छा लगता है और अपने घर को हम यकीनन बहुत साफ रखते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो जो भी हाथ में पैकेट्स हम लिए रहते हैं, वो बिस्किट के पैकेट हो, किसी भी चीज के पैकेट, हम खाते हैं और उसको सड़क पर यूं ही डाल देते हैं, भले ही हमारे सामने कचरे का डिब्बा रखा हो, लेकिन हमें उससे ओवरलुक करके चले जाते हैं क्योंकि हम इससे अपना फर्ज समझते ही नहीं कि हमें अपने सोसाइटी को भी साफ रखना है जहां हम रहते हैं, अपने देश को भी साफ रखना है, ये भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी है। और सिर्फ सफाई ही नहीं रखनी है, हमें उन चीजों को दूर रखना है जो हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। अब जैसे कहा जाता है आपसे कई बार कि ये जो पॉलीथिन वाले बैग्स हैं इनको ले जाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, पेपर बैग्स को यूज़ कीजिए, कागज के थैलों को यूज़ कीजिए, लेकिन शायद अभी जागरूकता उतनी नहीं फैली है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पर थोड़े लोग भी इसकी शुरुआत करते हैं तो एक बहुत लंबा कारवा बन जाएगा। वैसे हम आपको बता दें, मीनाक्षी का मैसेज मेरे पास आ गया और मीनाक्षी लिखती हैं लखनऊ से, चिन्हट लखनऊ से लिखती हैं, लिखती हैं, मैम घर में इस्तेमाल पड़ी जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं यूज़ करना होता है उनका बेस्ट यूज़ करती हूँ, उन्हें घर के डेकोरेशन में सजाती हूँ, इवन जो अखबार आते हैं उनसे उनको मैं किसी भी गम में डिप करके उनको हार्ड बनाने के लिए किसी भी चीज़ को उस पर चिपका के और उसको कलर करके एक बहुत ही खूबसूरत सा आइटम बनाती हूँ, और जब भी मेरे घर कोई आता है तो मैं इसे गिफ्ट करती हूँ और साथ ही एक संदेश भी देती हूँ कि भाई आप भी इसी तरह घर की बेकार पड़ी चीज़ों को यूं ही कचरे में ना फेंक दीजिए, इनका आप जो यूज़ कर सकते हैं वो करिए, और अगर कोई दूसरा नहीं यूज़ कर पा रहा है तो आप खुद उसे गिफ्ट कर दीजिए कुछ चीज़ें, ताकि उनको भी लगे कि भाई इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात है, इन्होंने एक और चीज़ मीनाक्षी ने बहुत अच्छी लिखी है, और मीनाक्षी लिख रही हैं कि मैम पानी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि पानी की जो कमी है वो आगे आने वाले समय में बहुत ख़तरनाक होने वाली है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पानी को ज़रूर बचाएं क्योंकि अक्सर अभी भी पानी का लगातार इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, लोग अपनी वाहनों को धोने में पानी का ट्यूब लगा के इस्तेमाल करते हैं, कई बार

आपके थ्रू ये मैसेज दिया जाता है या अखबारों में निकलता है, लेकिन इस चीज़ पर शायद पब्लिक ध्यान नहीं देती और उसे लगता है मेरे सिर्फ बचाने से क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे हमारे पर्यावरण को साफ करने में, और साथ ही हम एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। ये चीज़ बहुत एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो हम ये कहने के लायक ही नहीं है कि भाई ऐसा करना चाहिए। अरे भाई हम भी कर रहे हैं, इसलिए आपको करना चाहिए। आपको देखकर लोग इंस्पायर होंगे और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आप सोसाइटी में फील करेंगे। और फिलहाल एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला मेरी बातों के बाद इस खूबसूरत गाने के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर।

well, इन वादियों को हसीन रखने का आपका पूरा कर्तव्य है, यानी इस माहौल को, इस देश को, इस धरती को सुंदर आप और हम मिलकर बना सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। फिलहाल 12:55 हो गए हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो बस शिल्पी इजाजत ले रही प्रोग्राम शत्रुपा से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुक्त।
1: सौ चार मेगा हर्ट्स पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और प्रोग्राम का समय हो चुका है अनुरोध गीत का।

प्रोग्राम का पहला गाना मैं हूं ना फिल्म से सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज। और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित और हैप्पी दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी पिंकी अफजल मलिक और अमोल साथ ही रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सानी सुनीता और संदीप पंचकुला सेक्टर 9 से आशुतोष अश्विनी गोविंद टोनी लव राधे भाविक ये है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले राजदीप राशि और शीतल छत्र

सती संबान जी नगर से इनके परिवार के सभी सदस्य भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद एमपी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौर और शादाब खत्री। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है मैं हूं ना, सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में।

श्रोताओं, वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ आपका अपना पसंदीदा रेडियो भी डिजिटल अवतार ले चुका है। प्रसार भारती लेकर आया है अपना खुद का नया OTT प्लेटफॉर्म वेप्स। जी हाँ, अब आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेप्स OTT ऐप डाउनलोड करके आकाशवाणी बरेली के साथ साथ देश भर के 40 से ज्यादा लाइव रेडियो चैनल्स बिल्कुल फ्री में कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें वेप्स ऐप और जुड़िए आकाशवाणी के डिजिटल तरंगों के साथ। और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। अब सुनते हैं ऐतराज फिल्म का ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और ये गाना आपने सुना फिल्म ऐतराज़ से उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में।

और अब जो अगला गाना है वो है फिल्म जानवर से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत, पाकिजर रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद एमपी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़, शादाब खत्री, सरगुजा मैनपेट से ये हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा आदिबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन और सफुद्दीन और कुमारी वली, कुमारी डब्लू जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अक्रम आसमा और उल्ला आसमा। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम जानवर।

की आवाज में। ये गाना फिल्म का नाम जीना सिर्फ मेरे लिए, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये है मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन अफजाल, रामप्रसाद शर्मा, पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम तबस्सुम, गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सदीक अली और साबिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा, पुराना तालाब डुमराव से वल्ली उलान सारी, आसमान नाज और सोनम, सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शर्मीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जीना सिर्फ मेरे लिए, फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम जीना सिर्फ मेरे लिए से आपने ये गाना सुना। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब लीजिए सुनिए फिल्म जीत से ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है अनुरोध की। और जो अगला गाना है वो है फिल्म आशिकी से। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान हादिया, शुएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई शाहिद, गांधी बागाकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल राजेश, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, ये है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओमप्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति नवनीत, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, और ये है जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार के सदस्य, पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक अश्विनी, गोविंद टोनी, दीवान लव और राधे भाविक। ये हैं हमारे श्रोता पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम, और गैगटा काशी धनपुर बरेली से फहीम खान, सदीक अली और साबिया। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम आशिकी, आवाज कुमार शानू की।

तो इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम अनुरोध गीत, और आज का जो सफर है वो यहीं तक। मेरे सहयोगी मोहम्मद परवेज जो कि स्टूडियोज में आ चुके हैं, आगे के प्रोग्राम आप सुनेंगे उनके साथ।

0: वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ आपका अपना पसंदीदा रेडियो भी डिजिटल अवतार ले चुका है। प्रसार भारती लेकर आया है अपना खुद का नया OTT प्लेटफॉर्म वेब्स। जी हाँ, अब आप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से वेब्स OTT ऐप डाउनलोड करके आकाशवाणी बरेली के साथ साथ देश भर के 40 से ज्यादा लाइव रेडियो चैनल्स बिल्कुल फ्री में कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें वेब्स ऐप और जुड़िए आकाशवाणी के डिजिटल तरंगों के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे खतों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत नीतू त्रिपाठी के साथ 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम रसरंग। रसरंग में ये पहली गजल हरिहरन की आवाज में।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है सही होने और सही लगने में क्या फर्क है। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे 2:30 पर। प्रसारण का समय रहेगा शाम 4 बजे और हमारा फोन नंबर है 0581-251-7200। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम में ये गजल कैसर आज़ाद बदायूनी की आवाज़ में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं रसरंग, और ये लोकगीत अंशुना सक्सेना के स्वर में।

श्रोताओं, 2:30 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है, सही होने और सही लगने में क्या फर्क है। इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे हम 2:30 पर और प्रसारण का समय रहेगा शाम 4 बजे। हमारा फोन नंबर है 0581-251-7200। फोन करना ना भूलिए और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

0: वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ आपका अपना पसंदीदा रेडियो भी डिजिटल अवतार ले चुका है। प्रसार भारती लेकर आया है अपना खुद का नया OTT प्लेटफॉर्म वेब्स। जी हाँ, अब आप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से वेब्स OTT ऐप डाउनलोड करके आकाशवाणी बरेली के साथ साथ देश भर के 40 से ज्यादा लाइव रेडियो चैनल्स बिल्कुल फ्री में कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें वेब्स ऐप और जुड़िए आकाशवाणी के डिजिटल तरंगों के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रसरंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, समय हो चला है विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शुरू में भी रोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से

0: बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान

0: रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: और झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
0: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
1: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है, भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
1: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
0: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
1: जी रहे हैं
0: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं, और आनंद का जो आपस में
1: क्षण
0: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। सोनाली,
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
0: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए, जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है, कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
0: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए, आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए,
0: गीत सुनना चाहिए,
1: तो सुनते हैं गीत।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस

0: कला की तरफ हो जाता है। तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
1: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
0: जाती है जी।
1: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था। और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
0: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
0: जी
1: सम्मानित कर दिया गया उन्हें जी।
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
0: बिल्कुल, अपने लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है कांथा कढ़ाई ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे
1: तो एक गाना सुनते हैं।
0: चलिए

0: करना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
0: हमारा
1: मजाक
0: चेहरा
1: में
0: वैसा
1: बोलते
0: ही
1: हैं
0: हो जाए।
1: वैसे ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
0: हाँ,
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
0: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
1: हाँ
0: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख

0: भाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
0: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
0: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
1: हाँ
0: फोटोज,
1: बिल्कुल,
0: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
0: और
1: सारी
0: कुछ
1: जी।
0: तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है, हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
0: जी।
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं, तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं, अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
0: और फिर
1: जाता है, और
0: उस
1: फिर वो बातें
0: वक्त,
1: पता नहीं कहाँ तक चली जाती
0: और
1: है।
0: उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ना,
1: सही कहा।
0: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
1: बिल्कुल।
0: सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है, तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी, वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई, मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना, फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है। मेरे सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, सौ दशमलव 4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया

0: बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।

0: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
5: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ,

0: क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गाड़ी में बैठ
6: के सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
5: इसके
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो, महाराज जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।

0: लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
1: श्रीहरिकोटा से आदित्य हेलवंशरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
0: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
2: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
3: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
2: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
3: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
4: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
5: हम सब ठीक हैं।

0: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
1: जी हम तैयार हैं।
0: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौरयान आदित्य L1 के बारे में।
2: आदित्य L1 के बारे में?
3: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
4: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
4: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
0: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
5: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
0: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
5: जी मेरा नाम श्रुति है।
0: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
4: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
1: अच्छा सर।
7: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
5: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
7: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
7: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
1: जी सर।
5: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
7: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
5: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
7: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
7: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
5: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशेष

0: स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
3: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेशी 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और श्रोताओं, आज का विषय है सही होने और सही लगने में क्या फर्क है। श्रोताओं नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सही होने और सही लगने में क्या फर्क है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि सही होने और सही लगने में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। कहते हैं ना कि सही होना का अर्थ है कि कोई बात तथ्यों, तर्क, नैतिकता या वास्तविकता के आधार पर सही हो, और सही लगने का मतलब है कि कोई बात हमारी सोच, भावनाओं, अनुभवों या पूर्वाग्रह के कारणों से हमें सही प्रतीत हो, भले ही वो वास्तव में सही ना हो। उदाहरण के तौर पर कि किसी व्यक्ति को गुस्से में तुरंत जवाब देना और उस समय सही लग सकता है, लेकिन शांत होकर सोचने पर वही काम सही नहीं होता। इसको हम कह सकते हैं कि सही होना सत्य पर आधारित होता है, जबकि सही लगना हमारी धारणा पर। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले केवल अपनी भावना पर नहीं, बल्कि तथ्य, विवेक और निष्पक्ष सोच पर भरोसा करना चाहिए। यही समझदारी और परिपक्वता की पहचान है। देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं।
9: हेलो सर, नमस्कार।
8: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
9: सर, मैं कुमार रेडियो क्लब सिद्धार्थ नगर इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
8: क्या बात है राजेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। बहुत दिनों के बाद आपकी कॉल आई।
9: सर, प्राइवेट जॉब करता हूँ तो समय नहीं मिल पाता, लेकिन आपके सारे प्रोग्राम सुनता हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित जो भी कार्यक्रम है वो ज्ञानवर्धक तो है ही है, संगीत में तो है ही है, जानकारी देते हैं इसलिए, और आप लोगों की आवाज़ सुनकर तो सर मन खुश हो जाता है।
8: वाकई में आप जैसे श्रोताओं की ही हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। राजेश श्रीवास्तव जी, आज का जो हमारा टॉपिक है
9: जी,
8: सही होने में और सही लगने में क्या फर्क है, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप?
9: सर, सही काम हमें लगता है कि अगला जो हमसे बात कह रहा है इसकी बात में दम है, सही है, तो वो चार लोग भी अगर एक बात को कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, ऐसा कर ले।

0: देना चाहिए और यहाँ पे ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। तो जो बात चार लोग कहते हैं और हमें भी लगता है कि हाँ ये बात सही है, इसमें हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तो वो काम हम मन में पहले विचार लेते हैं, फिर अगर हम उसी काम को करने का अंजाम करते हैं, अंजाम देते हैं करने में, तो वो काम हमारा सफल भी होता है और सही होता है, क्योंकि हमने पहले से विचारा हुआ होता है।
1: जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ सही होने और लगने से है। सही लगने का मतलब होता है कि कोई भी बात, जैसे कि हमारी सोच, भावनाओं या अनुभवों के कारण हमें सही लगती हो, ठीक है, भले ही वास्तव में वो सही ना हो, जिसको हम सही मान रहे हैं लेकिन वो सही नहीं है, लेकिन हमें सही लग रही है। तो हमारा कहने का तात्पर्य बस सिर्फ यही है कि सही होना सत्य पर आधारित होता है, जबकि सही लगना हमारी धारणा पर। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले केवल अपनी भावना पर नहीं बल्कि तथ्य और निष्पक्ष सोच पर भरोसा करना चाहिए, है ना? अच्छा लगा श्रीवास्तव जी आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: सर फिल्म अनुराग से गीत है, सुन रही पवन पवन पुरवैया,
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं 102.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। सही होना और सही लगना इन छोटे छोटे शब्दों में ही असली और नकली का सार छुपा है। जो असली है वो सही है और

0: जो उसके जैसा है वो उसकी मूरत है। ये विचार अपने साझा किए उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल बख्तियारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर विचार आपके। और देखते हैं कि आप हमारे अगली कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला बरेली से, कनेटा से कैंट के पास है।
0: क्या करते हैं सुनील कुमार जी आप?
1: बस सर, मुझे भी तो घर पे रहते हैं, रहते हैं आप।
0: चलिए, आज का हमारा जो विषय है, सही होने और सही लगने में क्या फर्क है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: हम ये कहना चाहेंगे, सही होने में जैसे कोई भी काम आप अच्छा कर रहे हैं तो सही लगेगा, क्योंकि सही होने में जो है कि दूसरा तारीफ करे तभी सही है और अच्छा काम करें तो सही होगा और तभी अच्छा लगेगा।
0: और सही लगने में?
1: सही लगने में यही है कि हमें भी खुशी होगी अगर सामने वाला तारीफ करेगा।
0: जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: पास फिल्म का सर
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: ये कमेंट हमें किया है पारस कुशवाहा ने, जो लिखते हैं कि जो इंसान सही होता है वो कभी भी सही रहता है, उसे सही होने का दिखावा नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में सही इंसान है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। जो सही है वो तो सही होता ही है, लेकिन कभी कभी लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भी हम सही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होते हैं। बहुत धन्यवाद। और अगला कमेंट हमारे पास आया है विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, भवानी आरप, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रियांशी सोनी, दयानंद कॉटेज, भवानी पेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से। आपने लिखा है कि सही होने और सही लगने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सही होना सच, तथ्य और वास्तविकता पर आधारित होता है। सही लगना हमारी सोच, भावनाओं, अनुभवों या धारणाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई कड़वी बात हमें गलत लग सकती है, लेकिन वो वास्तव में सही होती है। और कई बार कोई मीठी बात सही लगती है पर सच नहीं होती। गहरी बात, आप कहते हैं कि जो सही लगता है वो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो सच में सही होता है वो समय के साथ सही साबित ज़रूर होता है। वाकई में बहुत प्यारी बात आपने लिख करके भेजी विष्णु मिस्किन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि अब हमारे अगले कॉलर कौन हैं।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ, कौन श्रोता बोल रहे हैं हमारे?
2: जी, मौलागंज नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी बोल रही
1: हूँ। तरन्नुम अंसारी जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, सही होने में और सही लगने में क्या फर्क है?
2: जी सर, यही फर्क है, अगर जैसे किसी कोई व्यक्ति रोगित है तो उसी को पता होगा हम सही है नहीं, हम तो देखेंगे तो हमें तो सही लगेगा, लेकिन उसी से पूछा जाए तो उसे पता होगा कि मतलब वो सही है या नहीं।
1: जी, सही होने का मतलब है कि कोई बात तथ्यों, तर्क, नैतिकता या वास्तविकता के आधार पर सही हो। और सही लगना का मतलब है कि कोई भी बात हमारी सोच, भावनाओं, अनुभवों या पूर्वाग्रहों के कारण हमें सही प्रतीत होती हो, भले ही वास्तव में सही ना हो, है ना? जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को गुस्से में तुरंत जवाब देना, उस समय तो उसे सही लग सकता है, लेकिन जब वो शांत होकर सोचने पर वही काम सही नहीं होता सोचता है ना? कौन सा गीत सुनेंगी आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
2: फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गाने के बोलो ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, हम कहीं नहीं गए, आपके साथ हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और हमारे ये बहुत पुराने लिसनर हैं, इनका एक कमेंट आया है, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी। आप कहते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, आपको भी हमारा आदाब नमस्कार। आज का विषय, सही होना और सही लगने में क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। सही लगना ये एक व्यक्ति की सोच होती है और सही होना ये सबका नज़रिया होता है। अगर कोई चीज़ या इंसान, अगर सब लोग ये कहते हैं कि फला इंसान बहुत अच्छा है, उसके अंदर ये खासियत है, तो ये इसको सही होना माना जाएगा। और एक व्यक्ति ये कहे कि ये इंसान मुझे ठीक लगता, बज़ाहिर वो ठीक नहीं है, तो वो उसे ठीक लगना कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही लाल मोहम्मद अंसारी जी, कि एक चीज़ जो सही है तो वो तो सभी की नज़रों में सही है, और एक चीज़ जो देखने में तो सही लग रही है लेकिन वो सही नहीं है ना, तो उसको भी हम सही कह देते हैं कभी कभी, लेकिन बज़ाहिर वो गलती होती है। बहुत अच्छे विचार लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मैं विष्णु मिस्किन बात कर रहा हूँ सर, शोलापुर महाराष्ट्र से।
1: बहुत स्वागत है आपका, और लगता है कि आज पहली बार आपका कॉल लगा है हमारे प्रोग्राम में।
2: नहीं सर, दूसरी बार सर।
1: अच्छा अच्छा,
2: बहुत बार कोशिश करता हूँ लेकिन अभी दूसरी बार लग गया सर।
1: चलिए, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कैसे लगते हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम?
2: अच्छे लगते हैं सर, सब कार्यक्रम सुनता रहता हूँ। आपका पत्र मिला, आपके आपकी पसंद, सब कार्यक्रम सुनता हूँ मैं सर बरेली के।
1: जी जी, आपके मेल्स वगैरह और कमेंट हमें बराबर मिलते रहते हैं। आप अपने खत भी भेजिएगा हमारे प्रोग्राम में, तो हमें और भी अच्छा लगेगा,
2: उसमें भी शामिल होने की कोशिश करता हूँ सर।
1: आज का जो हमारा विषय है विष्णु मिस्किन जी, सही होने में और सही लगने में

0: क्या फर्क है?
1: जो बात मीठी बोलते हैं ना वो कड़वी लगती है सर,
0: जी
1: जो कड़वी बात है ना वो सच बात लगती है सर।
0: जी नहीं, कहते हैं ना कि
1: और
0: देखिए, जो सही होता है वो तो सही होता ही होता है, और एक सही लगना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सही नहीं है और हम को लग रहा है कि ये सही है। देखिए, कहते हैं ना कि सही सत्य पर आधारित होता है, और सही लगना कभी कभी झूठा भी साबित हो सकता है ना।
1: हाँ सर,
0: तो
1: इसलिए ना कभी भी सामने वाली बात ना पहले सुन लेने का, फिर वो कड़वे है सच है वो बाद में आप तय कर लेने का।
0: जी, क्या होता है कि कभी कोई हम अफवाह सुनकर बिना जांचे उसे सच मान लेते हैं, और
1: हाँ,
0: कई
1: वो
0: लोगों
1: सच
0: को
1: बात
0: सही लग
1: सुना
0: सकता
1: सुना
0: है।
1: के गुस्से में कुछ भी हो सकता है सर।
0: जी, और कई लोगों को सही लग सकता है, लेकिन तथ्य जांचने पर पता चलता है कि वो बात गलत है
1: गलत
0: ना।
1: है।
0: आपसे बातचीत हुई मिस्टर मिस्किन जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: अभी बरसात का मौसम चालू हो गया सर, इसीलिए मैं बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए सॉन्ग सुनना चाहता हूँ सर।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: ये कमेंट हमारे पास आया है राम कुमार रेवाड़ का, साथ में चंद्रकला रेवाड़ राजस्थान से। आप लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ, कार्यक्रम पेशकर्ता को हमारा नमस्कार। तो आपको भी हमारा नमस्कार। सही होने और सही लगने में वही अंतर है जो कहते हैं ना कि दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत शुक्रिया आपका। और आप हैं हमारे श्रोता विमल सिंह। कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है सही होना और सही लगने में क्या फ़र्क है। इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि सही लगना ये एक व्यक्ति की सोच होती है और सही होना ये सबका नज़रिया होता है। आप हैं विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लभ, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्या, सोना, रीना, नीरज दातागंज से। बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब हमारे अगले कॉलर कौन हैं देखते हैं। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम संपतपुर तहसील औला जिला बरेली से।
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और आज का हमारा जो टॉपिक है सही होने में और सही लगने में क्या फर्क है, इन दोनों में अंतर बता सकते हैं आप, क्या है बताइए।
1: सर एक तो जो व्यक्ति होता है दिखने में जो है सुंदर दिखता है, एक तो उसे सही बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जो बोलचाल और भाषा और व्यवहार होता है वो अगर उसमें है तो वो भी व्यक्ति अच्छा है। तो सर ये दोनों अंतर हैं।
0: कभी कभी क्या होता है कि जो चीज देखने में अच्छी लगती है लेकिन जाहिरी तौर पर वो चीज सही नहीं हो सकती। और एक चीज ऐसी है कि जो चीज देखने में बेहतर नहीं लग रही है लेकिन वो सही है ना। तो कह सकते हैं हम कि जो सही है वो हमेशा सही रहेगा और जो आर्टिफिशियल है या बनावटी है तो वो देखने में तो सही लग सकता है लेकिन वो सही मायने में जो है वो ठीक नहीं है, है ना। क्या करते हैं सद्दाम अली जी वैसे आप?
1: सर इस समय तो पढ़ाई चल रही है सर।
0: कौन से क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं आप?
1: सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, एमए कर लिया है मैंने सर।
0: अच्छा चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जब आपने कंपटीशन की

0: तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं नई नई टेक्निकें आजकल के दौर में आ रही हैं। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: सर फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित और गीत के बोल हैं हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाएं हम।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ आपका अपना पसंदीदा रेडियो भी डिजिटल अवतार ले चुका है। प्रसार भारती लेकर आया है अपना खुद का नया OTT प्लेटफॉर्म वेब्स। जी हाँ, अब आप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से वेब्स OTT ऐप डाउनलोड करके आकाशवाणी बरेली के साथ साथ देश भर के 40 से ज्यादा लाइव रेडियो चैनल्स बिल्कुल फ्री में कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें वेब्स ऐप और जुड़िए आकाशवाणी के डिजिटल तरंगों के साथ।
1: हेलो,
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मास्टर राधेश्याम बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
1: मास्टर, तो आप पढ़ाते हैं कहीं पर?
2: जी, इंटर कॉलेज लेक्चरर हूं मेतगांव में।
1: क्या बात है, आपका बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आज का जो हमारा विषय है, सही होने में और सही लगने में क्या फर्क है। एक चीज ऐसी होती है मास्टर साहब के जो सही होती है और एक चीज हम देखते हैं कि वो हमें सही लगती है, तो इन दोनों में फर्क क्या बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
2: सर, सही होना एक वास्तविकता है, हकीकत में है वो।
1: जी,
2: और सही लगने में जो हर एक व्यक्ति का जो अपना अलग अलग विचार हो सकता है, किसी को सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा, तो वो अलग अलग हो सकता है।
1: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही मास्टर राधेश्याम जी। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
2: फिल्म का नाम है प्यार मोहब्बत और गाने के बोले दिल की कलम से हम तुम लिखेंगे।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं अनोखेलाल मौर्या बोल रहा हूँ, कटर चांदापुरा से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है अनोखे लाल जी, आप तो हमारे बहुत ही प्रिय लिसनर हैं, बराबर हमारे प्रोग्रामों से जुड़े रहते हैं और सारे ही कार्यक्रमों को आप बड़ी शिद्दत के साथ सुनते हैं
1: जी सर, जी
0: और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, है ना?
1: जी सर,
0: आज का जो हमारा विषय है, सही होने में और सही लगने में क्या फर्क है? एक चीज जो सही है और एक चीज सही लग रही है, तो इन दोनों में फर्क बताइए क्या है?
1: ये निगाहें होती हैं सब कुछ पहचानती है, अच्छे बुरे को। जी,
0: जी
1: और निगाहें सब कुछ आदमी को सामने से खींचती हैं, अच्छाइयां और बुराइयां भी। जी, इसकी पहचान ये होती है।
0: नहीं, बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, एक चीज जो सही है तो लाजमी है कि भाई वो सही होगी, और एक चीज सही लग रही है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में आदमी, जैसे आप हो, आपने अपना फोटो डाल दिया, वास्तविक में आप कैसे हैं और फोटो में आप आ रहे हैं बहुत ही सुंदर और छैल छबीले बनकर, तो वास्तविकता तो ये है कि आपका रंग रूप अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आपने उसको फोटो को डाल दिया बाकायदा बनाकर, तो उसमें आप लगने लगे, उम्र भी आपकी कम लगने लगी और आप ज्यादा सुंदर दिखने लगे। तो हकीकत यही है सत्य में और असत्य में। एक चीज सही है वो तो है ही सही, और एक चीज जो देखने में सही लग रही है लेकिन
1: जो सामने दिख रहा है
0: जी,
1: वो ही अच्छा है।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अनोखे लाल मौर्य जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: शोर का सुनवा दीजिए, पानी के पानी
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: प्रवीण चौहान का ये कमेंट, सही होने और सही लगने में बहुत अंतर है। सही होना एक्चुअल में सही होता है, बल्कि सही लगना केवल ऊपर से सही लगता है पर असल में सही नहीं होता। ऊपर से कोई चीज़ सुंदर लग सकती है लेकिन उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। सोशल मीडिया पर किसी की रियल लाइफ अच्छी लग सकती है लेकिन रियल लाइफ अच्छी हो यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए सही लगना एक प्रकार का भ्रम है और सही होना असल में सही होना है। बिल्कुल सही बात कही आपने प्रवीण चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में ये हमारे आखिरी कॉलर, देखते हैं कौन है।
1: हेलो,
2: नमस्कार बंधु।
1: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और हमारा आज का जो विषय है दादा, वो विषय है सही होने में और सही लगने में क्या फर्क है।
2: सही लगना कभी कभी गलत हो सकता है
1: जी, बिल्कुल।
2: और उसमें बोले तो क्या है कि जो बात सही नहीं है उसके बारे में हम अपना मत व्यक्त करते कि वो सही बात है।
1: जी जी।
2: मगर बात कुछ और होती है। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि हम किसी भी चीज को, बात हो वाकियात हो, उसके एक अंग को छूते हैं, मगर जब हम सब उसको सर्वांगीण रूप से उस परीक्षण करते हैं तो हमारा जो एक अनुमान था वो गलत निकल सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही।
2: जीवन में दृष्टिकोण एकाग्र बोले तो एक ग्राही नहीं होना, समग्रता से उसका परीक्षण, उसका पूरा अभ्यास और उसके परिसीमा में जाकर तहकीकात करे तो सच्चाई का हमें पता लग सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज सही है तो वो तो फिर सही है ही।
2: जी जी जी, जो सत्य है उसको तो इनकार नहीं कर सकते, भले ही आजकल हमारे कोर्ट कचहरी में हमारे वकील लोग जो बातें सही नहीं है उसको अपने तर्क विज्ञान के लॉजिक से उसे जज के सामने झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करने में अपनी बुद्धिमत्ता लगाते हैं, मगर ये क्या है कि अपने साथ खिलवाड़ करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बाहुबली जी कही और हमारे प्रोग्राम में आपने बहुत ही सुंदर विचार साझा किए। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप प्रोग्राम में?
2: आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे, ये CID फिल्म का गीत है।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। सही होने और सही लगने में क्या फर्क है? श्रोताओं, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 5 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो श्रोताओं, हम बता दें आज की सभा की शेष और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, कार्यक्रम कृषि पाठशाला। विषय रहेगा वर्ष भर चारे की उपलब्धता हेतु चारा उत्पादन योजना। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राकेश पांडे और साथ में कृषक होंगे अमित गंगवार, प्रायोजक IVRI इज्जत नगर बरेली। किसान वाड़ी आप सुनेंगे आज शाम 6:30 पर। आज की बात किसान मानधन योजना और साथ ही वन महोत्सव पर चर्चा। कृषक गोष्ठी भी आप सुनेंगे, साथ ही होगा कृषि समाचार, मौसम, नसीहत, सवाल और लोकगीत रविंद्र कुमार और श्यामा सक्सेना के साथ। 6 बजे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। कुछ खास है आज वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, साथ ही ओइलकी और ओबी, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे आविदा के साथ। शिप्रा श्रीवास्तव के साथ आप सुनेंगे नारी संसार शाम 5:30 पर। इसमें चर्चा होगी साइबर सुरक्षा और महिलाएं, किचन टिप्स और इनसे मिलिए। वार्ता आपको सुनवाएंगे महिला

श्रोताओं, अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे आज शाम 7:31 पर और भजन संध्या अब से कुछ ही देर में 5:05 पर। श्रोताओं, कल प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी फ्राइडे गजेंद्र सिंह के साथ। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे अपराह्न 3:30 पर। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 1 बजे कार्यक्रम अनुरोध गीत में। लोकगीत का समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। सबरंग आप सुनेंगे कल सुबह 11 बजे। रसरंग में गजल कव्वाली और लोकगीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 2 बजे। आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप सुनेंगे कल शाम 4 बजे।

श्रोताओं, कल शाम 7:31 पर प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन विषय रहेगा महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीरज अग्रवाल। कल शाम 7 कृषि पाठशाला आप सुनेंगे, विषय रहेगा आर्द्र मौसम में थनेरल रोग का प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर यूके डे, पशुपालक दयाराम गुप्ता, प्रायोजक आईवीआरआई इज्जतनगर बरेली। कल शाम 5:45 पर आप सुनेंगे काव्य पाठ कमल सक्सेना और हिमांशु श्रोतिये से। ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 6:30 पर, इसमें चर्चा होगी अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वार्ता आपको सुनवाएंगे, साथ ही होगा लोकगीत। लकी थ्री का कल समय रहेगा शाम 5:30 पर। श्रोताओं 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। कल रात्रि 8 आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भजन संध्या, और भजन संध्या में ये पहला भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं भजन संध्या। और अभी आपने ये भजन सुना जगजीत सिंह के आवाज़ में। आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में ये भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है नारी संसार का।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है नारी संसार का, तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम नारी संसार।

नमस्कार सखियों और श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार। और आज आपके साथ हूं मैं आपकी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव। हमेशा की तरह सखियों, आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारी जानकारी और मनोरंजन का पिटारा। आज के कार्यक्रम में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार फिर आपको याद दिला देना चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमने आज पूछा है आपसे एक सवाल और हमें इंतजार है आपके जवाब का। तो भूल ना जाइएगा, हमें जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए ताकि हम आपका जवाब और आपके नाम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। साथ ही आज हम आपसे बात करेंगे एक काफी संवेदनशील विषय जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, वो है महिलाएं डिजिटली कैसे सुरक्षित रहें। साथ ही बात करेंगे कि ऐसे कारण के बारे में जिसकी अगर हम कहें तो वो बच्चों की बहुत सारी परेशानियों और बीमारियों की जड़ है, वो क्या है ये हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। तो हमारे साथ बने रहिए। साथ ही किचन टिप्स में हम लेकर आए हैं आपके स्वादिष्ट पकौड़ों के स्वाद को और ज्यादा लज्जतदार और क्रिस्पी बनाने के टिप्स। तो कहीं नहीं जाइएगा, साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा आपका अपना कार्यक्रम नारी संसार। सखियों जरा सोचिए, सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, सोचिए, कोई इतनी कठिन बात नहीं है, लेकिन हाँ जवाब हम सभी का एक होगा। जी हाँ सखियों, सुनने में अजीब तो लगता है लेकिन रात को सोने से पहले और उठते ही सुबह हम जो करते हैं वो है मोबाइल देखना। जी हाँ, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी कोई शॉपिंग साइट या फिर कुछ और जो कि वास्तविक नहीं बल्कि आभासी यानी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है। सच कहें तो आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया में बीत रहा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि जिस मोबाइल के साथ हमारा दिन शुरू और खत्म होता है, जिसे हम अपनी सुविधा का साधन मानते हैं, वो हमारी परेशानी का कारण भी बन सकता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। और ये ऐसा कैसे हो सकता है इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो भी समस्याएं आती हैं उनसे बचा भी जा सकता है और हम खुद को भी इस आभासी दुनिया में सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारे में बातचीत हम जारी रखेंगे। लेकिन पहले आइए सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

सखियों, ये सच है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे ऑनलाइन व्यवसाय चला रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, नए लोगों से जुड़ रही हैं और अपने सपनों के पंखों को उड़ान दे रही हैं। लेकिन सखियों, इसी के साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ रहे हैं साइबर अपराध भी। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी महिला की तस्वीर का गलत इस्तेमाल हो गया, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, किसी को अचानक धमकी भरे संदेश आने लगे या फिर कोई और किसी तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया। सोच कर देखिए कि क्या गुजरती होगी उन लोगों पर जिनकी निजी जानकारी जब कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता होगा। तो जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा मसरूफ रहता है, तो उस दुनिया में भी आपको लगता है कि हमें क्या लापरवाह रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में भी हमें अगर सुरक्षित रहना है तो हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और सखियों, जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि किसी के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ या धमकी या किसी तरह की किसी जानकारी को मांगना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बुलिंग या फिर साइबर बुलिंग की श्रेणी में आती हैं। और आजकल तो AI और नई तकनीकों की मदद से तस्वीर और वीडियो का गलत इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वही बात जो हमने आपसे पहले कही थी कि समस्या जैसी भी क्यों ना हो, समझदारी और जागरूकता से उसका हल मिल ही जाता है। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बरतनी है बस थोड़ी सी सावधानी सुरक्षित रहने के लिए। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आप साइबर सुरक्षा के तहत रहें और किसी तरह की बुलिंग के शिकार ना हो, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका पासवर्ड। अक्सर हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को अपना पासवर्ड बना लेते हैं, जैसे हमारा नाम, हमारी बर्थ डेट या फिर कोई ऐसी तिथि जो हमें बड़े आसानी से याद हो जाती है। लेकिन सखियों, ध्यान रखें, जो चीज़ हमें आसानी से याद हो जाती है वह दूसरों के लिए भी हमारे अकाउंट को खोलने का एक सरल रास्ता बन सकती है। तो अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि आप भूल सकती हैं तो कहीं अपने पास लिख कर रख लें, पर हाँ, ये चीज़ भी आपको बहुत सावधानी से रखनी है संभाल के। दूसरी बात, अपना OTP, बैंक डिटेल या फिर जो अभी हमने आपको बताया बैंक पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कोई बैंक आपसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगता। और एक आजकल की जो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ये हम

0: अपने से पहले दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं और अपनी हर चीज, हर गतिविधि, हर बात को हम दुनिया को बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद अपनी निजता से समझौता कर रहे हैं और अपनी जो जिंदगी है उसको एक खुली किताब की तरह सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पढ़ने वाले कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और वो भी लोग हो सकते हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाएं। तो हर बात सोशल मीडिया पे शामिल ना करें, लोगों को उसमें शामिल ना करें, ना ही लोगों के साथ साझा करें। इसी तरह जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं या बैंकिंग करती हैं तो कई बार बहुत सारे ऐसे लिंक्स हमारे स्क्रीन पे पॉपअप होते हैं जिनमें बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, बहुत भारी डिस्काउंट की बात होती है या ऐसी बहुत सारे लुभावने ऑफर्स होते हैं। तो सखियों, यहाँ भी हम आपको यही सतर्क करना चाहेंगे कि किसी भी ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर रखें, ये सुरक्षा की अतिरिक्त परत होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इनमें से कोई बात नहीं समझ पाई या उस वक्त आपके ध्यान में रहा और आप किसी तरह के साइबर क्राइम की शिकार हो गई, तो ये मत सोचिए कि अब ये क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे। शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं और चुप तो बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं, गलती अपराधी की है। तुरंत अपने परिवार को बताएं, स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें, शिकायत दर्ज करवाएं और 1930 हेल्पलाइन पर इसकी जरूर रिपोर्ट करें। सखियों, जरूरत है जागरूक बनने की, क्योंकि एक जागरूक महिला ही न केवल स्वयं को सुरक्षित रखती है बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखती है। और हमने आपसे कहा था कि हम एक ऐसी बीमारी की जड़ के बारे में बात करेंगे जिससे आज हमारे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और साथ ही परेशान हैं उनके माता पिता। तो आइए देखते हैं ये बीमारी है क्या।
1: सखियों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या ये तकनीक उनके विकास में सहायक है या फिर उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है? इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं अपनी ऐसी सखी के पास जो एक शिक्षिका भी हैं, साथ ही एक माँ भी हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों और विचारों के माध्यम से कि हम किस तरह से बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल का प्रयोग करने के साथ साथ उनको इसके दुष्परिणामों से दूर भी रख सकते हैं। तो पूजा मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नारी संसार में। पूजा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक माँ के रूप में आप अपने बच्चे के मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग को कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे नियंत्रित करती हैं कि वो कितने समय उसका प्रयोग करे या कितनी समय वो उसका प्रयोग ना करे।
2: सभी सखियों और शिप्रा जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए मोबाइल देखने का एक निश्चित समय तय हो। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए ही किया जाए। मैं अपने बच्चे से खुलकर बात करती हूँ और उसे ये जताने की कोशिश भी करती हूँ कि वह क्या देख रहा है और क्या नहीं। मेरा मानना है कि सिर्फ रोक टोक से नहीं बल्कि बच्चों को सही दिशा देना भी जरूरी है।
1: अच्छा, अगर आजकल के बच्चों की बात करें तो बच्चों में समय से पहले थोड़ी सी जो मासूमियत है वो कहीं खो रही है। कुछ उनके अंदर सोशल मीडिया का प्रभाव कह लीजिए, कुछ समय से पहले ही परिपक्वता आ रही है। तो आपका क्या कहना है कि क्या सच में बच्चों के व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन आ रहा है वो सोशल मीडिया और मोबाइल के कारण?
2: हाँ, मैंने देखा है कि कभी कभी ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से बच्चे की पढ़ाई और खेल कूद पे रुचि कम होने लगती है। वह परिवार के साथ समय कम बिताता है और साथ ही साथ वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है। लेकिन जब स्क्रीन टाइम संतुलित हो तो उसकी दिनचर्या भी व्यवस्थित रहती है और वो ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है।
1: पूजा जी, आज के समय में अगर हम बच्चों को कहेंगे मोबाइल बिल्कुल ना दें तो आप भी जानती हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे मोबाइल पर देखते हैं या उससे बनाते हैं, करते हैं, चाहे वो क्राफ्ट हो या फिर उनका हॉलीडे होमवर्क या फिर कोई और चीज। लेकिन ऐसे में आपका क्या कहना है कि ये मोबाइल देना बच्चों को किस हद तक उनके विकास में सहायक है या फिर इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं?
2: मोबाइल के कई फायदे हैं। बच्चे नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं।

0: लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे स्क्रीन की लत लगना, गलत जानकारी तक पहुंच जाना या पढ़ाई से ध्यान भटकाना। इसलिए बच्चों को मोबाइल देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसकी निगरानी भी है।
1: पूजा जी, चलते चलते आप हमारे सभी सखियों को क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे कि बच्चे तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग कर सकें?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को तकनीक से दूर रखने के बजाय उन्हें उसका सही उपयोग सिखाएं, उसके साथ समय बिताएं, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों में रुचि लें और उन्हें अच्छे बुरे की पहचान कराएं। साथ ही माता पिता स्वयं भी मोबाइल का संतुलित उपयोग करें, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा सीख अपने घर और अपने परिवार से ही लेते हैं।
1: पूजा जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला और साथ ही हमारी सखियों के साथ अपने अनुभव और जानकारी साझा की, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: सखियों। पूजा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों की निगरानी जरूरी है। अक्सर माएं क्या करती हैं कि अगर वो बिजी हैं किसी काम में या बच्चा किसी बात की जिद कर रहा है तो वो उस बात को टालने के लिए, बच्चे के मन से हटाने के लिए उसे मोबाइल पकड़ा देती हैं, या कई बार तो खाना खिलाने के लिए ही राइम्स लगा दिया, कुछ लगा के बच्चों को दे दिया और उसके बाद वो भूल जाती हैं कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है। और बचपन से जब बच्चे की आदत हो जाती है हर बात के लिए मोबाइल मिल जाना, तो आपके लिए उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। और यही वो बीमारी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बच्चों का एक्सेसिव मोबाइल पे जो हम उनको यूज करने देते हैं वो हमें अब नहीं करने देना है, क्योंकि इसके कारण बच्चे में बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, वो एकाकी रहना पसंद करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो परिवार में रहकर भी उनसे अलग थलग रहता है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां इस बात की गंभीरता को जरूर समझेंगी और समझेंगी कि मोबाइल से बच्चों की दूरी कितनी है जरूरी, और हमें समझ में आ रहा है कि अब हमारी सखियों के मनोरंजन के लिए क्या है जरूरी। तो जी हाँ, आप सही समझी, आ रहा है ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सखियों, आज के दौर में महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। इसी विषय पर हम आइए जानते हैं हमारी वार्ताकार पूजा मिश्रा जी के विचार, और विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता।
4: नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ एक विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। विषय है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से इतना सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकें। यह केवल महिलाओं को अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानित नागरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। किसी भी समाज में या राष्ट्र की प्रगति में तभी यह सब संभव है जहां पर महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त हों। इसलिए किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त हों। इसीलिए महिला सशक्तिकरण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उतार चढ़ावों से गुजरी है। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित, संपत्ति और समाज में संपन्न, समाज में सम्मान प्राप्त था। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। लेकिन आज के समय के साथ सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों और भेदभाव ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर दिया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और शिक्षा से वंचित रखे जाने जैसी समस्याओं ने महिलाओं के विकास को रोक दिया है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। आज सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाने लगी हैं, जो सकारात्मक बदलाव का संकेत है। आर्थिक स्वतंत्रता भी महिला शक्तिकरण का महत्वपूर्ण भाग है। जब महिलाएं नौकरी, व्यवसाय या अन्य कार्यों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब वे अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, पायलट, पुलिस अधिकारी और राजनेता के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और अन्य वैज्ञानिक स्थानों में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पंचायतों और नगर कार्यों में भी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनकी राजनीतिक भागीदारी में

0: वृद्धि हुई है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की नीतियां बनाने और नेतृत्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि महिला नेतृत्व क्षमता में किसी से कम नहीं है। महिला शक्तिकरण केवल कानून बनने से संभव नहीं है, बल्कि समाज की सोच बदलने से भी संभव है। आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई परिवारों में लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यह मानसिकता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को समान शिक्षा दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। महिलाओं की सुरक्षा भी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो वह स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्य स्तर पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून और दहेज निषेध अधिनियम। इसके बावजूद इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। समाज के प्रति व्यक्तियों को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। तकनीक और डिजिटल शिक्षा ने भी महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से भी महिलाएं नई जानकारियां प्राप्त कर रही हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रही हैं और घर बैठे रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे उद्योग चला रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। महिला सशक्तिकरण का केवल प्रभाव महिलाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तो पूरे समाज और राष्ट्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तब परिवार का स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इससे देश की प्रगति तेज होती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी महिला समानता और अधिकारों को मानव अधिकार का आधार मानती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और समाज भी उन्हें समान अवसर प्रदान करें। परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां महिलाएं बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पूरा कर सकें। पुरुषों को भी महिलाओं के सहयोगी और सम्मानकर्ता बनना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों समाज के दो समान पहिए हैं। अंत में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के विकास का प्रश्न है। जब तक महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करे, तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक सशक्त महिला ही सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते। नमस्कार
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और हमारी वार्ताकार थी पूजा मिश्रा। सखियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके पकौड़ों को और ज़्यादा लज्जतदार और क्रिस्पी बनाने के टिप्स लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले वक्त है हमारे उन श्रोताओं के नाम को अपने कार्यक्रम में शामिल करने का जिन्होंने हमारे आज के सवाल, जो कि था कि सबसे कम उम्र में IPS बनने वाली महिला कौन है, के सही जवाब दिए हैं। और हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, गंगा सिंह रावत जी और अनोखेलाल जी, प्रवीण चौहान जी, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सही जवाब है दिव्या तंवर। और हमारे एक और श्रोता हैं जिनका नाम हम इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे, जिन्होंने गीत में अपना नाम शामिल करने की हमसे फरमाइश की थी, अनुरोध किया था, और ये हैं हमारे श्रोता नवी हसन अब्बासी जी। और साथ ही कुछ और श्रोता हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और नावेद हसन अब्बासी।

उम्मीद करते हैं कि हमारे और श्रोता और हमारी सखियां इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे ताकि हम उनके नाम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और चलते चलते हम आपको बता देते हैं वो सीक्रेट आपके पकौड़ों को ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनाने के लिए, घोल में बस एक चम्मच सूजी मिलाएं। कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ के प्याज के पराठे को, प्याज के जो पकौड़े होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, तो वैसे बनाने के लिए आप प्याज को लंबाई में काटकर नमक मिलाएं और 10 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद केवल ज़रूरत भर बेसन मिलाकर उसके पकौड़े बनाएं, आपके पकौड़े बनेंगे एकदम क्रिस्पी। तो अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, क्योंकि घड़ी का इशारा है कि समय हो चला है। तो दीजिए अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। 104 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ।

हेलो हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। तो साथियों, उम्मीदों की रोशनी, सपनों की उड़ान और हौसलों की कहानियों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। और खूबसूरत सफर को शुरू करने से पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

आज तारीख है 2 जुलाई और आज पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं मैदान पर और जानते हैं इस दिन के बारे में। साथियों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके खेल की दुनिया, खिलाड़ियों की कहानियां और लाइव मैच का रोमांच टीवी, अखबार और इंटरनेट के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। उनके इसी काम की सराहना के लिए ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, सचिन का वो ऐतिहासिक शतक हो या नीरज चोपड़ा का वो गोल्ड मेडल वाला थ्रो, मैदान पर खिलाड़ी पसीना बहाते हैं लेकिन उस रोमांच को शब्दों में प्रयोग कर कमेंट्री के जरिए हमारे रोंगटे खड़े करने वाले ये खेल पत्रकार ही होते हैं। इस दिवस की जो शुरुआत है वो साल 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। कड़कती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड, मैच चाहे रात के 2 बजे खत्म हो, ये पत्रकार बिना सोचे अपनी रिपोर्ट, तस्वीरें और इंटरव्यू हम तक पहुंचाने के लिए डटे रहते हैं। तो साथियों, मैच देखते रहिए, जोश जगाते रहिए और सुनते रहिए 100.4 FM पर हमारा प्रोग्राम युववाणी। और फिलहाल अभी एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

0: आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और आइए साथियों, आप जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है, तो इसी विषय में आज हम अपने एक जो हमारे साथी हैं उनसे वन महोत्सव पर जानकारी लेंगे। आइए सुनते हैं।
1: पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे सांसों की कहानी होते हैं, धरती की धड़कन और जीवन की निशानी होते हैं, जो हर तपते सूरज में भी हमें छाव देते हैं, वही तो सच में धरती के सच्चे प्राणी होते हैं। आज मैं आपके सामने केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारी सांसों और हमारे भविष्य का प्रश्न है वन महोत्सव। जब हम सुबह उठकर ताजी हवा में सांस लेते हैं, जब बारिश की बूंदें धरती को छूकर उसे हरा भरा बनाती हैं, जब पेड़ों की छाया में हमें सुकून मिलता है, तब शायद हम यह भूल जाते हैं कि ये सब हमें बिना किसी स्वार्थ के देने वाला कौन है। वह है पेड़, वह है जंगल, वह है प्रकृति। भारत में प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री K.M. मुंशी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पेड़ों की कटाई को रोकना। वन महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं है, यह प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि यदि पेड़ है तो जीवन है, यदि पेड़ नहीं है तो जीवन भी नहीं है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि वनों की कटाई इसी तरह जारी रही, तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, जलवायु परिवर्तन तेज होगा और मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। विश्व के कई हिस्सों में जंगलों की आग, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण की घटनाएं बढ़ रही है। जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं। यह केवल पेड़ों का नुकसान नहीं बल्कि हजारों पशु पक्षियों का घर

0: खत्म होना है। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। एक सकारात्मक बात यह भी है कि भारत सरकार और कई सामाजिक संगठन वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज भारत में ग्रीन इंडिया मिशन और वन महोत्सव अभियान के तहत लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में वृक्षारोपण को अनिवार्य किया गया है। यह एक आशा की किरण है। पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वे हमारे जीवन का आधार है। वे बारिश लाते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और हजारों जीवों को आश्रय देते हैं। पेड़ न हो तो क्या होगा? न सांस लेने के लिए शुद्ध हवा होगी, न पीने के लिए साफ पानी होगा, न गर्मी से बचने के लिए छाया होगी और न ही पक्षियों का बसेरा होगा। यह कल्पना ही डरावनी है। पेड़ हमारे मौन साथी हैं। वे कभी शिकायत नहीं करते, कभी स्वार्थ नहीं रखते। वे पूरी जिंदगी दूसरों को देते रहते हैं बिना कुछ मांगे। एक छोटा सा बीज धरती में गिरता है और समय के साथ वह विशाल वृक्ष बन जाता है। वह पृथ्वी न जाने कितनी पीढ़ियों को छाया देती है। यह प्रकृति की सबसे सुंदर सीख है, देना, वो भी बिना अपेक्षा के। आज आवश्यकता है इस बात की है कि हम केवल वन महोत्सव मनाए ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर व्यक्ति यदि एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो पृथ्वी फिर से हरी भरी हो सकती है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है बल्कि केवल एक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संकट केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। जब हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें उसके बदले कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए। यही संतुलन हमें प्रकृति के साथ बनाए रखना होगा। पेड़ हमें केवल पर्यावरणीय लाभ ही नहीं देते बल्कि आर्थिक और सामाजिक लाभ भी देते हैं। लकड़ी, फल, औषधियाँ और रोजगार, सब कुछ हमें वनों से ही मिलता है। लेकिन साथियों, सबसे दुखद बात यह है कि इंसान ने विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया है। हमने पेड़ों को काटकर इमारतें तो बना ली लेकिन सांस लेने के लिए हवा को दूषित कर दिया। आज प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि बड़े शहरों में लोगों को शुद्ध हवा खरीदनी पड़ रही है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। हाल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्टों में यह बताया गया है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी गति से बढ़ती रही तो आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान जीवन के लिए असुरक्षित हो सकता है। वन महोत्सव हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति हमारी माँ है और जैसे हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं वैसे ही हमें प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ लगाना केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक संस्कार है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम केवल एक पौधा नहीं लगाते, हम एक भविष्य लगाते हैं। कल्पना कीजिए उस भविष्य की जहाँ हर गली में पेड़ हो, हर घर के पास हरियाली हो और हवा इतनी शुद्ध हो कि सांस लेना एक आशीर्वाद लगे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन दो पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, धरती माँ को फिर से हरा बनाओ, जो छाव देता है बिना स्वार्थ के, उस प्रकृति के कर्ज को चुकाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
2: चीचाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो भगड़ दुम जगड़ दुम चिकी चकचो।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और आइए साथियों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट, जी हाँ, हमारा जो होता है वो है ओए लकी। तो आइए देखते हैं कि हमारे ओए लकी के आज के विनर कौन हैं। और हमारे आज के ओए लकी के विनर हैं धर्मेंद्र छिपा। तो आइए इनकी और हमारी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

आप बने हुए हैं अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ, और आइए अब जान लेते हैं हमारा आज का सवाल। सवाल हमने आपसे पूछा था कि 2026 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है, और इसका सही उत्तर है 3। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं मोहम्मद फरमान, सैयद यूनुस, धर्मेंद्र छिपा, हीरामणि वर्मा, गंगा सिंह रावत, रामकुमार रेवार, सुदर्शन शाह, वेद प्रकाश, मुकेश कश्यप और हमारे अन्य सभी साथी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आविदा के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए आप सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाड़ी। इसको प्रेजेंट कर रहे हैं रविंदर कुमार और श्यामा सक्सेना।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: शाम के 6:30 बजे हैं और हमारे सभी साथी इंतजार कर रहे होंगे अपनों पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाड़ी को। तो आज के कार्यक्रम किसानवाड़ी में सबसे पहले तो हम दोनों भैया बहन की स्वीकार करो राम राम। और बताओ रघु भैया क्या हाल चाल है?
2: हाल चाल का क्षमा बहन, देखो अब धान लग गए, हम तो हिगे फारिक धान लगाए के और अब जय चिंता ही कि कैसे लागेंगे। और देखो 2-3 दिन से मौसम भी अच्छा है,
1: हाँ
2: तो जा है कि हमें जो नमी है खेतन में अच्छी बनी भी है और गन्ना के लिए भी जो बारिश भई ना क्षमा में,
1: हाँ
2: अमृत समान होगी। आप सुना वो का हालचाल है खेती को?
1: भैया बिल्कुल सही है खेती को हालचाल, और बस थोड़ी घाम बहुत हो रही है भैया, खेत पे जाते हैं तो बिल्कुल पसीनों में तर बतर हो जाते हैं। और हमारे भैया खेत पे धान तो लग गए और बस गन्ना की देखभाल चल रही है आजकल भैया।
2: हाँ तो देखभाल तो करो। और देखो क्षमा बहन, जब भी खेत पे जाओ तो अपने मुंह से अपने अंगोछा या अपने दुपट्टा बांध के जाओ और पानी संग रखो,
1: हाँ भैया,
2: क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और ऐसे समय की गर्मी जा है कि मेव बरस जाए और ऊपर से फिर घाम निकल आवे तो बहुत काटती है। तो आज क्षमा बहन सवाल कहाँ है
1: भैया? आज को सवाल है हमारे किसान साथियों के लिए, अपना पेन और कॉपी निकाल लें और नोट कर लें आज को सवाल। आज हम सवाल लेकर आए हैं वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, और ज्यादा सवाल को जवाब को मिलान हम कार्यक्रम के आखिर में करवाएंगे।
2: बिल्कुल। और देखो क्षमा बहन, बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है, जैसे एक योजना है किसान मानधन योजना।
1: हाँ रघु भैया, देखो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसके तहत भैया 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसानों को 3000 प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलता है। यह योजना 18 से 40 वर्ष के किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदान आधारित है।
2: तो हम तो जय कहेंगे क्षमा बहन कि हमारे जो भैया हैं वे यह योजना को लाभ उठाएं।
1: और देखो रघु भैया, अब हम आजकल मनाए रहे वन महोत्सव, और वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है या पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये तो आपको पता ही है।
2: बिल्कुल, क्योंकि हमारा जीवन है वृक्षण से है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलती है। ऐसे में जा है कि जो वन महोत्सव इसलिए भी मनाते हैं कि जाए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि वन महोत्सव मनाने को मुख्य उद्देश्य चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करें पेड़ पौधन के प्रति, और जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे या उनकी रखवाली करेंगे तभी तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी भैया।
2: बिल्कुल।
1: और देखो रघु भैया, आज हम अपने साथियों को लेकर आए कृषक गोष्ठी, और आज हमारे कार्यक्रम में जो कृषक गोष्ठी को विषय है वो है खेती बाड़ी और पशुपालन, और हमारे कृषक गोष्ठी के प्रतिभागी हैं सेवाराम जी और ओमकार पटेल भैया, और आपसे अपने सटीक प्रश्नों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं भैया रविंदर कुमार। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं कृषक गोष्ठी।
3: राम राम राम।
2: और किसान भाइयों देखो, आज कृषि गोष्ठी में हम शामिल भए हैं और बातचीत करेंगे खेती बाड़ी की और पशुपालन की। तो पहले परिचय कर लेते हैं एक दूसरे से। तो क्या नाम है भैया आपको?
3: मेरा नाम सेवाराम।
2: और कौन से गांव रहते हो भैया?
3: ग्राम चार जागीर पोस्ट सरदारनगर नवाबगंज बरेली।
2: अच्छा, तहसील नवाबगंज बरेली से आयो। और भैया आपको क्या नाम है?
4: मेरा ओमकार सिंह पटेल।
2: हाँ हाँ।
4: ग्राम मिठुआ बेनीराम जिला बरेली।
2: जिला बरेली। तो दोनों भैया बरेली जिला से शामिल भए हैं, और एक भैया तहसील बरेली के हैं और एक भैया हैं नवाबगंज तहसील के। तो देखो भैया, हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो पहले सेवाराम भैया से पूछेंगे आपकी उम्र का होई?
3: मेरी उम्र है 43 साल।

0: 40 साल। और खेती कौन सा कर रहे हो?
1: खेती साहब बचपन से ही कर रहे हैं,
0: अच्छा,
1: जन्मे गांव में हुआ है।
0: गांव में जन्म बहु है तो बचपन से पढ़ाई लिखाई करी ना करी?
1: हाँ करिए।
0: कितनी करी?
1: बीए।
0: बीए, यानी कि स्नातक तक तो पढ़ाई करी, और बाकी बाद जैसे आगे पढ़ाई ना करी, फिर खेती में कितने साल के है तो उसे जुट गए
1: 10 साल के।
0: 10 साल के। तो घर परिवार में काय काय की खेती होती है?
1: मुख्य रूप से हमारे यहाँ धान गेहूं और गन्ना।
0: धान गेहूं और गन्ना, और जेना कर दो लैटा लाई।
1: हाँ लैटा भी होता है, लैटा लाई होता है,
0: और जे मसूर,
1: मसूर नहीं होती है, और खेत खल्ला में है,
0: अच्छा
1: नहर
0: मक्का,
1: है,
0: मक्का,
1: मक्का भी नहीं होती है।
0: अच्छा, तो काफी साल होगी खेती करते हुए। तो अच्छा बताओ पहले सेवाराम भैया कि खेतन के लिए खाद, सबसे अच्छी खाद कौन सी होती है?
1: सबसे अच्छी खाद तो होती है देसी खाद।
0: देसी खाद कैसे बनती है? देसी खाद
1: वो हमारे जो पशु होते हैं उनका गोबर वो इकट्ठा करते हैं, और घर का जो कूड़ा होता है और वो गांव के बाहर जाके गड्ढा में डालते हैं हम लोग, और वो धीरे धीरे डालते रहते हैं, बहुत ढेर सारा हो जाता है, 3 साल बाद उसको निकालते हैं,
0: अच्छा,
1: और फिर वो डल्लब से ले जाके और खेत में डालते हैं, वो सबसे अच्छी होती है।
0: सबसे अच्छी होती है। और दूसरी बात जो है कि देसी खादें पहले हम डालते कर दी भाई, अब तो जो नई नई चीजें चल गई, और पहले के जमाने की जो अपने मतलब बाप दादे जो खेती करते तो वहां में देसी खाद ही जे खादे
1: जी,
0: कहां ही। अब बात करेंगे हम ओमकार भैया से। तो ओमकार भैया आपकी क्या उम्र है?
2: जी मेरी उम्र है 48 साल।
0: 48 साल। खेती कौन से कर रहे हो?
2: खेती हम कर रहे हैं 20 साल से, मगर पहले पिताजी करते थे।
0: अच्छा, और पढ़ाई लिखाई करी?
2: जी इंटर करा हुआ मेरा।
0: इंटर कर हुए, तो इंटर कौन सी सन में कर लो?
2: इंटर करे 92 में।
0: 92 में इंटर कर लो, तो वो सर। अच्छा थोड़ी बात खेती बाड़ी की तो करेंगे ही, अच्छा बताओ पास में पढ़ाई को का आलम हो, अभी की तरह ही या पहले बहुत ज्यादा सख्ती ही?
2: पहले सख्ती बहुत ज्यादा थी।
0: अच्छा, कैसे मतलब?
2: जैसे नकल कम चलती थी, रिजल्ट 20% रहता था,
0: हाँ,
2: हाई स्कूल का इंटर का एक दो बार पास हो जाते, बहुत बड़ी बात समझी जाती थी।
0: हाँ, पूरे गांव में।
2: हाँ बहुत बहुत दूर से लोग देखने आते थे, इतने बहुत बड़ा काम कर लिया।
0: हाँ,
2: तो रिजल्ट रहता था वो 10%, 5%।
0: 5%। अरे एक गांव में अगर 20 बाल करने परीक्षा दी है तो एक दो पास ही पास।
2: बस
0: बड़ी कठिन ही पढ़ाई।
2: जी
0: तो आपने कहाँ से करी पढ़ाई?
2: मैंने गुरु गोबिंद सिंह से इंटर करा था।
0: अच्छा, अब 20 साल हो गए खेती करते हुए।
2: जी
0: कौन कौन सी खेती करते हो?
2: खेती हम गन्ने की खेती करते हैं और गेहूं की करते हैं, लाटा भी करते हैं।
0: हाँ हाँ
2: कभी कभी मसूर भी बह देते हैं।
0: अच्छा, तो गन्ना की खेती आप कर रहे हो, तो जब बताओ कि इस समय गन्ना की फसल में क्या क्या किसान भैया काम कर सकते हैं?
2: गन्ने की फसल में जैसे कोरा जी लगा देते हैं, और DAP भी लगाते हैं। सबसे पहले जब बोते हैं तो DAP लगा देते हैं, और देसी खाद भी डालते हैं, और देसी खाद डालने के बाद फिर और भी कालिया वालिया वगैरह लगाते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, जैसे कीटाणु वगैरह ना लगे।
0: हाँ, तो जैसे अब जो म्यो बरसों कल परसों जा से का फायदा है गन्ना की खेती को?
2: इससे जो है जो भी जमीन बहुत ही ज्यादा ही उनका टेम्परेचर जमीन का लो था, अब इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ किसान,
0: मेंटेन हो गया।
2: हाँ,
0: जो नमी है वो नमी बनी रहेगी,
2: बनी रहेगी
0: खेतन में,
2: और जो वाटर लेवल था पानी का वो भी ऊपर आ गया,
0: ऊपर आ गया। अच्छा दूसरी बात क्या बताओ, आपके गन्ना में सुड़ी तो ना लग रही? जो कई किसान भैया यहाँ आए तो बता रहे सुड़ी लग रही है, बाकी गोब में बैठ जा रही है।
2: हाँ कई लोगों की बैठ गई, क्योंकि वो इसलिए बैठ गई थी क्योंकि पानी जैसे लगता था, फिर टेम्परेचर ऊपर आया, फिर आया, पूरा भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा था,
0: भरपूर नमी कैसे दे पाओ इंजन से?
2: इंजन से बस इसलिए, इस कारण वो सुड़ी लग रही थी।
0: लेकिन अब जो है कि जब बरसात से बो खत्म
2: वो खत्म हो जाएगी,
0: तो जो है कि गन्ना की जो फसल है वह अच्छी
2: अच्छी हो जाएगी।
0: सेवाराम भैया धान की फसल लग रही है वह तो हमारे किसान भैया की, तो आपकी फसल को क्या हाल है धान की?
1: लगाएंगे अब, अच्छी है।
0: बेड़ कौ डारी?
1: बेड़ हो गया लगभग 25 दिन।
0: 25 दिन तो बेड़ तो तैयार हुई। तो अब जब रोपाई करोगे तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें किसान भैया रोपाई के समय?
1: एक तो उसमें घास ना हो, तो जब हम कदार करते हैं तो उसमें दवा लगाते हैं, और उसमें घास नहीं होती है फिर उसके बाद।
0: अच्छा,
1: और दूसरी DAP लगा देते पहले, धान लगाते समय DAP लगाते, उससे जो हमारा धान है वो अच्छा उठ के आता है।
0: अच्छा,
1: उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसको जो भी नराई होती है, और नराई के बाद फिर उसमें जो भी कीटाणु की जो दवाइयाँ होती हैं वो लगाते हैं, इस तरह से धान होता है।
0: धान होता, तो जब बताओ कि आजकल तो हमने देखी है सेवाराम भैया एक मशीन आ गई है, लोग सीधे धान की बुवाई करवा दे रहे हैं।
1: हाँ मशीन आ गई, लेकिन हम लोग छोटे छोटे क्षेत्र हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो हम लोग गाँव में लेबर करके ही उसको लगवाते हैं।
0: तो जाके वो कीचड़ कैसे तैयार करते हो, कधहर कैसे करते हो?
1: कंधर तो ऐसा है इंजन से भरते हैं, खेत पानी लगा

0: करते हैं उसमें, और जब वो लवा लेप हो जाता है तो फिर उसे ट्रैक्टर से करवा देते हैं
1: करवा देते हैं। अब ऐसे में जाएगी पौध बड़ी नाजुक होती है, तो पौध को उखेड़ते पे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए किसान भैया को?
0: पौध जब उखेड़ते हैं तो एक तो हमारे पास वो है क्या छोटी छोटी वो होती है खुरपी, उससे उखड़वाते हैं लेबर से, तो उससे जो है उसकी जड़ जब वो टूटती नहीं है, बीच से कल्ला नहीं टूटता है, जड़ से ही आता है,
1: जड़ से ही
0: आता है, जड़ से आता है तो वो ही फिर लेबर करके और हम खेत में लेबर से लगवा देते हैं।
1: हाँ भाई गड़ैया बांध के,
0: गड़ैया बांधते हैं छोटी छोटी,
1: हाँ और खेत में फेंक दी तो और नर। अच्छा अब जा बताओ कि जैसे जो पानी भरते हो खेत में तो बाघ कितो होना चाहिए पानी? कुछ भैया बहुत पानी भर देते, तालाब बना देते खेत को?
0: नहीं तालाब नहीं होना चाहिए, उसमें दो उंगर पानी रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जिससे वो पेड़ डूबे ना,
1: 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी रहना चाहिए खेत में, तो रोपाई करा। और रोपाई करते हुए जैसे एक कल्ला लें दो लें?
0: एक
1: एक एक कल्ला से रोपाई करते हैं तो जैसे ब्यात अच्छो हो फसल को?
0: ब्यात अच्छो।
1: अच्छा तो ओमकार भैया सुन रहे हैं और कह रहे हैं हमसे कोई बात ना पूछ रहे हैं, तो अब जा बताओ ओमकार भैया कि धान आपके लग गए?
2: धान अभी लगे, लगने वाले हैं।
1: लगने वाले हैं तो आपकी तैयारी कैसी चल रही खेत?
2: तैयारी हमने पहले अपने खेत को अभी इसमें जोत के रेडी रखा है, क्यों जोत के जब रेडी रखेंगे हम तो जो घास वगैरह उगेगी नहीं, उगी हुई घास खत्म हो जाएगी
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात जब हम खेत उगाई करेंगे फिर जब कन्हार करेंगे तो वो घास बहुत कम होगी
1: बिल्कुल,
2: जब घास कम होगी तो इसी कारण जब पानी भरेंगे तो कन्हार होगा तो हमारी एक तो जुताई कम लगेगी, पहले जो घास जो बड़ी होगी वो सब उसमें बदल जाएगी, जैसे खाद में बदल जाएगी
1: बिल्कुल,
2: तो इसीलिए हमारे जो खेत की पैदावार भी अधिक हो जाएगी, घास भी कम हो जाएगी
1: बिल्कुल। अब देखो ऐसा है, अब बता रहे हैं ओमकार भैया सेवाराम भैया कि घास, अब जा है कि अगर घासें जमे आवेगी तो फिर धान कैसे जमेंगे, और ये खरपतवार तो हैं जो नुकसान करते हैं फसल को, तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं ओमकार भैया कि हम पहले घास को खत्म कर लेंगे खेत में से तो रोपाई करेंगे, जिससे जाए आगे कम मेहनत करने पड़ेगी। अच्छा कुछ भैया जा बताते हैं ओमकार भैया कि रोपाई के टाइम पे कोई दवाई डाल देते हैं जिससे और घास ना जमती है?
2: वो ऐसा है जब जिसकी ज्यादा फसल खाद होती है,
1: हाँ हाँ,
2: क्योंकि जब वो दवाई लगा देंगे तो नई घास नहीं उगती है, लेकिन अगर उसमें पानी की मात्रा अगर कम रही, जैसे आपने रोपाई करा दी पौध लगा दी,
1: हाँ,
2: और पानी की मात्रा कम रही तो जो घास लगी वो तुरंत उठ जाएगी और नई घास उग जाएगी उससे।
1: तो ओमकार भैया एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे अब खाद उर्वरक जो लगाने हैं धान में तो वो कितने दिन बाद लगाए जाते हैं रोपाई के, या कब कब दी जाते हैं धान में खाद?
2: धान में करीब 15 दिन के बाद खाद लगा देते हैं।
1: कौन सी खाद लगानी पड़ती है?
2: यूरिया लगा देते हैं, वैसे पहले तो रोपाई डीएपी लगा देते हैं, नीचे डीएपी लगा देते हैं, जैसे एकदम उसके पौध जो गाठ ज्यादा एकदम ब्याज ज्यादा ले लेती है, जब डीएपी लगा देते हैं ब्याज ज्यादा ले लेती है, जब ब्याज ज्यादा लेगी और उसकी कम से कम मतलब एक बिलात की दूरी पर लगाना चाहिए पौध को, जैसे ब्याज ज्यादा ले, कुछ घने लोग लगा देते हैं तो ब्याज कम लेती है,
1: कम लेती है
2: और उसकी पैदावार भी कम होती है,
1: मतलब पौधा से पौधा की दूरी को बनाए कर रखे,
2: बना कर रखे एक बिलात कम से कम।
1: अच्छा एक बात और है, कुछ भैया हमारे क्या करते हैं छोटे छोटे बालकन से रोपाई करवा देते हैं, तो बात संबंध में क्या कहना चाह रहे हो?
2: नहीं बच्चों से अगर लगवा देते तो उसे एक बार देखभाल रखना चाहिए उसकी, कितनी दूरी लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, बहुत से तो ऐसे है कि 2 फीट की दूरी करा देते हैं तो उसकी फिर मात्रा भी कम हो जाती है।
1: अच्छा तो बात जैसे जा है कि भैया ध्यान रखें दूरी से दूरी, और जैसे बालकन से अगर रोपाई करवा रहे हैं तो
2: निगरानी रखना चाहिए
1: कि गलत सलत ना लगा रहे हैं,
2: बस।
1: तो ठीक है जो तो ही धान लगान की बात। अब और जैसे अब बरसात चल रही है तो गन्ना में और आगे क्या कर सकते हैं अब किसान भैया? यूरिया जो बची हुई है वाको दे सकते हैं ना दे सकते हैं बारिश के बाद?
2: बारिश जैसे अगर आपकी लगातार बारिश हो रही है तो आप यूरिया लगा सकते हैं।
1: अच्छा
2: उसके गन्ने की पत्ते भी काट सकते हैं।
1: आहा।
2: जो अगर जैसे आपने यूरिया लगाई लगाते हुए बहुत दिक्कत होगी, अगर पत्ता कटा हुआ होगा तो उसकी जो खाद बनेगी उसे आसानी होगी, हवा भी निकल जाएगी, गन्ना गिरेगा नहीं जो हवा निकल जाएगी उसकी गन्ना नहीं गिरेगा
1: बिल्कुल। अच्छा बात जा करें अब चौमासे को समय है तो अब गर्मियों पड़ रही है बीच बीच और बरसात हो रही है, तो सेवाराम भैया कई पशु है अपने पास?
0: पशु तो हमारे पास एक है।
1: एक है तो बाको कैसे ध्यान रख रहे हो?
0: उसको खिलाते हैं उस।
1: अच्छा अब जो बरसात के दिन आ रहे हैं तो टीकाकरण कराओ ना कराओ?
0: टीकाकरण
1: कराएंगे। तो अब जब बताओ कि तो पशु पालन से फायदा क्या है किसान को?
0: पशु पालन हमारा रोजगार है, और उससे क्या है, जब हम

0: दुर्प्रति तो हम पशु बेच लेते हैं, दूसरे पशु खरीद लेते हैं, आप समझ गए। तो किसानों का सबसे बड़ा रोजगार ही पशुपालन है गाँव में।
1: बिल्कुल, और कह रहा है कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है।
0: पूरक है
1: भाई, खेती पशुपालन के बिना अधूरी है और पशुपालन खेती के बिना अधूरू है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तभी पशु पालते हैं। अब पशुपालन से आपने चलो जो बताओ कि भाई एक रोजगार कर सकते हैं, ओमकार भैया आपकी क्या राय है पशुपालन पे?
2: पशुपालन से रोजगार भी है, दूसरी हमारे यहाँ जैसे दूध की समस्या है, बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और भी हमें कई चीजों से फायदे होंगे, जैसे गोबर की खाद बनेगी।
1: हाँ,
2: जिसके पास अगर पशु नहीं होंगे तो उसके खेती में खाद नहीं बन पाएगी, वो फिर डीएपी का ज्यादा उपयोग करेगा, यूरिया का ज्यादा उपयोग करेगा, वो हमारे जमीन के लिए ज्यादा घातक सिद्ध होगी।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात ओमकार भैया ने कही है कि अगर हमारे पास पशु होंगे तो हम देसी खाद भी तैयार कर लेंगे, और पास है हम अपने खेतन में जब देसी खाद लगाएंगे तो जाए हमारे खेतन की मिट्टी अच्छी होगी। अब देखो सरकार ने एक अभियान चलाओ, खेत बचाओ अभियान, बाकू उद्देश्य जो रासायनिक खादन लगाए के हम फसल तो पैदा कर ले रहे हैं मगर मट्टी हमारी खराब हो जाए,
2: बंजर हो जाती है जमीन, उससे
1: जमीन बंजर हो जाती है। तो हमें अपनी जो जमीन है वहां को बंजर होने से बचाने हैं सेवाराम भैया, और देसी खाद को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने हैं। और ओमकार भैया अब आपके पास क्या पशु हैं?
2: मेरे पास दो पशु हैं।
1: दो पशु हैं। एक बात और हो तो देखी गई है कि अगर हम चाहें तो खेती के संग पशुपालन अगर दो चार जानवर रखें तो देखो दूधो बेच सकते हैं, मठा बेच सकते हैं, घी बेच सकते हैं, पनीरों बना के बेच सकते हैं, तो इस तरह से भी जैसे किसान भैया के लिए लाभकारी पशुपालन हो जाए। बात अब जा करें सेवाराम भैया, सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है किसान भैया के लिए, किसान सम्मान निधि एक योजना चल रही है, बाकी लाभ मिल रहा हुआ आपको?
0: मिल रहा हो?
1: मिल रहा हुआ, तो बामा का फायदा है? बात है
0: बामा फायदा जी साहब, एक तो समय पर जो हमारे पास पैसा ना होता किसानों के पास, हम लोग के पास, तो जो भी दवाई लगानी है वो दवाई समय से लग जाता है। जैसे अभी 15 दिन पहले वो आई जी किसान सम्मान निधि
1: 2000,
0: अब हम उससे जो हमें खेती में जो दवाइयाँ चाहिए, खेती में डीएपी चाहिए, वो हम उससे खरीद लेंगे दवाइयाँ, और क्या नाम डीएपी खाद, तो वो हमारे काम में आ जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: और नहीं तो हम हाथ बांध धरे बैठे होते, वही थोड़ा बहुत गेहूँ हो गया वही बेचते, वो खाने को ले जाता किसान फिर हमारे आगे को, तो उससे बहुत बड़ा लाभ है। किसान सम्मान निधि से इतनी बड़ी राहत है कि साहब उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है सरकार ने।
1: बिल्कुल, आपकी क्या राय है भैया
2: जी
1: किसान सम्मान निधि पे?
2: किसान सम्मान निधि जैसे हमें जो 2000 रुपए मिलते हैं सरकार जो देती है, आज से पहले हमारे जो खाद का कट्टा था डीएपी का 400 रुपए का होता था, आज जो 1300 रुपए का हो गया। हालांकि सम्मान निधि तो मिल रही है, सहायता तो हमें मिल रही है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: लेकिन उस हिसाब से सहायता नहीं मिल रही जिस हिसाब से सरकार को देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जैसे और लोगों को जैसे सरकारी होते हैं बजट देते हैं, भाई किसी का टीए बढ़ा दिया, डीए बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, आज हमें सरकार केवल 15 रुपए रोज के हिसाब से दे रही है।
1: बिल्कुल,
2: अगर आप देखा जाए तो आपको 500 रुपए दे रही है, 6 महीने में 500 रुपए मिले, 15 रुपए रोज मिले।
1: बिल्कुल,
2: तो 15 रुपए सरकार को क्या है उसमें? कुछ नहीं है वैसे तो।
1: बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ नहीं से
2: थोड़ा ही बहुत है।
1: अब जा है कि जरूरत पे हमें मान लो मिल गए 2000 रुपया, खाद पानी लगा लो ना, तो पता चली जे हमने किसी से उधार लाए ब्याज पे लाए, तो बाहू में दिक्कत होती। तो जा है सरकार योजना, अच्छा एक फसल बीमा योजना चला रही सरकार, बाकू फायदा है भाई हमारे किसान भैया अपनी, जैसे अब धान से पहले बाकू बीमा करा लो, कल को बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, फसल मारी जाए तो भाव की प्रतिपूर्ति मिल जाता है। ऐसे ही केसीसी एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, भाव को लाभ ले रहे हो ओमकार भैया?
2: है, हमें लाभ तो मिल गया है, हमने एक बार बीमा कराया भी था।
1: हाँ,
2: तो उसे कुछ लाभ मिला था, हमें
1: लाभ मिला था। और लोन जो ले रहे हो किसान क्रेडिट कार्ड से, वो ले रहे हो?
2: हाँ, लोन ले रहे, हम जमा भी कर देते हैं,
1: जमा कर रहे हो, तो जाकर का फायदा है?
2: इससे फायदा जैसे हम किसी प्राइवेट लोन लेते किसी से, जैसे 5% पर लेते थे, एक लाख रुपए के लिए तो 5000 महीना जाता था हमारा,
1: महीना को
2: महीना जाता था, या केवल 1% या 2% जाएगा 6 महीने का, साल का,
1: साल को जाए 7%
2: जाता, 7% जाता
1: है। अगर टाइम पे जमा कर दें हम लोग तो 4% सब्सिडी लौट के आ जाती
2: है,
1: तो जा समझ लो हमें सालाना 3% पे पैसा मिल जाता है। तो जा देखो हम किसान भैया के लिए तो बहुत बड़ी सुविधा है, मानोगे? क्योंकि अगर हम साहूकार को ले हर महीना डंडा ठुटका दे कि भैया ये ब्याज दो, अब जा मैं बैंक आए ना रही है, लेकिन जो है कि लोन लो, लोन लेके भूलो मत,
2: देना है आपको।
1: हाँ, अगर भूल जाओगे तो देखो वो दंड हो जाए। तो यही सब बातें हैं। अब चलत चलत का आज किसान भैया से कहना चाह रहे हो धान की खेती पे?
2: धान के संबंध में हमारे किसान भाइयों को नंबर 1 तो समय पर पानी लगा।

0: चाहिए, समय पर खाद लगाना चाहिए, मौसम के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कहीं बाढ़ आ गई आपने खाद डाल दी तो वो खाद आधी चली जाएगी,
1: बिल्कुल।
0: और हर चीज का समय पर दवाई देना चाहिए।
1: हाँ,
0: जितने हमारे किसान भाई हैं उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए।
1: काम करना चाहिए अपने, जैसे जो है समय को ध्यान खेती में बहुत रखना चाहिए, क्योंकि अब भाई कहना है कि अब मान लो आज पानी चाहिए खेत को, 3 दिन बाद लगाओगे तो पैसा उतो ही खर्च होएगा मगर फसल खराब ही,
0: फसल खराब हो गई मान लो,
1: तो समय को बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेवाराम भैया आपका क्या अनुसार है रेडियो के माध्यम से किसान भैया से?
2: देखिए किसान भाइयों के इस समय धान की पौध लगा रहे हैं और इस समय तपन बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा, कुछ पानी बरस गया है तो उससे राहत मिली है किसानों को, तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम समय पर पानी लगाएं, समय पर खाद लगाएं। और जो खरपतवार होता है उसमें हम दवाई समय से लगाएं, तभी हमारा धान तैयार होगा।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो भैया हैं आप दोनों की बताई गई बातन को ध्यान रखेंगे और अच्छे से अपनी खेतीबाड़ी को काम करेंगे। आप दोनों भैया आज हमारे कार्यक्रम कृषि गोष्ठी में आए, आपने अपने अपने अनुभव हमसे साझा करे, आप दोनों को धन्यवाद भैया। राम राम
0: राम राम।
3: अब हमारे साथियों ने सुनी कृषक गोष्ठी के अंतर्गत खेतीबाड़ी और पशुपालन जैव विषय पर बातचीत, और हमारे प्रतिभागी है सेवाराम और ओमकार पटेल भैया, और आपसे बातचीत कर रहे थे भैया रविंदर कुमार।
1: तो देखो क्षमा बहन, अब मन कर रहो है, कहा है कि हमारे भैया भी खेत से आए गए होंगे, रोटी पानी खा रहे होंगे, तो अब ऐसे में जा है कि हमारे भैया कह तो हैं कि भैया जानकारी के बाद थोड़ा मनोरंजन भी करवा दे करो, तो आज भैया बहनों को मनोरंजन भी करवा दो।
3: तो भैया जरूर सब भैया बहनों को मनोरंजन करवाएंगे। तो आज हमें कार्यक्रम में फरमाइश भेजने वाले भैया हैं छावनी अशरफ खां पानी टंकी के पास से, होली चौक बरेली से भैया रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और भैया फजलुद्दीन भाई, और आप इनके अलावा हमारे फरमाइश भेजने वाले हैं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और उनके परिवार। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश पे जो प्यारो सो लोकगीत।

0: तो देखो रघु भैया, अब हमारे साथियों का मनोरंजन हो गया और उम्मीद करते हैं कि आपका जो मन हो रहा हो तो कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, तो कैसा लग रहा है भैया?
1: बहुत अच्छा लग रहा है क्षमा बहन, और कतई जा लग रही है। दिन भर की खेती किसानी की थकान सब उतर गई। अब बता दो क्षमा बहन, बस सवाल को जवाब जो कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो।
0: तो भैया आज को सवाल हो, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो जाको सही जवाब है, पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई रोकने और लोगों में पेड़ लगाने की भावना जागृत करने के लिए हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाए जाते हैं।
1: और क्षमा बहन, आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है?
0: भैया आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलता है, पेड़ पौधों की करो रखवाली, तभी आएगी सुंदर हरियाली।
1: बिल्कुल, और देखो भैया बहनों, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित होएगो, स्वच्छ वायु को हम ग्रहण कर पाएंगे और तभी हम अच्छो जीवन और स्वस्थ जीवन भी जी पाएंगे। तो पेड़ जो है वे क्षमा बहन हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल रघु भैया, और देखो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने वनों की रखवाली करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा।
1: बिल्कुल, तो भैया बहनों अब आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु
0: और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति।
1: भैया बहनों
0: राम राम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी रविंद्र कुमार और क्षमा बहन के साथ। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: कृषि पाठशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को राम राम। किसान साथियों, आज हमारी कृषि पाठशाला का विषय है वर्ष भर चारे की उपलब्धता हेतु चारा उत्पादन योजना। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर राकेश पांडे जी को, जो कि फार्म सेक्शन IVRI इज्जत नगर बरेली से हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ किसान भाई अमित गंगवार जी भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में, जो अपने प्रश्नों के माध्यम से डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे और जानेंगे वर्ष भर चारे की उपलब्धता हेतु चारा उत्पादन योजना। तो आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: अब हम चाहेंगे कि अमित गंगवार जी की आप अपने प्रश्नों के माध्यम से सर से सवाल करें और सर उसका समाधान करें।
3: नमस्ते सर। सर मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये था कि पशु पोषण में हरे चारे का क्या महत्व होता है?
2: देखिए, अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। एक तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को रोजगार प्रदान कर रहा है, तो बहुत से लोग इसके माध्यम से रोजगार में लगे हुए हैं। और बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि तमाम तरह के उत्पाद बना के उस तरह से भी काफ़ी लोग इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। जहाँ तक पशु पोषण के महत्व की बात है, पशु पोषण को तीन घटकों में बांट सकते हैं। पहला हो गया हरा चारा, दूसरा हो गया सूखा भूसा, और तीसरा हो गया हमारा जो दाना है। दाना बहुत महंगा होता है, हालांकि दाने में तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन महंगा बहुत होता है, और भूसा जो है वो उसमें सस्ता होता है लेकिन तत्व ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो एक तरह से पेट भरने के काम आता है। एक हरा चारा ऐसा होता है जो कि कम लागत में तत्व भी होते हैं उसमें और पशु के बड़े पेट को भरने का भी काम करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसलिए हो जाता है कि ये पशु के पेट को भरता है कम लागत में और संतुलित पोषण के साथ साथ। तो तीनों ही चीज़ों का पशु पोषण में महत्व है। जैसा कि मैंने बताया, दाना बहुत महंगा पड़ता है, तो खाली दाने पे पशु नहीं पाला जा सकता है, हरा चारा बहुत आवश्यक है उसके लिए। और हरे चारे में भी दो तरह के चारे होते हैं, एक तो अदलहनी चारे होते हैं, एक दलहनी चारा होता है। ये सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं, जैसे खनिज लवण हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और वसा भी हैं, इस तरह की सभी चीज़ें प्रदान करते हैं हरे चारे। और विटामिन विशेष रूप से अगर आप देखें तो विटामिन ए जो होता है वो हरे चारे से ही प्राप्त होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है पशु पोषण में, तो आप देखें कई बार पशु जो है रात के समय पे देखते होंगे, शाम के समय पे इधर उधर टकराता घूमता है, उसे दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी नाम की बीमारी कहते हैं। मनुष्यों में भी होती है विटामिन ए की कमी से, पशुओं में भी होती है। तो पशुओं में इसकी पूर्ति का एकमात्र साधन हरा चारा ही है। तो इन चीज़ों में, और विशेष रूप से अगर हम बात करें कि लागत भी इससे बहुत कम हो जाती है पशु पोषण की, अन्यथा लागत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दूध उत्पादन का की लागत बढ़ने से दूध का भी रेट महंगा हो जाएगा जब खरीदार कम हो जाएंगे। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह पशु पोषण में, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि भूसे के साथ साथ, दाने के साथ साथ भरपूर मात्रा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरे चारे की व्यवस्था कर पाएं पशुओं के लिए, उतना बेहतर है।
3: सर मेरा दूसरा एक और सवाल था कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित चारे का क्या महत्व होता है?
2: देखिए, चारे में जैसा मैंने बताया कि दलहनी अदलहनी दोनों तरह के चारे होते हैं। दलहनी चारों में बरसीम हो गई हमारी, लोबिया हो गई, और ग्वार वगैरह भी कुछ किसान भाई उगाते हैं तो वो भी साथ में खिला देते हैं। अदलहनी चारों में ज्वार बाजरा मक्का है, नेपियर घास है, और मक्षरी एक बहुत अच्छा चारा है। तो ये चारे होते हैं, ये अदलहनी होते हैं। पशु को खिलाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे भोजन में जितनी ज़्यादा तरह की चीज़ें हम शामिल कर पाएँ, जितने ज़्यादा तरह के चारे, जैसे अगर किसान भाई ज्वार खाली बो रहे हैं, अगर क्षेत्र में मक्का भी बोई जा सकती है तो ज्वार और मक्का मिक्स करके चारा बो सकते हैं, साथ में इसके लोबिया मिक्स कर दें बुआई के समय ही, तो जब काट के लाएंगे तो तीन तरह के चारे मिक्स मिल जाएंगे। इसी तरह जो भी अदलहनी चारे बो रहे हैं, ज्वार बाजरा मक्का

0: मक्षरी या नेपियर घास, उसी में लोबिया मिक्स करके बो दें तो दलहनी या दलहनी दोनों तरह के चारे मिल जाएंगे। तो पशु को ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट हैं, मिनरल्स हैं यानी खनिज लवण हैं, उनके साथ साथ प्रोटीन की भी आपूर्ति अच्छी मात्रा में हो जाएगी अगर हम उसमें लोबिया मिक्स कर देते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: इसी प्रकार से रबी के चारों जैसे हम बोते हैं, तो रबी के चारों में कुछ किसान भाई होते हैं खाली जई जई खिला रहे हैं, कुछ किसान भाई होते हैं खाली बरसीम खिला रहे हैं, दोनों तरह के चारे खिलाने हैं। तो जई भी बोलें और थोड़ी बरसीम भी बोलें, दोनों को मिक्स करके खिला दें, या बरसीम में ही पहले पाल में किसान भाई देखते हैं कि चारा कम आता है
1: जी,
0: दूसरे पाल से बढ़ जाता है, और सर्दियों में भी कम रहता है, सर्दियों के बाद जाके बढ़ जाता है। तो जैसे बरसीम बो रहे हैं, बरसीम में सरसों मिला के बोलें, इसी तरह बरसीम में जई मिला के बोलें। तो ये दो तरह के चारे जब मिक्स होके पशु को जाएंगे तो संतुलन बेहतर होगा। पशु पोषण में एक बात ध्यान रखने की है कि एक तो नियमित होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक दिन पशु भूखा रह गया और दूसरे दिन हमने उसे ओवर फीडिंग कर दी यानी ज्यादा खिला दिया, तो इससे हमारा कोई भला होने वाला है। पशु को नियमित रूप से हरा चारा मिलना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो चारा दें भी या पशु को जो भी पोषण दें वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब ये है कि हर चीज उसमें होनी चाहिए, खनिज लवण भी होने चाहिए, नमक भी होना चाहिए, हरा चारा भी होना चाहिए, भूसा भी होना चाहिए, और दाना भी होना चाहिए। और दाने के भी कई भाग होते हैं। दाना आमतौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये माना जाता है कि खाली गेहूं का दलिया दे दिया या आटा दे दिया, दाना हो गया। ऐसा नहीं, दाने में खल, चूनी, अनाज और नमक और मिनरल मिक्सचर, ये पांच चीज़ें मिलके दाना बनती हैं। तो ये पांचों चीज़ें मिली होनी चाहिए दाने में, और साथ में चारे में दलहनी अदलहनी चारा होना चाहिए, और भूसा आप गेहूं का या जई का जिसका भी उपलब्ध हो वो ले लें। इन सबको जब देंगे तो संतुलित पोषण कहलाएगा। जैसे हम लोग मनुष्य भी जब भोजन करते हैं तो थाली में चाहते हैं दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, और चटनी भी हो, अचार भी हो, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं ताकि उसमें संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल सर। सर एक मेरा और था क्वेश्चन
0: जी,
1: कि वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए योजना कैसे बनाएं हम?
0: देखिए, अगर हम व्यवसायिक डेयरी कर रहे हैं यानी कि 20-25 पशु पाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक हमारी आजीविका का साधन है, हम सिर्फ एक दो जानवर पाल के नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक योजना होनी चाहिए जिसके आधार पे हम पशुपालन करें। तो जैसे मान लें हमारे पास 20 पशु हैं, एक पशु को हम 25 किलो चारा रोज दे रहे हैं, तो लगभग 5 क्विंटल प्रतिदिन हमें चारे की आवश्यकता पड़ेगी। इसी 5 क्विंटल को 30 से गुणा कर लीजिए, एक महीने की चारे की मात्रा निकल आएगी। इसी को लगभग आप समझिए 12 से गुणा कर दीजिए तो एक साल की निकल आएगी
1: जी सर।
0: अब दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें एक तो ये पता चल गया कि प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष कितना चारा हमें हरा चाहिए। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमारे क्षेत्र में चारे की कौन कौन सी फसलें हैं, उनकी कौन सी चारे की वैरायटी है जो अच्छी चलेंगी हमारे क्षेत्र में। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि कुछ समय ऐसे आते हैं जिस समय चारा उपलब्ध नहीं होता है, उस समय हम क्या करेंगे, तभी तो नियम बना रहेगा। अन्यथा जिन दिनों कम चारा है उन दिनों अगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उत्पादन एकदम से घट जाएगा, पशु भी कमजोर हो जाएगा। तो कौन कौन सी चारा फसलें हैं जिससे कि हम वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। साथ में हमें यह भी देखना है कि और चीज़ों की भी व्यवस्था करनी है कि ये चारे की फसलें जो हैं कितने दिन में तैयार होती हैं, कितना उत्पादन देती हैं। जब इन सब को हम मिला के एक योजना बनाएंगे और बुआई का शेड्यूल बनाएंगे, एक बुआई की तालिका बनाएंगे, इस दिन हम ये चारा बोएंगे, इसके 4 दिन बाद या 5 दिन बाद दूसरा, तीसरा, और एक साथ कभी भी बड़े क्षेत्र में चारा नहीं बोएंगे। यानी कि मान लीजिए हम 3 एकड़ चारा बोने जा रहे हैं, तीनों एकड़ एक ही दिन में नहीं बोएंगे, आधा आधा एकड़ करके 5-6 बार में बोएंगे, जिससे कि हर समय हमें तैयार बढ़िया चारा वजनदार मिल जाए। अन्यथा क्या होगा, जैसे 3 एकड़ एकदम से बो दिया, शुरू में काटना शुरू किया, जब तक अंत तक पहुंचे वहां का पक गया चारा, तो वो पोषण भी नहीं मिलेगा उससे और पाचकता भी उसकी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरह से करके हमें उसमें योजना बनानी है कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से हरा चारा देते रहें। और दो जो समय आते हैं मुख्य रूप से, इधर अप्रैल का महीना ऐसा आता है जब हमारी चरी तैयार नहीं होती है, बरसीम भी टूट रही होती है, जई खत्म हो गई होती है। इसी प्रकार से उधर बात करें हम तो अक्टूबर नवंबर में कुछ समय ऐसा आता है जब जई और बरसीम तैयार नहीं होती है, ज्वार बाजरा मक्का खत्म हो चुकी होती है। तो इस समाधान के लिए हमको संकर नेपियर घास का हरा चारा लगाना है अपने खेत में या खेत के मेड़ पे, कहीं ना कहीं व्यवस्था रखनी है उसकी। ये संकर नेपियर घास हमारी अप्रैल में उपलब्ध हो जाएगी हरे चारे के लिए।

0: और उधर अक्टूबर नवंबर तक चारा देती रहेगी। तो हमें उस समय में जब और कोई चारा नहीं उपलब्ध है तब संकर नेपियर घास का हरा चारा उपलब्ध कराना है। इसकी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है और सबसे बड़ा लाभ इसका यह है कि कई वर्ष तक एक बार बोने के बाद चलती रहती है। तो इसको हमें अपने चारे की योजना में भी शामिल रखना है जिससे कि जिन समय में चारा नहीं मिल रहा है उन समय में हम इससे हरा चारा उपलब्ध करा।
1: बिल्कुल सर। सर एक और सवाल था मेरा, कम भूमि और कम लागत में अधिक हरा चारा कैसे हम तैयार करें?
0: जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम दूध उत्पादन की लागत को कम करना चाहते हैं तो देखिए भूसा सस्ता है, दाना महंगा है। अगर हम बढ़िया हरे चारे से पशु का पेट भर देंगे तो हमें अधिक बेहतर उत्पादन मिलता रहेगा और हमारी लागत जो है दूध उत्पादन की कम हो जाएगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है वो संकर नेपियर घास का हो सकता है। संकर नेपियर घास एक बहुत ही अच्छा चारा है और इसमें लगभग 9% प्रोटीन होता है। एक कुछ वेराइटीज की ऐसी हैं जिनमें 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसे हमें अपनी योजना में अवश्य शामिल करना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको एक बार लगा दिया जाता है तो 5-6 वर्ष तक इससे बढ़िया भरपूर हरा चारा मिलता रहता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो हमारे क्षेत्र में गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल के आसपास गन्ना अच्छे करने वाले किसान कर लेते हैं। लेकिन संकर नेपियर घास अगर आप करेंगे तो 800 क्विंटल से 1000 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन साल भर में ले सकते हैं। 6-7 कटाइयाँ इससे मिल जाती हैं और जो नई वैरायटी इसकी आई हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम है और रसीली हैं तो उसे पशु खाता भी बहुत चाव से है। तो इस चारे का एक तो समावेश कर लें अपने चारे की योजना में।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि दलहनी या दलहनी किस्म के चारे मिला के बोते रहे। चारे में बोते समय ये ध्यान रखें कि जो चारा हम बोने जा रहे हैं किसी भी फसल का, चाहे मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, तो वैरायटी चारे की ही चुने। कई बार किसान भाई वैरायटी सही नहीं चुन पाते हैं तो सही वैरायटी चारे की ही चुने, बेहतर बढ़िया से देखभाल करें उसकी और अधिक से अधिक उत्पादन उससे प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं कि कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र में चुननी है और उसी हिसाब से इसका व्यवस्था करके। तो ये हरा चारा ये हो गया और संग में संकर नेपियर घास अगर आप जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपके चारे के उत्पादन में जो दो समय ऐसे आते हैं जब चारा नहीं मिलता है तो वो समय भी आपके पूरे हो जाएंगे और चारे के उत्पादन की लागत भी बहुत कम हो जाएगी। आमतौर पे हम देखें, हम एक साल में अगर 20-25 जानवर रख रहे हैं तो चारा 3-4 बार बोते हैं। जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का गर्मी और बरसात भर बोते रहते हैं और रबी की फसल में बरसीम बो लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब ये 3-4 बार जो हम चारा बोते हैं, अगर हमने संकर नेपियर घास लगा ली है तो हमें साल एक ही बार बोना है। ये 3-4 फसलें जो हैं हम बार बार हर साल लेते रहते हैं तो हर साल हमें खेत तैयार करना है, बीज लाना है, बीज बोना है और उस पर खर्चा आता है, लागत आती है खेत तैयार करने पर और बीज लाने पर। अगर संकर नेपियर घास लगाई हुई है तो एक ही बार आपने लगा दी, 5-6 वर्ष तक चलती रहेगी तो उसमें लागत आपकी इतनी कम हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन की लागत बहुत ज़्यादा कम होने से आपको लाभांश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: सर एक और मेरा सवाल था कि किसानों के लिए आपका सर क्या संदेश है?
0: मेरा संदेश किसान भाइयों के लिए, चाहे वो खेती कर रहे हों चाहे पशुपालन कर रहे हों, यही है कि एक तो जो किसान भाई शहर के पास रह रहे हैं वो पशुपालन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि पशुपालन जो है दुग्ध उत्पादों की, इस तरह के पशु उत्पादों की जरूरत शहरों में बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर शहर के आसपास रह रहे हैं इन पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आय कमा पाएंगे। दूसरा ये कि विशेषज्ञों की सलाह नियमित रूप से लेते रहें जिससे कि क्षेत्र में व्यवसाय में क्या चल रहा है। तीसरा ये कि दृष्टिकोण बदलें अपना। हम कहते हैं कि पशुपालन कृषि ये व्यवसाय हैं लेकिन हमारा दृष्टिकोण व्यावसायिक नहीं है, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाएं और उसमें सलाह ले लेके ज़्यादा से बेहतर कार्य करने की प्रयास करें जिससे कि आपका लाभांश बढ़े, फायदा आपको ज़्यादा हो और लागत में आप कमी कर सकें किसी तरह से।
1: बिल्कुल।
2: डॉक्टर राकेश पांडे जी और अमित गंगवार जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने कृषि पाठशाला का जो विषय था वर्ष भर चारे की उपलब्धता हेतु चारा उत्पादन योजना पर जानकारी दी, महत्वपूर्ण बातें बताई जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत लाभ पहुंचाएंगी। आपको कार्यक्रम में शामिल हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर।
1: 104 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR Bareilly CBS@gmail.com।
2: FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR Bareilly CBS@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIR Bareilly CBS@gmail.com।
3: वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ आपका अपना पसंदीदा रेडियो भी डिजिटल अवतार ले चुका है। प्रसार भारती लेकर आया है अपना खुद का नया OTT प्लेटफॉर्म वेब्स। जी हाँ, अब आप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से वेब्स OTT ऐप डाउनलोड करके आकाशवाणी बरेली के साथ साथ देश भर के 40 से ज्यादा लाइव रेडियो चैनल्स बिल्कुल फ्री में कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें वेब्स ऐप और जुड़िए आकाशवाणी के डिजिटल तरंगों के साथ।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत उद्यमी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बने।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया

0: किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
1: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोअर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
3: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में

0: बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेशी अमल विचार FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारे खत हैं और उन खतों में

तो स्वागत है। ढेर सारे खत हैं और उन खतों में है आपकी फरमाइश, तो शुरुआत करते हैं इस पहले खत के साथ। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुना चाहा फिल्म कुली का ये गीत शब्बीर कुमार और अनुराधा की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रमेश चंद्र यादव, मुस्कान यादव, सुशीला कुंज प्रिया, पवन बिहार बरेली से। आप हैं लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, बलरामगढ़ कासगंज से एम असलम सैफी, जयबुनिश बेगम अकरम सैफी, आवाद खान। आप हैं जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली, दौलतबाग मुरादाबाद से। ये खत हमारे पास आया है हुकुम करमकर का, साथ में हैं सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमकर बेलडी से। आप हैं हमारे श्रोता शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, पप्पू भाई, सलीम भाई। आप हैं राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डेला पीर रोड जिला बरेली से। ये खत हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गांव चौलाईदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल, इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, शीशगढ़ बरेली से, जगमोहन सिंह प्रजापत गांव लोहड्डा जिला बागपत से, श्रीमती मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि नितिन, जगमोहन, सुधीर नूतन और इनके परिवार के सभी लोग। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। निकट बिजली घर मीरगंज बरेली से आप हैं भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नईम, और सिंधौली से इमरान शेख, जीशान शेख और साथ में हैं रेहान शेख। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्ला अकरम, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कुली का ये गीत शब्बीर कुमार व साथियों की आवाज़ में।

लखनऊ से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म देश प्रेमी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जय पोटी।
1: क्या
0: है परेशान?
1: हाथ छोड़।
0: हाई मैंने हाथ पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता।
1: क्या बात करता है।

0: सीखूं।
1: दस तो छोड़।
0: अरे एक बार पकड़े तो छोड़ते नहीं, उठा को ले जाते जालिम।
1: हट जा नहीं तो मारूंगी।
0: हल्लू हल्लू।

श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। अगला गीत फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन, आवाज सोनू निगम की और फरमाइश आप सभी की। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर। आप हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार खमरिया बिलासपुर से। ये खत हमें भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति। जिला शिवपुरी गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछार से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, धांसु, छोटू, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता एवं समस्त नामदेव परिवार। दुर्गानगर बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के लोग। वार्ड नंबर 6 औला बजरिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराज से कमरुल्ला, नसीम भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राहू भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या, जगपाल यादव। आप हैं कासिम कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, सभी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद, इरफान, कासिम मीना, हाशिम मीना। तो आइए सुनते हैं फिल्म हीरो नंबर 1 का ये।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा। आवाज मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और फरमाइश की है आप सभी ने यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, कस्बा शीशगढ़, मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, आप हैं शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, आनंद, अमन, अंकिता, सुनीता, सूरज श्री, अनिता, विनीता, सोनी, सनोज और पुष्पेंद्र यादव, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बैरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जतेक बिरक, मीका बिरक, और वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशनी, सुशीला प्रभात, अमरीश सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक बेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाशनी। और ये खत हमारे पास आया है बिमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लब, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज, बक्सीना, दादागंज बदायूं से, आप हैं ग्राम बुटला दौलत पोस्ट उजानी जिला बदायूं से, टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित माथुर, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, सुरूपेंद्र माथुर, रितु शर्मा, के शर्मा, चोप सिंह शाक, आशीष शाक, रमेश साहू, मोनिका माथुर, अनिष्का माथुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, पवन शर्मा, युवराज शर्मा, ईशिता शर्मा, पंकज शर्मा, वीर शर्मा, संदीप, चंचल, चिंकी, सूरज और इनके परिवार के सभी लोग, पुराना होली चौक ग्राम करगना बरेली से, आप हैं भूड़ बरेली से रजत कुमार, जिला जालना हुन तहसील जाफराबाद से श्री सुधाकर राजा यादव, प्रशांत राजा यादव, जगुताई राजा यादव, संचित प्रथमेश, सोहम प्रणाली, सानवी देशमुख, राजपैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीयूष स्वर्णकार एवं समस्त परिवार, जिला बदायूं ग्राम दूनीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया, मनोज कुमार कटेरिया, सत्येंद्र कुमार कटेरिया, गुड्डू विशाल, संगम विभू, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता, अंतिमा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, असलम सैफी, ए ई खान, गंडुंडवारा से शमशुल कमर, जाहिद अली, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराज से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा और आकाश कुमार, आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी, कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दिवे, फजलिका पंजाब से भूषणखेड़ा, विशुखेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्वानसी, शालिनी, आरवी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी लोग, बठेना से बलकरणा, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुआड़कर, राही सरिता गुआड़कर, सिद्धांत एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गुआड़कर, वैशाली सुमित और ध्वनि, आप हैं कस्बा बिलसी बहुल्ला वार्ड नंबर 5 से रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानी अलवी, नजाकत अलवी, शाहीन बेगम अलवी, आहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी और इनके परिवार के सभी लोग, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम प्रोनिका और उत्कर्ष नेताम, बुड़गंज छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और इनके परिवार के लोग, मेराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिबा भी, मन्नत भी, कस्बा नवाबगंज जिला

रेली से, साथ में नसीम अहमद निकट मोटी मस्जिद से, पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन बीबीपुर से, महमूद हुसैन बैटला सिरसी से, मकसूद हसन और इनके परिवार के लोग, औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, शीतल राजेश, राजीव राजदीप राजेश, राशि राजेश, फूलबाग किला छावनी बरेली से विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त, बिक्की वर्षा, कविता ईशु, भावना आदित्य, देवी की देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज, श्री राम राठौर और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, नगासा रोड उसेद बदायूं से मसरूर खान, अमन अब्बासी, सुहेल अंसारी, भरत यादव, अमन मंसूरी, आबाद खान, रेखा कश्यप और इनके साथी, ऊंची मस्जिद उसैद से चांदमिया, तबस्सुम असद सत्तार, शाहजहाँ, अलीबाबा, मर्जीना अलबख्श, गंजुनवारा से एम एच लल्ला, एन बी मिर्जा, मनोबर हुसैन, नजरीन बेगम, कहकशाह अनवार, गुमनाम शाह और बेनाम शाह।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 107.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता।
2: श्रोताओं, भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति, विज्ञान और तकनीकी में उल्लेखनीय उपलब्धियां और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट आस्था ने हमारे देश को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान दी है। इस परिदृश्य में यह भी चर्चा करेंगे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी आंतरिक प्रगति से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से भी तय होती है।

इसी संदर्भ में हमें स्मरण करना चाहिए शिमला समझौते का। वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि शांति और स्थिरता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। इस समझौते का मूल भाव था कि दोनों देश अपने विवादों का समाधान आपसी वार्ता और द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से करेंगे। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि भविष्य में सभी विवादों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करते हुए भारत और पाकिस्तान ने यह संकल्प लिया कि वे आपसी विश्वास और सहयोग को प्राथमिकता देंगे। शिमला समझौते के अंतर्गत युद्ध के बाद बनी सीज फायर लाइन को नया नाम देकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनाया गया। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि इस रेखा को एक तरफा रूप से नहीं बदला जाएगा और इसका सम्मान दोनों राष्ट्रों द्वारा किया जाएगा। भारत में युद्ध में विजित की गई लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पाकिस्तान को लौटा दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत का उद्देश्य केवल शांति और स्थिरता स्थापित करना है, न कि भूमि पर स्थायी कब्जा करना। इसीलिए भारत ने युद्ध में विजित की गई 13,000 वर्ग किलोमीटर जो भूमि थी वह पाकिस्तान को लौटा दी। शिमला समझौते का एक और महत्वपूर्ण पक्ष या यूं कहें बिंदु यह था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यह कदम दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण था। साथ ही दोनों देशों ने यह संकल्प लिया कि वो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और भविष्य में संघर्ष के बजाय सहयोग यानी आपसी तालमेल को बढ़ावा देंगे, आपसी सहयोग की प्राथमिकता रहेगी। इस प्रकार शिमला समझौता केवल तत्कालीन परिस्थितियों का समाधान नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक रणनीति, एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध से अधिक स्थायी है शांति, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। संघर्ष से अधिक प्रभावशाली है, शक्तिशाली है सहयोग। आज भी भारत की विदेश नीति में द्विपक्षीय और संवाद की जो नींव दिखाई देती है, उसका एक बड़ा आधार शिमला समझौता की भावना में निहित है। स्मरण रहे कि भारत की विदेश नीति आज पड़ोसी प्रथम और वैश्विक सहयोग की भावना से ओतप्रोत है। भारत ने हमेशा संवाद और आपसी सहयोग को प्राथमिकता दी है। शिमला समझौता इस नीति का ऐतिहासिक उदाहरण है। यह भी ध्यान देने योग्य है, जो शिमला समझौता के प्रमुख बिंदु थे, वे तत्कालीन परिस्थितियों को संभालने के साथ साथ भविष्य के लिए एक सोची समझी रणनीति, एक मार्गदर्शन देने वाला सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध से अधिक शक्तिशाली है मानवीय मूल्यों पर आधारित शांति का मार्ग और संघर्ष से अधिक स्थायी है आपसी तालमेल। जब हम

0: वर्तमान परिदृश्य की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत अपनी आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक धरोहर के बल पर विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस प्रगति को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण रखें, और शिमला समझौता की भावना हमें इसी बात की प्रेरणा देती है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग की भावना से किया गया था। इसका उद्देश्य था कि दोनों देश अपने विवादों को, अपनी उलझनों को, परेशानियों को, चुनौतियों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे और सीमा पर एक स्थिरता बनाए रखेंगे। इस समझौते का सबसे बड़ा संदेश था द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण समाधान। स्पष्ट रहे कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों को केवल आपसी वार्ता से सुलझाएंगे, ऐसा इस समझौते की स्वीकार करने वाले पक्षों का दृष्टिकोण था, और यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आदर्श भी बना। पर यह संकेत मिलते रहे कि पड़ोसी राष्ट्र अपने स्वयं के मुद्दे सुलझाने के लिए तीसरे मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। शिमला समझौते ने हमें यह भी दिखाया है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव है, और इस परिदृश्य में शिमला समझौता और भी प्रासंगिक हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता, और इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कतील शिफई का ये खूबसूरत सा कलाम, आवाज है जगजीत सिंह की।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पंडित विनोद शर्मा का ये खूबसूरत सा कलाम। आवाज़ है जगजीत सिंह की।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दुल्हन एक रात की।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है अनपढ़।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान

0: की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: यात्रियों का पहला जत्था आज

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र।

0: दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में अंग...

0: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है।

0: अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की युगल आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की युगल आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है किनारा।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं गुलजार की लिखी लिखा ये गीत। धुन बनाई है खयाम ने, आवाज़ दी है भूपेंद्र सिंह ने, और फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा

हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरुप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग दरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

ईद किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और गलियां नजर आई तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितने गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवंत

0: में जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चले तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छाट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी, और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से, और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते, उनका आना जितना सुखद होता है उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है, तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, 100 साल पहले तो नहीं 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है, भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की, हे विविध भारती तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, बहारों का मौसम रंग

बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान अनजाना रिश्ते की तरफ अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

0: इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोक कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती, इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी, कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं

चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफी साहब की आवाज है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है। और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम, जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो। और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम। और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब की गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे। बनारस में मौसम

सहनी हो गया है। आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नई वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए। फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है।

सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात, रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने, तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए खूब सारी क्लिक्स लेते हैं, लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का, लिखा है ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है, इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बद्दूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपनी चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वास में ये जल्दी से

मुरझा जाते हैं। हाँ सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

होती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय

तोबा तोबा ये निगाहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय।